0: कांग्रेस के युवराज ने भी कल अपने झूठ की गूंज में जिस प्रकार का आचरण किया, पूरी नारी शक्ति का वो अपमान है। जो भारत और भारतीयता को अपमानित करना अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य मान लेते हैं, उन लोगों से अपेक्षा करना कि वे वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव को समझ सकें, या यत्र नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता के भाव को समझ सकें, मुझे लगता है कि देश को उनसे उम्मीद करना ही छोड़ देना चाहिए।
1: दार खबरें दिखाएं, और हम तो पत्रकार साथी से कहेंगे, अगर आपको इतना ही इमोशन है किसी की मां के लिए, तो यहां जितने लोग बैठे हैं सबका अपने मां परिवार के लिए वही इमोशन है। सबकी मां वैसी इमोशन के साथ है, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो कोई गरीब हो किसी कोने में।
2: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने अपनी झूठ की गूंज का कार्यक्रम किया, और जैसा कि होता है कि नेता प्रतिपक्ष हमेशा अपने विषय के प्रति लापरवाह भी रहते हैं, आज भी वो बगैर तैयारी के कुछ ऐसे बच्चों को, कुछ युवा मित्रों को जिनकी बात क्वेश्चन आंसर में आना चाहिए थी, बात करना कराना चाहिए थी, ऐसा लगा कांग्रेस के लोगों ने केवल अपने एजेंडे के आधार पर जनता के बीच भ्रम फैलाने की दृष्टि से बात कही। बड़ा दुख होता है, नेता प्रतिपक्ष बहुत महत्व का पद होता है। आज ही हमारे द्वारा बच्चों को, जब स्कूलों की बात आती है तो सांदीपनी विद्यालय के बलबूते पर राज्य के अंदर ड्रॉप आउट जीरो अगर हुआ है तो यह तथ्यात्मक आंकड़ा है जिसको कांग्रेस और उनके मित्रों को देखना चाहिए।
3: नहीं नहीं, ऐसा कोई अपमान नहीं है, ये तो मोदी जो बोला है उसी को दोहराया जा रहा है, किसी को अपमान नहीं है। और पॉलिटिक्स में एक ह्यूमर का जगह होना चाहिए, ये वही है।
4: And now to this horrible incident reported in the city of Mumbai. Three people were killed and one critically injured after a BMW crashed on Mumbai's coastal road in the early hours of Sunday. A black BMW was traveling from Marine Drive towards Haji Ali when it reportedly crashed into a boundary wall before plunging off the bridge. The impact left the luxury car severely damaged, with its front end crushed and the windshield and the roof badly wrecked. Four people were rushed to Naya Hospital following the crash. Three were declared brought dead, while a 20-year-old man remains critically injured. The wrecked BMW was later lifted and removed from the crash site using a crane. Police is now investigating the circumstances surrounding the crash, including the reported speeding that preceded the accident.
5: एक सुबह 5:20 में कॉल था कि एक ब्लैक रंग की BMW कार, उसका नंबर है DD01 C6302, ये गाड़ी मरीन ड्राइव की तरफ से हजेली की उधर नॉर्थ बाउंड पे जा रही थी तो कोस्टल रोड से नीचे गिर गई, और उसमें चार लोग थे। एक है आदित्य ओसवाल, वो जख्मी है, उस पर उपचार चल रहे नायर हॉस्पिटल में, और तीन लोगों की डेथ हो गई, तहरी शेठ, आदित्य जकासनिया, शनय गजर, और आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।
4: A major accident was reported on the coastal road in the early hours today morning, and a BMW, it was into overspeeding and it resulted into it crashing down and falling off from this bridge where we are present. This is the coastal road, and below you see the condition of the BMW car. Four people were into the car, and because of overspeeding, three of them, they lost their lives, whereas one is currently injured and is admitted to Naya Hospital. According to the information from the Naya Hospital CMO, three injured persons were declared brought dead. The deceased have been identified as 21-year-old Shanai Gajil and 17-year-old Dhirya Seth. The identity of the third deceased, a 25-year-old man, is yet to be confirmed. A 20-year-old male is currently admitted to the trauma ward and is reported to be in critical condition. The police is present at the spot, and like you see, all of the forensic teams are too present trying to inquire about the evidence to understand what exactly led to this incident happening. If you see the BMW car, it was flying into onto this road when it oversped, and it resulted into it falling from this very road off the coastal road. The forensic team is

0: and ask them to do sit-ups. Now, that's not it. They also asked them to release an official apology video, which Mahesh posted the other day on his Instagram account, stating that whatever he said did not mean to hurt Raj Thackeray, and he's asking forgiveness for what he said. Now, like you mentioned, that offensive criticism is not meant for the people, and especially parties like MNS, they will not people let go for the comments that they make against the MNS chief Raj Thackeray. This is not the first of its kind. Even in the past, we have seen that there were remarks that were made by people, by influencers, by common working citizens, which eventually led to MNS going up to their offices, to their residences, and then forcing them to apologize. Not only that, but also in the past, we have seen that because of not speaking in the language of Marathi, people were hit and violence was practiced here by the MNS. But this time it is for the offensive remarks that have been made by against Raj Thackeray, and any anti-Raj Thackeray comment will not be tolerated is the message which MNS is trying to put up with these acts, wherein they not only go up and hit people, but also they record video and post it on their social media accounts to create a sense of fear and anonymity in the minds of the citizens, to ensure that there is no such act done again. So again, and another influencer who is Mahesh Mote is known for the kind of comic content and the strong remarks that he usually makes on his social media. But this time he was too silenced with violence being done with him. Where it could, in the video, it could be seen that his slippers are put up on his head along with a photo placed in front of him of Raj Thackeray. He's asked to apologize, do sit-ups and lie on the floor and seek his forgiveness. Over to you.
1: As always, Sujata, thanks so much for joining us with all the details.
2: Yes.
1: We leave it there for now. All right, let's switch tracks now to the other big story we're tracking this morning. On the day Rahul Gandhi took his Chhatron Ki Goonj student outreach campaign to Indore, the Congress-affiliated NSUI drew a blank in the Delhi University Students' Union election, while the BJP-backed ABVP won 3 of the 4 central posts. The ABVP has retained control of the Delhi University Students' Union, and now sources are suggesting that Rahul Gandhi is upset over the DUSU results, and he has sought a report on the candidate selection from KC Venugopal. The BJP, meanwhile, is describing the result as a setback for Congress-led student outreach, while the Congress continues to question the entire election process. But Yash Dabas is the new president. Riya Chowdhury is the secretary, and Lakshya Raj Singh, joint secretary. The vice president's post, however, has gone to an independent candidate, Dipanshu Shokin, who defeated candidates from both the ABVP and NSUI. The BJP is presenting the outcome as a setback for the Congress's student outreach, as I mentioned, including Rahul Gandhi's Chhatron Ki Goonj campaign. The Congress, meanwhile, continues to raise questions about the election process. You must also note that Dipanshu Shokin, the independent candidate, had sought an NSUI ticket before contesting as an independent. Now, to find out precisely what these results reveal, whether it's the continuing strength of the ABVP in Delhi University, the NSUI's organizational challenges, and whether either party can legitimately draw conclusions about the wider youth vote from this one campus election, you need to listen to the political reactions we've lined up for you.
3: आज डूसू के परिणाम आए हैं. एबीवीपी ने 4 में से 3 सीटों पर शानदार जीत हासिल की है. आपको बता दें कि दिल्ली में एबीवीपी की जो शुरुआत थी, जो बीज बोया था, वो जेपी नड्डा जी ने बोया था. हमारे साथ हैं नड्डा जी. आज की जीत पर आप क्या कहेंगे?
4: सबसे पहले तो बीज तो विद्यार्थी परिषद का मेरे से पहले बहुत बो दिया गया था, लेकिन हाँ, राष्ट्रवादी ताकतें आगे बढ़ी हैं और उसमें मुझे भी लंबे समय तक काम करने का मौका मिला है. दिल्ली में भी काम करने का एबीवीपी में मौका मिला है. लगभग 4.5 साल काम किया है. आज मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ. जिस तरीके से उन्होंने शानदार जीत दर्ज कराई है, ये राष्ट्रवादी ताकत होगी.
3: पर एक तरफ छात्रों की गूंज राहुल गांधी कर रहे हैं और एक यहाँ पर परिणाम है.
4: वहाँ की गूंज तो सुनाई दी नहीं, लेकिन ये धमाका सबने सुना है.
5: दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का इतना प्रचंड जीत ये दिखाता है कि कांग्रेस और अपोजिशन पार्टी ये छात्रों का गूंज के नाम से जो घूमता है वो वैसे तो ये झूठ का गूंज है, क्योंकि युवाओं ने बोल दिया है. अब इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में इतना भारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जीत दिलाना, मैं एबीवीपी के सारा कैंडिडेट्स जितने जीते हैं शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूँ.
6: मैंने अभी सुना है कि एनएसयूआई के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ काउंटिंग में और सेंटर्स में भी बहुत धांधली हुई है. उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इन छोटे मार्जिन जो हैं बाकी 2-3 सीट पे, उसमें इसका बड़ा असर हो सकता है। दूसरा कैंपेनिंग में भी बहुत दिक्कत हुई, हमारे लोगों को हर जगह जाने नहीं दिया गया, रोका गया, तो उस कारण से हो सकता है कि जो छोटे छोटे मार्जिन्स की जो 2-3 सीटों पे हम लोग हारे हैं, ये जीत में भी तब्दील हो सकते थे।
1: मीनवाइल माय कॉलीग मनोज्ञा लोयवाल स्पोक एक्सक्लूसिवली टू ऑल द विनिंग कैंडिडेट्स ऑफ द एबीवीपी, द न्यू डीयूएसयू प्रेसिडेंट यश दबस, सेक्रेटरी रिया चावरी एंड जॉइंट सेक्रेटरी लक्ष्य राज। लिसन इन टू व्हाट दे सेड रिगार्डिंग देयर विक्ट्री, द चैलेंजेस एंड द प्रायोरिटीज।
2: First question to you, Yash. What has been the biggest strength and the weakness, and who do you give the credit for this win?
7: My biggest strength is my the support I got from the students, and the weakness I could say maybe few points which do affect it. Like you can say some students were not really interested in elections, and that's why you can see out of 1.5 lakh students, only 60,000 votes were polled. Though it was higher than the last time, but I think the poll should be more. And the credit goes to the whole my ABVP family, because it's all the karyakartas who work 365 days in a year to ensure that they work for student rights and make us win.
2: Riya, what has been the toughest part? Just give us a brief on how do you feel as a woman, you almost representing 25% of representation of women instead of the 33% that we've been discussing over. But just give us an idea on how and what will be your role in making the women and their representation stronger than ever.
8: I think women should come forward in every field, not just politics. In every field, women should come forward. They should not be afraid of anything. And the thing which I will be doing in my tenure is the women's safety. The top, I will ensure that every girl studying in Delhi University should feel secure, home and safe. My motive sitting here is to make every girl studying in Delhi University safe and secure. And the toughest part for me was late night walking in universities, talking to students, listening to their struggles and their stories. But it was inspiring also to talking some students who have been studying in Delhi University and coming from different backgrounds.
2: What was the most emotional moment that hit you hard? Mera gham sabse kam hai.
8: My emotional moment was when I got the ticket, because this was my dream since 8th class. So I started crying over there only, ki yes, finally I got the ticket.
2: Lakshya, hails from Rajasthan, Khama Ghani to you on our show. Give us an idea on what has been your biggest strength and who do you give the credit for this win?
9: First of all, thank you to everyone from the Rajasthan. I am struggling from the 7 years in Delhi University, and the students of Rajasthan, they really work hard for me, and the AVP karyakartas like from 2 months they are working on the field and through the social media also.
2: जब आप बात करते हैं तो मुझे ये बताइए ना, सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होता है जब छात्रों से बातचीत करना, उनसे मिलना? What has been the biggest challenge on ground?
9: Convincing them is the biggest deal. क्योंकि उनको कन्वेंस करना, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं वो थोड़ा सुबह लेट उठते हैं, और फिर उनको आप कन्वेंस करो कि सुबह जल्दी आपको उठ के वोट भी देना है, क्योंकि 2-2 बजे तक हम कैंपेनिंग में होते हैं, सबसे मिलते भी हैं। फिर उनको ये भी बताना है कि आपको सुबह 8 बजे वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको उठना पड़ेगा। फिर थर्ड चीज़ होती है कि आपको आइडियोलॉजिकली वे में उनको समझाना पड़ता है कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, क्योंकि अरे दूसरे जो संगठन हैं उनके पास में वही बातें हैं, लेफ्ट की सारी बातें करते रहेंगे, बट यूथ को डाइवर्ट करते रहते हैं। जैन जी जो आंदोलन हुआ आपने देखा होगा, अपने कांग्रेस जनता पार्टी ने वहाँ पे किया, उसके अंदर मुद्दे कुछ और थे और वहाँ पे जो नारे लग रहे थे वो कुछ और थे। तो ये सारी चीज़ें उनको क्लेरिफाई करना, उनको बताना कि जो पट्टी बांध तुम्हारे आंखों पे बांधे जा रही है ये बहुत गलत है।
1: All right, in other news, Vijay's London visit and TVK's political activity have drawn attacks from rival parties. K. Annamalai questioned Vijay's London investment outreach, arguing that the state government should focus more on encouraging investments by companies already operating in Tamil Nadu. Basically, he says, Vijay should have visited industrial centers like Coimbatore and Madurai instead of traveling abroad to attract investments. This, as TVK's political activity draws attacks from rivals including Udayanidhi, who has accused Vijay and the TVK of blaming the DMK despite being in politics, and also alleged that the TVK is attempting to bring AIADMK MLAs into its fold.
10: எனக்கு லண்டனை பத்தி நல்லா தெரியுங்க. இட்ஸ் எ டேட் எக்கானமி. அங்கெல்லாம் எந்த பணமுமே கிடையாது. 1% வளர்ச்சி, யூகேவுடைய வளர்ச்சியே 1%. அவங்ககிட்ட போய் தமிழ்நாட்டில் பணம் கொடுங்கன்னு கேட்டா அவங்க என்ன பணம் கொடுக்க போறாங்க? அவங்க ஊர்ல போடுறதே அவங்ககிட்ட பணம். இந்தியாவிலிருந்து போய் டாடா, இந்தியாவிலிருந்து போகக்கூடிய ஜாகுவார், லேண்ட் ரோவர், மஹிந்திரா, இவங்க எல்லாம் தான் யூகேல அதிகப்படியான பணத்தை நாம இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். முதலமைச்சர் என்ன பண்ணணும்னா, சென்னையிலிருந்து எமிரேட்ஸ் விமானத்தை பிடித்து லண்டனுக்கு போவதை விட சென்னையிலிருந்து இண்டிகோ விமானத்தை பிடித்து கோயம்புத்தூருக்கு மதுரைக்கு வரக்கூடிய தொழிலதிபர்கள் உட்கார்ந்து தமிழ் சமுதாயம் நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும், புரிந்து கொள்ள வேண்டும். லண்டனிலேயே பொருளாதாரம் இல்லைங்க, 1%, 1%. அதை விட இந்திய நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் பெருசு, நம்ம 4.1 trillion. இதெல்லாம் எப்ப லண்டனுக்கு போனாங்க? இந்தியா 1 trillion இருந்துச்சு 2010, 2008. அப்ப லண்டன் 3 trillion இருந்துச்சு. அப்ப லண்டன் கோடி சுட்டு போட்டுக்கணும் விடுத்தா இருக்கும். ஏன்னா நான் வந்து ஒரு ஏழை நாட்டில இருந்து வர்றேன், நீங்க பணக்கார நாடு, எனக்கு ஒரு 100 ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்க பொழைச்சுக்கோன்னு போயிட்டு இருந்த காலம். இந்த நாடு 4.1 trillion இருக்கிற நாடு, லண்டன் 3.4 trillion இருக்கிற நாடு. அந்த நாடு கிட்ட போய் இவங்க ஒரு பெரிய கூட்டத்தை கூட்டிட்டு போயிட்டு, அதுல இவரை பார்த்தாரா, அவரை பார்த்தாரா, அவங்க எட்டி பார்த்தாங்களா, அவங்க உள்ள போனாங்க.
11: அந்த ஷூட்டிங் மட்டும்தான் நடக்காம இருக்கு. முதலமைச்சர் வாயை திறக்கிறதே கிடையாது. வாயை திறந்தாருன்னா வெறும் பஞ்ச் டயலாக் தான். அது எங்களை பார்த்து பேசுறது கிடையாது. கேமரா எங்க இருக்குன்னு பார்த்து, கரெக்டாக பார்த்து, ஆங்கிள்லாம் பார்த்து, சபாநாயகர்கிட்ட அனுமதி வாங்கி டேக் போலாமான்னு கேட்டுட்டு, சபாநாயகர் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் முதலமைச்சர் அவர்கள் தன்னுடைய பஞ்ச் டயலாக்கு பேசுறார். எதை கேட்டாலும் முதல்ல இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள், முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட ஆட்சியாளர்கள், அமைச்சர்கள்லாம் அவங்க ஆட்சிக்கு வந்துட்டோம் அப்படிங்கிறத அவங்களே இன்னும் நம்பலை. எந்த கேள்வி கேட்டாலும் நம்ம மேலே பழி போடுறது, திமுக ஆட்சியில் இது நடந்துச்சு, திமுக ஆட்சியில் இது நடந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம மேலே பழிய போடுற வேலையை மட்டும்தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சரும் சரி அமைச்சர்களும் சரி தொடர்ந்து அதை செஞ்சிட்ருக்கிறாங்க. அதனால தான் இன்றைக்கி ஒவ்வொரு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக பார்த்து பார்த்து, அதுவும் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களெல்லாம் விலைக்கு வாங்குகிற வேலையில் இன்றைக்கி இந்த அரசு இறங்கியிருக்கு. இப்படி விலைக்கு வாங்கின காரணத்தினால தான் உங்களுக்கு தெரியும், 2 சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல், மதுராந்தகம் தாராபுரத்தில் இடைத்தேர்தல் நடக்க இருக்கு. இந்த ரீல்ஸ் கும்பலுக்கு ஓட்டு போட்ட கொஞ்ச நஞ்ச மக்களும் ஏண்டா இவங்களுக்கு ஓட்டு போட்டோன்னு இப்போ கவலையில் இறங்கியிருக்கிறாங்க. இந்த ஆட்சியாளர்கள் அடிக்கின்ற இந்த கூத்தையெல்லாம், செய்கின்ற இந்த அட்டு ஒழுங்கு எல்லாம் மக்களுக்கு நாம் தொடர்ந்து அம்பலப்படுத்த வேண்டும். அதற்கு சரியான ஒரு தண்டனையை வருகின்ற இடைத்தேர்தல் மூலமாக நாம் இந்த ஆட்சியாளர்களுக்கு அதை நாம் தெரியப்படுத்த வேண்டும். ஆளுங்கட்சி எதிர்க்கட்சி எந்த
1: All right, in other news, former Vice President Hamid Ansari's remarks have triggered a political storm, with the BJP, the Congress and Muslim clerics offering sharply different responses. Mr. Ansari was speaking at the A.G. Noorani Memorial Lecture, where he also referred to what he described as emerging trends around cultural nationalism. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has hit back strongly, questioning the remarks and stressing that responsibility attached to a constitutional office. He's highlighted that. The RLD, meanwhile, has rejected Mr. Ansari's assessment, saying the political context today is different from the period referenced. Meanwhile, the Congress says that Mr. Ansari was not making the assertion independently, but citing a historical observation attributed to Mr. Nehru. Imam Ilyasi has also criticized the remarks, arguing that such statements could further heighten tensions and disturb the social atmosphere. We've got crucial reactions lined up for you. Listen in.
12: देखिए, जवाहरलाल नेहरू सोवियत संघ की जो सोशलिस्ट व्यवस्था थी उससे बड़े प्रभावित थे 50s में, और उस समय कम्युनिज्म थ्रेट नहीं था, और हिंदुस्तान में कोई राइट विंग कम्युनलिज्म भी कोई थ्रेट नहीं था. ये वर्तमान संदर्भ में उन्होंने बयान दिया है तो वी टोटली डिसएग्री विद हिज स्टेटमेंट।
13: कि हामिद अंसारी साहब ने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही है। हामिद अंसारी साहब ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोट किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हिंदू राइट विंग जो हैं वो कम्युनिज्म से ज़्यादा देश के लिए ख़तरनाक हैं। हामिद अंसारी ने यह तो नहीं कहा कि देश के अंदर कौन राइट विंग है। जो लोग शोर मचा रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पहले तो ये तय कीजिए कि आपको बुरा इसलिए लग रहा कि आप राइट विंग हैं। मैं अगर ये कहूँ कि जहर से कोई आदमी मर जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी से कह रहा हूँ कि जहर पी लो, मैं जहर की खासियत बता रहा हूँ।
14: देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं हामिद अंसारी साहब के पहले भी उन्होंने बहुत कंट्रोवर्सी बयान दिए थे और उसके बाद फिर उन्होंने एक कंट्रोवर्सी बयान अपना मुसलमानों के नाम से दिया है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। आज फिर उनको मुसलमान याद आ गए। जब वो सत्ता में थे, बड़ी बड़ी पदों पर बैठे थे, तब वो सेकुलर थे। आज वो उन्हें मुसलमान याद आ गए। उनको अब मुसलमानों के अंदर उनकी छवि बिल्कुल, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनसे मिलने तक नहीं जाता, तो उनको लगा कि फिर मुसलमानों पे कोई सियासत की जाए।
1: Alright, let's turn our attention to the other big story we're tracking on the breakfast show. The special intensive revision of electoral rolls in Delhi has triggered a political row. You see, External Affairs Minister Dr. Jaishankar, former Deputy Prime Minister L.K. Advani, former Vice President Jagdeep Dhankar, Election Commissioner S.S. Sandhu, and Aam Aadmi Party's Arvind Kejriwal are among many prominent voters who've been issued notices over discrepancies in details submitted during the ongoing SIR. Others on the list include former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia, CBI Director Praveen Sood, former Army Chief General Upendra Dwivedi, and former Supreme Court Judge Ranjana Desai, along with some of their relatives. You see, the Election Commission says the SIR is a transparent and inclusive exercise aimed at ensuring due verification, with these notices issued to electors where clarification is required. But the Congress has questioned the process, alleging flaws in the voter list exercise and citing notices to prominent figures as evidence of its concerns. So while the Congress is questioning the exercise, the BJP is defending the SIR as a constitutional process. The BJP is saying that all electors receiving notices must submit the required documents and complete verification. Here are the political reactions you need to listen to.
15: दिल्ली के तीन बार रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को SIR की प्रक्रिया के अंदर नोटिस दिया गया। नोटिस इसलिए दिया गया कि SIR की प्रक्रिया के हिसाब से उनका नाम मैप नहीं हो पा रहा है, ना उनका, ना उनकी पत्नी का, ना उनके बच्चों का। और ये सवाल उठाता है पूरे के पूरे इलेक्शन कमीशन, जब SIR इस तरह के वोटर्स के ऊपर भी सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि आपकी मैपिंग नहीं हो पा रही है, तो आप अंदाजा लगाइए उस साधारण इंसान का, ना उसके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, ना उसके पास नेटवर्किंग है, ना उसके पास ये मौका है कि उसकी बात अखबारों में और टीवी में छपेगी। वो आपके, हमारे और लाखों ऐसे वोटरों के लिए सवाल है।
13: SIR बहुत ही गलत एक्सरसाइज है। ये इलेक्शन कमीशन को विचार करना चाहिए कि इतनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद आप ठीक तरीके से वोटर लिस्ट तैयार नहीं कर पा रहे हैं। हमने कभी SIR का नाम ही नहीं सुना था। यह SIR का नया प्रोविजन इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी की दबाव में किया है और अभी तक 12-13 करोड़ वोटर्स डिलीट कर दिए गए। ये तो लोकतंत्र को ख़त्म करने की एक बड़ी साजिश है और ये इस बात का बड़ा सबूत है कि जब LK अडवाणी के पास नोटिस जाएगा, देश के फॉरेन सेक्रेटरी के पास जाएगा, तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये प्रोसेस जो है वो कितना गलत प्रोसेस है।
16: SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है और वो इतना निष्पक्ष है, उसमें इतना उतनी पारदर्शिता है कि जो नोटिसेस दिए गए हैं उसमें एक बड़े बड़े लीडर्स के नाम हैं, और चाहे वो कपिल सिब्बल हों, चाहे हमारी रेखा गुप्ता जी हों, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हों और चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, उन सबको दिए गए हैं क्योंकि एक रूल ऑफ लॉ है, उसके तहत एक कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत सबको बताना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है, नोटिसेस जाते हैं और आप सही डॉक्यूमेंट्स देते हैं और बात साफ तौर से नई तरह से अपडेट हो जाती है इलेक्टोरल लिस्ट में। लेकिन उसमें भी राजनीति देखिए, बजाय ये समझने के कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी गया है भाई, एस जयशंकर जी को भी गया है जो हमारे मंत्री हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के, लेकिन आप अपनी बात करके अपना रोना अपने मातम शुरू कर दिया है। और मुझे लगता है कितना ये दयनीय हालत कर दी है कि बार बार विक्टिम कार्ड खेलो भाई, सच सबके सामने है।
17: उनके वोटर नहीं है ना, कैसे कम कर दिए जाए। मैं तमाम मतदाताओं से कहूंगा कि लड़ाई लड़ो इसकी और अपना नाम डलवाओ, वकील पकड़ो, संघर्ष करो, नहीं तो ये लोग आपका नाम काट देंगे और फिर इलेक्शन चुन के आ जाएंगे बेमानी से।
18: पहले ये SIR होता था वो बराबर होता था, एक हर साल में पुराना वोटर लिस्ट लेके एक बार रिव्यू किया जाता था, कौन मर गया, कौन नया 18 साल में प्रवेश किया, उसको लिस्ट रिविजन होता था। ये SIR बराबर होता था, मगर इस बार क्या SIR हो रहा है, 12-13 करोड़ वोटर को वोटर लिस्ट से निकालना था और निकालने के लिए वो लोग RSS ने योजना बनाया, लिस्ट बनाया कि इनमें से कौन BJP के वोट नहीं देंगे, उसका बड़ा हिस्सा है मुसलमान है, दलित है, आदिवासी है, जिसको संदेह है ये BJP को वोट नहीं देंगे।
1: All right, on that note, let's turn our attention to breaking news we're tracking at the moment. Tamil Nadu's political battle over assembly conduct is now turning into a contest over who's responsible for lowering the dignity of the house. Minister K.G. Arun Raj has accused the DMK of lacking the moral authority to question assembly proceedings, arguing that it was the DMK members who created unruly scenes that have prompted TVK legislators to react. Now, that is the minister's version of events. Listen in to the comments coming in.
19: DMK doesn't have any moral authority to say that assembly that the prestige of the house has been lowered, because we all know how DMK had dealt with the assembly proceeding during the previous years. So DMK doesn't have any moral authority on that. It is DMK's members who had created that unruly scenes for which that TVK legislators had to react.
1: My colleague Vijay Gopal Murlidharan has been tracking all the finer developments for us. He joins us live at the moment. Vijay, it seems to be that this entire face-off between the TVK and the DMK is only intensifying, now turning into a contest over who's responsible for lowering the dignity of the house.
20: Parmeshwar, that's right. After the conclusion of recent legislative assembly session, the war of words continued between TVK and DMK over conduct in the legislative assembly, whereas DMK staged walkout and also criticized the TVK government for defaming the legislative assembly on various occasions, saying that especially after Chief Minister P. Joseph Vijay made a gesture criticizing former Chief Minister M.K. Stalin over MISA arrest, and also DMK raised the slogans against that. Now, Tamil Nadu Minister Arun Raj in criticizing DMK party, saying that they were responsible for creating such a lowering the house dignity, saying that just TVK legislative members just retaliated for what DMK legislative member inside did in the legislative assembly. So the war of words continues. On the other hand, not only DMK, even DMK allies like DMDK and even left parties have questioned TVK government over the conduct inside the legislative assembly. Parmeshwar.
1: As always, Vijay, thanks so much for joining us with the latest details. We'll of course continue to revert to you for regular updates. All right. On that note, let's turn our attention to further breaking news updates coming in, this time from Maharashtra. Well, you must note a dinner at a JW Marriott in Mumbai ended with a guest leaving the restaurant after an unexpected visitor appeared on the table. Take a look at the visuals on your screens at the moment. Now, Dr. Ashok Seth, chairman of Fortis Escorts Heart Institute, has posted this video on your screens claiming that a cockroach was found on his table at a restaurant in JW Marriott in Seher on Saturday night. In his post, he says the group eventually left because the incident ruined their appetite. He has also tagged the Maharashtra food sales

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा
4: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से
5: देश का टायर जेके टायर।
6: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: द वे टू हरिद्वार विद दैट कावड़। क्या ये कल्चरल नेशनलिज्म है? टेक पे ध्यान दे, क्या है क्या आपकी मैसेजिंग, कावड़ या कंप्यूटर?
1: क्या टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन साथ में नहीं जा सकते है क्या? डज बीइंग प्रोग्रेसिव और बीइंग टेक सेवी, डज इट मीन वी अपरूट आवरसेल्व्स फ्रॉम आवर कल्चर?
0: सो सोमनाथ एंड स्टार्टअप्स कैन बोथ कोएग्जिस्ट,
1: दैट इज व्हाट मेक्स इंडिया सो स्पेशल। इफ वी होल्ड ऑन टू वन एंड लीव द अदर, देन पद्मजा, इंडिया विल स्टॉप टू बी भारत।
0: Before you did the Kavad Yatra, you also did the Iron Man.
2: Tere junu ke aage ambar panahe mange.
1: Essentially includes 1.9 kilometers of swimming in the ocean, 90 kilometers of cycling, 21.1 kilometer run. So you got to finish all of this in 8 hours 30 minutes. That's the cutoff. This year, unfortunately, I was a little lazy and I couldn't train.
0: We are going to knock that laziness off. 1,

0: ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನಾನು ತಾಕೀತ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಕೆಲಸ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸಗಳು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.
1: Former Vice President Hamid Ansari's remarks have triggered a political storm. Let's listen in to some of the reactions and a press statement that's coming in from Sudhanshu Trivedi.
2: अगर कोई कहता है कि ये मुस्लिम लीग यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो मार्च 1949 में बनी है ये जिन्ना की मुस्लिम लीग नहीं है तो सरासर झूठ बोलता है, क्योंकि उसके संस्थापक मोहम्मद इस्माइल जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे. और अगर जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था तो वो मुस्लिम लीग जिसके साथ आज कांग्रेस मिलकर केरल में सरकार चला रही है उसके संस्थापक मोहम्मद इस्माइल को कायदे मिल्लत कहा जाता था. अगर ये मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग नहीं है तो ये कांग्रेस भी वो कांग्रेस नहीं है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते थे. अब आइए साहब, राहुल गांधी जी को क्या जरूरत थी वॉशिंगटन में जाके ये सब बोलने की कि बीजेपी इज कम्युनल एंड मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेक्युलर. और 2011 में बकौल विकीलीक्स, मैं नहीं कहता हूं विकीलीक्स में जो कुछ लिखा हो सब कुछ सही है, पर आज तक कांग्रेस से खंडन नहीं आया है कि उन्होंने जाकर अमेरिकी राजदूत से बातचीत में यह कहा कि लश्कर ए तैयबा से ज्यादा बड़ा खतरा उनके लिए हिंदू अपराइजिंग नजर आ रही है. यानी जो नेहरू की सोच थी वही राहुल गांधी की सोच है. और इतना ही नहीं, ये सोच किस प्रकार से सर्वत्र व्याप्त है कि सुशील कुमार शिंदे जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने जनवरी 2013 में जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में कहा कि आरएसएस वाले शिविर चलाते हैं देश में डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज के लिए. और जब सुषमा स्वराज जी ने बताओ नेता प्रतिपक्ष पूछा तो भारत के इतिहास का कितना विचित्र और निंदनीय उदाहरण है कि सुशील कुमार शिंदे जो उन्होंने कहा आप गृहमंत्री हैं आपने किस आधार पर बोला सदन के पटल पर साफ करिए, तो उन्होंने कहा मैं अपना बयान वापस लेता हूं, मैंने ऐसे ही बोल दिया था. यानी यह दर्शाता है कि इनकी बातें तथ्य पर आधारित नहीं होती हैं और यह पूरी तरीके से कपोल कल्पना पर आधारित होती हैं. अब कांग्रेसियों के लिए परम आदरणीय और सम्माननीय जवाहरलाल नेहरू जी जिनका उल्लेख उनके लिए सेक्युलरिज्म के सरताज हामिद अंसारी साहब ने किया है, तो मैं नेहरू जी की के मनोभावों को मैं व्यक्त करना चाहता हूं उन्हीं की जवानी. नेहरू जी ने 17 मार्च 1959 को आकाशवाणी के साथ एक कार्यक्रम में जिसमें कि वो भारत के म्यूजियम का उद्घाटन कर रहे थे और तत्कालीन शिक्षा मंत्री हुमायूं कबीर भी थे, वो क्या कहते हैं मैं कोट कर रहा हूं. मिस्टर हुमायूं कबीर रिफर्ड टू द ग्रेट टेम्पल्स ऑफ साउथ. वेल दे आर वेरी ब्यूटिफुल सम ऑफ द टेम्पल्स ऑफ द साउथ हाउएवर रिपेल मी इन स्पाइट ऑफ देयर ब्यूटी. आई कैन नॉट स्टैंड व्हाई डू आई डू नॉट नो आई फील सप्रेस्ड. यानी जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि दक्षिण भारत के मंदिर जिनकी हुमायूं कबीर तारीफ कर रहे हैं वो अपने शानदार स्थापत्य के बावजूद मुझे रिपेल करते हैं, मुझे उनसे एक विपरीत प्रभाव महसूस होता है और मैं डिप्रेस्ड फील करता हूं. एंड हाउ एवर जब मैं ताजमहल इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स एनी वेयर इन द डिलाइट टू द आई एंड स्पिरिट टू सी. ताजमहल देखकर मेरी आंखों को सुकून मिलता है. अब सुनिए, ताजमहल संगमरमर से बनी इमारत है और वही जवाहरलाल नेहरू 1962 में क्या कहते हैं मंदिरों में संगम. अच्छा ये जो मैंने बोला है इसमें भी कांग्रेसियों के सुलभ संज्ञान के लिए चाचा जी के चाहतों वालों के लिए मैं बोल देना चाहता हूं द सोर्स इज स्पीच बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 17th of March 1959. सोर्स इज सिलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 47 इन द फर्स्ट एडिशन फ्रॉम पेज नंबर 401 to 406. अब आइए साहब, वो संगमरमर का ताजमहल नेहरू जी को कितना अच्छा लगता है मगर वही बोलते हैं मंदिरों में संगमरमर या मार्बल इतना ज्यादा यूज होता है कि मुझे गुसलखाने की याद आती है, बाथरूम की याद आ रही है. इसका सोर्स है सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 74 इन द ओरिजिनल एडिशन पेज नंबर 181. आप फितरत देखिए,

0: किए, मंदिर में डिप्रेशन, ताजमहल को देख के वाह क्या सुंदर, और मंदिरों के संगमरमर पे बाथरूम याद आता है। ये है असली फितरत। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं बोला था, उन्होंने कहा कि संगमरमर के पत्थर से चाहे जितनी अच्छी भी मूर्तियां बना दी जाए, मगर मुझे उसमें से गुसल खाना ही याद आता है, बनारस के लोगों को भले ही बुरा लग रहा हो। यानी बुरा लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ इतना ही नहीं है, नेहरू जी ने वंदे मातरम के लिए क्या कहा वो सबको पता है। अब जो इन्होंने कोट किया है वही नेहरू जो कि ये कहते हैं विदेशी आक्रांताओं के लिए, वही नेहरू छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए लिखते हैं लूट ऑफ सूरत, और जब उसका विरोध होता है तो 1936 में वो विड्रॉ करते हैं और रिग्रेट व्यक्त करते हैं। मगर वही नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जहां महमूद गजनी का वर्णन है वहां कहते हैं गजनी वॉज फार मोर ए वॉरियर, ही हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। और इस कदर छुपाते हैं कि मथुरा में जो गजनी के आने का उल्लेख होता है उसमें वो कहता है अरे इतने सुंदर इमारतें, मुझे लगता है इनको बनाने में तो 200 साल लगे होंगे, फरिश्तों ने बनाया होगा। और वहीं पर नेहरू जी रुक जाते हैं, कहते देखिए वो कितना बड़ा कला का पारखी था। जबकि उनके साथ आए हुए जो इतिहासकार थे जिसमें उतबी हैं, फरिश्ता हैं, मिनाजुस सिराज हैं, वो लिखते हैं कि ये कहने के बाद गजनी ने कहा सारे मंदिरों को तोड़ दो, आग लगा दो, नेफ्था लगा के आग लगा दो। मगर देखिए कैसे वो छुपाते हैं, ये उनके दिल की हकीकत है। और अब मैं कोट कर रहा हूं जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में मंत्री रहे श्री एनवी गाडगिल के लिए, उनके इन्हीं कारणों की वजह से वो ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के समय हिंसा बढ़ी। द स्पीचेस ऑफ नेहरू ऑन द मुस्लिम प्रॉब्लम इंसाइटेड देम एंड इन्फ्यूरिएटेड द हिंदूज। द डिफरेंस बिटवीन नेहरू एंड पटेल ऑन हाउ टू डील विद मुस्लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो। द एटमोस्फियर बिकॉज ऑफ द नेहरूज स्पीच इज गेटिंग टेंसर एंड टेंसर एंड इट इज क्रिएटिंग रिस्क टू गांधी जीज लाइफ। एनवी गाडगिल हु वाज़ द मिनिस्टर इन नेहरूज कैबिनेट इन हिज बुक फ्रॉम इनसाइड द गवर्नमेंट इन द ओरिजिनल एडिशन ऑन पेज नंबर 147 to 148। इसीलिए हामिद अंसारी जी बधाई के पात्र हैं, उन्होंने इतिहास के गड़े हुए मुर्दे उखाड़े नहीं हैं, उन मुर्दों में जान फूंक दी है। जो लोग भूल गए थे उनको भी वो सारी की सारी चीजें उन्होंने याद दिला दी हैं। इसलिए हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि आज अंसारी साहब ने अपने बयान से साबित कर दिया है कि कांग्रेस जिस प्रकार के मुस्लिम्स को आगे बढ़ाती है उनके अंदर वही लीगी भावना होती है जो कांग्रेस के अंदर आज पूरी तरीके से व्याप्त हो गई है। और इसलिए हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि नेहरू जी ही, एक और बात कोट कर दूं, 1935 में ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखते हैं आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट द हिंदू नेशनलिज्म एज डिस्क्राइब्ड बाय स्वामी विवेकानंद। यानी 1934 में ये लिख रहे हैं, और जैसे 1937 में जिन्ना कहता वंदे मातरम का विरोध करो खड़ाक से सरेंडर, 6 अप्रैल 1938 को वो लेटर लिखते हैं नहीं नहीं हम सब बंद छोड़ने को तैयार हैं, सब काटने फाटने को तैयार हैं, 1944 में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिख देते हैं। यानी जो गलती कांग्रेस ने 100 साल पहले की थी वही आज कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हामिद अंसारी साहब ने कांग्रेस को एक्सपोज किया, नेहरू जी को एक्सपोज किया, और ये साबित किया कि वामपंथ एक खतरा है, उसके लिए उससे अब एकदम साफ हो गया कि कांग्रेस के चेहरे का मास्क हट गया है और वो पूरी तरीके से साफ हो गया है। इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस वालों को नेहरू जी को कोट करने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि उनकी किताबों में जो कुछ लिखा है शायद उन्होंने खुद भी नहीं पढ़ा है। और राहुल गांधी जो ऐसे नेता हैं, आपने पढ़ा लिखा दो शब्द सुने होंगे ना, वो सिर्फ लिखे हैं पढ़े नहीं है, खटाखट ट्विटर पर लिखते हैं और पढ़ते कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा नेहरू जी और गांधी ने जो कुछ लिखा है उसको पढ़िए और याद रखिए, बैठे हैं वो दिल में इतने राज छुपाए, यानी जो उनका साहित्य है वो बैठा है दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा एक पन्ना उठे तो तुम्हारा दिल डगमगाए। धन्यवाद। I think I would like to remind you that in Kerala, the Grand Mufti has said that the women should not come out of house. उन्हें बाहर आना ही नहीं चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा है कि महिलाओं को ऐसे रखना चाहिए जैसे नेकलेस या हार को तिजोरी में बंद करके रखते हैं, वैसे रखना चाहिए। यह केरला के ग्रैंड मुफ्ती ने बोला है, इसलिए मैं कह रहा हूं विदेश में क्या बोला गया वो तो छोड़िए। अब मैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से ये कहना चाहूंगा, ए भाई, स्मैश पैट्रियार्की के झंडा बरदार अब ग्रैंड मुफ्ती के हो गए फरमा बरदार। और मैं उनसे कहता हूं, अगर हैसियत है, वहां आपकी सरकार है केरल में, हैसियत है तो चूं बोल के दिखाओ जो हिंदू धर्म ग्रंथों के ऊपर चिंगाड़ते और पता नहीं क्या क्या करते रहते।
1: Sudhanshu Trivedi of the BJP responding to remarks made by Hamid Ansari. In fact, that had triggered a political storm. Lots of reactions had come in. Ansari was speaking at Noorni Memorial Lecture, where he referred to what he described as emerging trends around cultural nationalism. UP Chief Minister Yogi Adityanath had hit back strongly. Now Sudhanshu Trivedi also taking that presser, taking exception to what Ansari had in fact said. Let's go straight across to Tejshree on this. Tejshree, BJP accusing Ansari of selectively highlighting one form of communalism while ignoring other forms of extremism. And in this case, Sudhanshu Trivedi also talking about how Congress is indulging in Muslim appeasement and has been involved in anti-Hindu politics. If you can take us through the criticism there by the BJP leader.
2: Well, absolutely, war of words has been erupted amidst all this controversy. But let us first take a first reaction from the Congress party, one of the very vocal voice from the Congress party, an MP, Mr. Imran Masood. Masood sahab, sabse pehle to aapse is baat ka jawab lena chahenge ki Hamid Ansari ji hain, unhone kaha hai ki Hindu dakshinpanthi sampradayikta hai. Jawaharlal Nehru ko quote karte hue unhone ek lecture mein ye speech kahi thi, ye baat kahi thi. Is par aapko kya kehna hai?
3: Dekhiye, sampradayikta zeher hai, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई दूसरी सांप्रदायिकता हो। नफरत हमेशा देश को नुकसान पहुंचाती है। नफरत से कभी देश तरक्की नहीं कर सकता। जिस देश में नफरत होगी उस देश के अंदर कभी तरक्की के रास्ते नहीं खुलेंगे।
2: बीजेपी एमपी सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि कांग्रेस जो है वो अल्ट्रा लेफ्ट हो चुकी है।
3: हम ना लेफ्ट है ना राइट है, हम स्ट्रेट हैं, हम सीधे हैं बिल्कुल।
2: और साथ ही साथ उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया और इस बात का जिक्र किया कि संगमरमर का ताजमहल नेहरू जी को बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मंदिरों में संगमरमर या मार्बल इतना यूज होता है मुझे गुसल खाने की याद आती है। इससे कोट करते हुए अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
3: इन्हें गांधी परिवार से इतना डर लगता है, इन्हें दिन में भी भूत की तरह नजर आ रहे हैं ये। ये रात को सपने में भी देखते हैं ना राहुल गांधी, तो इनको पसीनम पसीन होकर उठते हैं रात को भी, इन्हें राहुल गांधी से इतना डर लगता है।
2: लेकिन ये कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता जो है वो कांग्रेस पार्टी फैला रही है और हिंदुओं से नफरत है कांग्रेस पार्टी को, इसीलिए इस तरह की अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो है वो कांग्रेस।
3: हिंदुत्व का सारा ठेकेदारी इन्हीं के पास है क्या? सारी ठेकेदारी इन्होंने ले ली क्या हिंदुत्व की या सनातन की? सारी ठेकेदारी है, मंदिर बनाओगे और चोरी कराओगे, सारी ठेकेदारी इसी काम के लिए कर रहे हो, मंदिर बनाओ और फिर चोरी कराओ।
2: अलग अलग नेताओं को कोट करते हुए भी सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कब कब हिंदुत्व का अपमान किया गया, किस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान कांग्रेस पार्टी द्वारा उनके नेताओं द्वारा किया।
3: हमने तो किया नहीं, लेकिन ये रोज हमारा अपमान करते हैं, इस पर भी बात करेंगे? नहीं करेंगे। हमारी मस्जिद ढा दोगे तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारी मस्जिदें तोड़ दोगे, दरगाहें तोड़ दोगे, मदरसे तोड़ दोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती ये बातें बोलते हुए? पहले अपने गिरेबान में जागो कि तुम क्या कर रहे हो। कांग्रेस सबकी पार्टी है, कांग्रेस किसी जाति किसी धर्म किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है। कांग्रेस एक विचारधारा है और उस विचारधारा के अंदर हिंसा है नहीं है, नफरत नहीं है, उस विचारधारा के अंदर प्रेम है, सद्भाव है, भाईचारा है।
2: All right, so that was Congress MP Imran Masood hitting out in very strong words at the BJP for the kind of remarks that the BJP has been making over the Congress party as far as the politics of appeasement is concerned. Back to you.
1: Right, thank you.

0: इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: Voices that redraw boundaries.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्थ्योर मसाला।
5: Voices that redraw boundaries.

0: हर कोई आज शर्मसार है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में दारू को आगे बढ़ाया, उनके चेले भगवंत मान कह रहा है मुझे चिट्ठा दो चिट्ठा दो चिट्ठा दो चिट्ठा दो, ये मुख्यमंत्री है। आपका काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, आपका काम है शिकायतकर्ता अगर आपके पास आए उसको इंसाफ मिले। और यहां मुख्यमंत्री कहता है ड्रग्स दो चिट्ठा दो। भारतीय जनता पार्टी बड़ी जिम्मेदारी से, जैसा हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, पंजाब में ऐसी पापी नशीली जनता विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। पंजाब का युवा रोजगार के अवसर मांग रहा है जो भारतीय जनता पार्टी देगी। ड्रग्स मुक्त पंजाब, ये हमारा संकल्प है। और ये तस्वीर एक है जो अब पीछे भी लगाई हुई है, ये सच्चाई है, ये भगवंत मान की सच्चाई है। आज कहां है अरविंद केजरीवाल? हर बात पे जो बाइट देते थे, कैमरे के सामने आना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, कहां छुपे हुए हैं? भगवंत मान एक शब्द नहीं बोल पाए हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से एक और बात उठाता हूं, ये पापी आपका मैनिफेस्टो है। 2022 में जब पंजाब में विधानसभा चुनाव थे तो इसकी एक लाइन जो वादा किया था पापी आपने, वो पढ़ना चाहूंगा। कहा था पंजाब विल बी मेड ड्रग फ्री विद इन 1 month ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड डी एडिक्शन ऑफ ड्रग विक्टिम्स विद इन 6 months। एक महीने में ड्रग्स खत्म, 6 महीने में जो युवा ड्रग्स लेता है उसको सहायता मिलेगी, रिहैबिलिटेशन होगा। और आज पंजाब के लोग कह रहे हैं सबसे ज्यादा सहायता अगर किसी को चाहिए कि नशे की लत लग गई तो सूर्य अस्त भगवंत मान मस्त, ये बनाएंगे नशा मुक्त पंजाब। इस मंच से बड़ी जिम्मेदारी से हम ये मांग रखते हैं, जब आप पंजाबियों को इंसाफ नहीं दे सकते, जब आप पंजाब को नशा मुक्त नहीं बना सकते हैं, भगवंत मान आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, तुरंत इस्तीफा दीजिए। पंजाब के भविष्य के साथ, पंजाब के युवा के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। बिना एक क्षण गवाए भगवंत मान को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जो जग्गा सिंह के साथ हुआ, गुलजार सिंह के साथ हुआ, वो किसी और हमारे पंजाबी भाई बहन के साथ ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए हम मांग करते हैं भगवंत मान तुरंत इस्तीफा दे। दूसरा, चाहे वो गुलजार सिंह का परिवार हो, चाहे वो जग्गा सिंह भाई का परिवार हो, इनको इंसाफ देने की जिम्मेदारी भगवंत मान की है। इनको इंसाफ कब मिलेगा, ये हमारी मांग है, सुनिश्चित करिए इनको इंसाफ मिले। और बड़ी प्रखरता से स्पष्टता से मैं कहना चाहूंगा, जहां वर्दी ही प्रताड़ित करे भगवंत मान के इशारे पर पंजाबियों को, तो हम ये भी मांग करते हैं कि एक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती पुलिस द्वारा। ऐसा ही मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित भी है, गुलजार सिंह के मामले में सीबीआई जांच कि स्वीकृति दें भगवंत मान, ही शुड गिव हिज कंसेंट टू अ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन.
1: That's the BJP aggressive against the Aam Aadmi Party government in Punjab over this latest case. Now, as I was telling you, ladies and gentlemen, this young man identified as Jagga Singh consumed poison during anti-drug protests in Punjab. He made serious allegations against a local sarpanch and his aides. In fact, claimed that he was threatened after posting a video highlighting the drug problem in his village. Now, Congress has also jumped on to this. Congress leader Sachin Pilot, who is the in charge of the state of Punjab for the party, questioned the safety of those raising their voice against the drug menace in Punjab. Let's listen in.
2: ਮਨ ਭਾਈ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ?
3: ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ.
2: ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ?
3: ਨਮੋਲੀ.
2: ਭਾਈ ਅਸਲ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ?
3: ਐਕਸ਼ਨ ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨੈਟ ਤੇ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦੀ ਆ.
2: ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਈ?
3: ਸੁੱਕੀ ਬੋਣੀ ਆ ਜੀ.
2: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ
4: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ
2: ਕਿੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਿਆ, ਕੀ ਕਿਹਾ
3: ਉਹਨਾਂ ਨੇ?
2: ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਗਲਤ
3: ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਰਨ ਗਏ.
5: ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ, ਦਬਾਓ ਰੁਕਨੇ ਕਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹਾ. ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਾ. ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਡੀ ਸੀ ਆਫਿਸ ਕੇ ਆਗੇ ਆਕਰ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਉਸਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ कि आम आदमी पार्टी के लीडर उसको घर जाकर धमका रहे थे. मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या इसलिए पंजाब आपको संभाला गया था? क्या ये क्रांतिकारी हैं? क्या ये इनकलाबी रवैया है आपका?
6: इस तरह की पंजाब दे अंदर इसलिए गुरु दोखी भगवंत मान का नादर शाही राज चल रहा है. गली गली, बाजार बाजार, मल्ला मल्ला, पिंड पिंड ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਟੋਫੀਆਂ ਵਾਂਗ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ. ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰੇ. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਨੇ.
7: ਵਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ ਵਿਦ ਦੈਟ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹੈਡ ਟੂ ਟੇਕ ਦਿਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟੈਪ. ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਲਾਰਮਿੰਗ. ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਅ ਬੋਰਡਰ ਸਟੇਟ. ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅੰਡਰ ਥਰੈਟ ਐਂਡ ਆਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ playing out in front of the entire media and the entire nation that we have an incompetent chief minister, a chief minister who's intoxicated, who himself is fighting an alcohol abuse issue. He has been admitted in hospital not once, a number of occasions. This entire incident, why I say this about the chief minister, and I'm sorry that I have to bring this up, but the fact of the matter is, when the chief minister himself is not in the right frame of mind, can he deliver law and order in a border state? Answer is no. You have an incompetent Aam Aadmi Party government being remote controlled by a fugitive, an accused of Mr. Arvind Kejriwal or his cronies Satinder Jain and Manish Sisodia. You have a drunk chief minister. Why should the people of Punjab pay a price for their incompetence?
1: All right, breaking news coming in at this moment. The Aam Aadmi Party government in Punjab has slammed the man who in fact consumed poison, Baltej Pannu, Aam Aadmi Party leader, has spoken on the Sangrur issue, and he has said that this Jagga Singh, this individual, is a

0: drug addict and has 8 FIRs registered against him. The police are investigating who instigated him to consume poison. The question now, ladies and gentlemen, is that whether this man is an addict or not, the allegations that he has made should be investigated rather than, in fact, coming out and speaking about, the cases against him at this moment. So this is the response of the Aam Aadmi Party. Listen in.
1: वो ऐसा है कि वो ड्रग एडिक्ट है व्यक्ति और उसके ऊपर 8 FIR दर्ज है उसको किसने उकसाया इसकी जांच पुलिस कर रही है
0: Gurpreet Singh Chheena, my colleague, joining me with more details on this story. Gurpreet, instead of looking into the allegation that this man has made, the Aam Aadmi Party's response is about, picking out the FIRs against this man. I think I've lost that line with Gurpreet. We'll try and reconnect with him at this moment. This is the big story that we are tracking at this moment, ladies and gentlemen, where the this attempted suicide which has taken place in Punjab over the drug menace and the politics over it is speaking. Meanwhile, former Vice President Hamid Ansari's remarks have triggered a political storm with the BJP and the Congress, along with Muslim clerics also jumping into it. Hamid Ansari was speaking at the A.G. Noorani Memorial Lecture, where he referred to what he described as emerging trends around cultural nationalism. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath and the BJP has questioned his remarks. Meanwhile, there are other components of the NDA, like the RLD, who have also rejected the assessment made by Hamid Ansari. Listen in.
2: Purva Uprashtrapati Hamid Ansari sahab ne ek kitab ko quote kiya hai, jo 2019 mein likhi gayi hai. Aur bakaul unke Nehru ji ye keh rahe hain ki unke liye communism utna bada khatra nahi hai jitna Hindu rashtravad. He has thoroughly exposed that Congress has become completely Muslim League माओवादी कांग्रेस कोट किया कि बकौल नेहरू जी कम्युनिज्म से बड़ा खतरा यानी कम्युनिज्म को वो एक खतरा मानते थे आप ही बोलते थे ना नेहरू का संदर्भ क्यों लाते हैं नेहरू का संदर्भ कौन लाया है हम नहीं लाए हैं आपके समर्थक लाए हैं
3: अहमद अंसारी जी हैं उन्होंने कहा है कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता है जवाहरलाल नेहरू को कोट करते हुए उन्होंने एक लेक्चर में ये स्पीच कही थी इस ये बात कही थी इस पर आपको क्या कहना है
4: देखिए सांप्रदायिकता जहर है चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई दूसरी सांप्रदायिकता हो नफरत हमेशा देश को नुकसान पहुंचाती है नफरत से कभी देश तरक्की नहीं कर सकता जिस देश में नफरत होगी उस देश के अंदर कभी तरक्की के रास्ते नहीं खुलेंगे
3: बीजेपी एमपी सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि कांग्रेस जो है वो अल्ट्रा लेफ्ट हो चुकी है
4: हम ना लेफ्ट हैं ना राइट हैं हम स्ट्रेट हैं हम सीधे हैं बिल्कुल इन्हें गांधी परिवार से इतना डर लगता है इन्हें दिन में भी भूत की तरह नजर आ रहे हैं ये रात को सपने में भी देखते हैं ना राहुल गांधी तो इनको पसीनम पसीन होकर उठते हैं रात को भी इन्हें राहुल गांधी से इतना डर लगता है
3: लेकिन ये कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता जो है वो कांग्रेस पार्टी फैला रही है और हिंदुओं से नफरत है कांग्रेस पार्टी को इसीलिए इस तरह की अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो है वो कांग्रेस
4: हिंदुत्व का सारा ठेकेदारी इन्हीं के पास है क्या सारी ठेकेदारी इन्होंने ले ली क्या हिंदुत्व की या सनातन की सारी ठेकेदारी है मंदिर बनाओगे और चोरी कराओगे सारी ठेकेदारी इसी काम के लिए कर रहे हो कि मंदिर बनाओ और फिर चोरी कराओ
5: देखिए पहली बात तो यह है कि मैं हामिद अंसारी साहब के पहले भी उन्होंने बहुत कंट्रोवर्सी बयान दिए थे और उसके बाद फिर उन्होंने एक कंट्रोवर्सी बयान अपना मुसलमानों के नाम से दिया है मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं आज फिर उनको मुसलमान याद आ गए जब वो सत्ता में थे बड़ी बड़ी पदों पर बैठे थे तब वो सेकुलर थे आज वो उन्हें मुसलमान याद आ गए उनको अब मुसलमानों के अंदर उनकी छवि बिल्कुल उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है कोई उनसे मिलने तक नहीं जाता तो उनको लगा कि फिर मुसलमानों पे कोई सियासत की जाए
0: A dinner at the JW Marriott Hotel in Mumbai took an unexpected turn when

0: आईआईटी बॉम्बे पवई को राजनीतिक अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा है पता नहीं। हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कोई बच्चा जब मृत होता है, आत्महत्या करता है, तो लोग उसका पीड़ा समझते हैं, लोग उसका दर्द समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो समझिए कि उस शिक्षक पर क्या बीत रही होगी जिसको निकालने की बात हो रही है, जिसको फांसी पर चढ़ाने की बात हो रही है। उस आईआईटी पवई के डायरेक्टर पर क्या बीत रही होगी जिसका इस्तीफा आप ले रहे हैं। दोनों विषयों को गंभीरता से समझिए। बच्चे की मृत्यु का सभी को दुख है, संवेदना है। उसने किस परिस्थिति में आत्महत्या की, क्यों की, कैसे की, इसकी जांच होनी चाहिए। एसआईटी बैठे, क्राइम ब्रांच आए, पुलिस आए, इसकी एक निष्पक्ष जांच भी हो। साथ ही साथ नकल को भी तो रोकना शिक्षक का ही काम है, मैनेजमेंट का ही काम है। एक आदर्श भारत बनाना है, एक आदर्श शिक्षक और आदर्श विद्यार्थी बन के बनाना है। पता नहीं कौन लोग इसमें राजनीति ढूंढ रहे हैं।
1: आईआईटी पवई में जो विद्यार्थी ने आत्महत्या की है, ये बहुत ही एक दुखद घटना है। पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। पढ़ाई लिखाई तो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर कोई अच्छा इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन सकता तो वो दूसरे क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है। एक अच्छा पेंटर, अच्छा शिक्षक के लिए बच्चों को, विद्यार्थियों को शिक्षा में प्रेशर नहीं लेना चाहिए। और वहाँ पे जो हर स्कूल में, कॉलेज में जो शिक्षक है, उनको भी, सभी विद्यार्थियों को इस पर काउंसलिंग करना चाहिए।
2: मुंबई के आईआईटी में वहां के छात्र ने खुदकुशी की और खुदकुशी का मामला सामने आने के बाद परिवार ने कुछ बिंदु पर शक जताया। सरकार ने पूरी जांच पुलिस को करने के लिए निर्देश दे दिए। अब पुलिस जांच कर रही है, पर दुर्भाग्य से एक परिवार ने अपने बच्चे को खोया है। मां ने अपने बेटे को, पिता ने अपने बेटे को खोया है। अपनी आंखों के सामने उसको चिता पे चढ़ते हुए देखा है। जांच के बाद कौन उसका कारण था, किसने उकसाया था, कौन से बिंदु थे आत्महत्या के, सारे सामने आएंगे। पर उसके पहले ही कुछ राजनीतिक दलों को इसमें खुद पड़ने की क्या आवश्यकता।
3: Let's now shift focus to the story which is coming in from Jamoi, an absolutely shocking, disturbing story of how two young people, two minors in fact, have been assaulted, traumatized. This girl has been groped in the name of moral policing. Now this story which in which you can see two youngsters have been harassed by a group of men. They were stopped while they were traveling. They were on a school. Both of them are friends. They were coming back from their tuition at the time when this assault took place. Despite, you can very clearly see the young boy trying to shield her, save her. And it is overpowered, is beaten up. And then the shocking video where these men are touching the girl inappropriately. And also then to try and carry her, on the side of the road. Nobody, there are some other cars that you will see passing by as well. Nobody even tried to help them. The youngsters are seen pleading with their folded hands in an effort to be left alone. Now, this, ladies and gentlemen, exposes the law and order situation in Bihar, and especially for the Samrat Chaudhary government, the NDA government, which came into power telling people about the so-called Jungle Raj of the RJD. Is this the law and order that you promised? Now, Rahul Gandhi, the leader of opposition, has jumped in. He has demanded POXO Act against all the accused, those who took part in this assault. Three people have been arrested. But shamefully, JDU leader Umesh Kushwaha tried to downplay the incident and call this a minor, small incident.
4: जो भी घटना तो गलत हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और हम लोग जो प्रोफाइल है उसके आधार पर ही देख रहे हैं कि वे कोई जो ग्रामीण जो है जो चरवाहा, उस टाइप का ही प्रोफाइल इनका लग रहा है। हम लोग बाकी जो एक्यूज है उनकी गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद अन्य लोगों का डिटेल पता चल सकता है कि वे क्या करते हैं।
5: घटना की हम तीव्र निंदा करते हैं सरकार की ओर से, और निश्चित रूप से वहाँ के पुलिस पदाधिकारी प्रशासन के पदाधिकारी इसमें एक उचित और कठोर कदम उठाएंगे। मैं इस जैसे आपसे मीटिंग खत्म हो जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ के मैं पुलिस अधीक्षक से भी बात करूँगा जम्मू के, और सुनिश्चित उन्हें कहेंगे कि सुनिश्चित करें कि कोई भी इसके लिए जिम्मेवार हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, उसको चिन्हित करके उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें।
6: छोटी घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील हैं, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था, कोई घर से बाहर निकलते थे, किस तरह का बिहार था, क्या हालात था, लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे, ऐसा बिहार था ना। आज तो लोग कम से कम ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है, प्रशासन जल्द से जल्द जो घटना का जो अंजाम दिया है, चाहे 12 से 12 कोई कितना बड़ा कोई अपराधी क्यों नहीं हो, वो जल्द ही पुलिस के कब्जे में आएंगे।
7: एक वीडियो वायरल हो रहा है जो सर शर्म से नीचे करता है। मामला लखीसराय जमुई बॉर्डर का है। लड़के और लड़की घूमने निकले थे स्कूटी से, उसके साथ दिन दहाड़े छिड़खानी हुई, जहां बेटियां सुरक्षित नहीं है, सीधा ठोक करके कहते हैं कि 12 बजे रात तक बेटियां घूमती है, अब तो कोई सुरक्षित ही नहीं है भाई। किसी के घर की बेटी बहू अगर सड़क पर निकलेगी और इस तरह से छिड़खानी होगा तो कैसे निकलेगा, ये भय का वातावरण पैदा हो रहा है बिहार के अंदर में।
3: Yes, please, let's go. Yep. This shocking story is going to be my top focus at Nationwide at 6 o'clock as well, ladies and gentlemen. This is a mindset that needs to be challenged. All these criminals need to be given with strictest of punishment. An example needs to be made out of them. Moving on now, a social media reel criticizing MNS Chief Raj Thackeray has triggered a shocking act of public humiliation, in fact, criminality in Pune. MNS workers allegedly grabbed Marathi content creator Mahesh Mote, blackened his face and forced him to apologize. In a video of the incident, Mote is seen with slippers placed on his head as he is made to do sit-ups. He even is forced to bow down before a photograph of Raj Thackeray and apologize to the leader. The traumatized content creator later put out another video breaking down as he said that his comments were unintentional. He also apologized to Raj Thackeray and MNS workers with folded hands.
8: Kerala ke levarti mitranno khup chuki je video banavle maafi magitli parat ankin chuk zali hanla shubham dadala bollo mi khar sangto mitranno maharashtrat rahun कधी तुम्ही राजसाहेब असू द्या किंवा आपला मनसे पक्ष असू द्या, कधी यांच्याविषयी काय बोलू नका। आणि मित्रांनो, ह्यांनी कुठली मला गुंडगर्दी दादागिरी नाही केली, उलट माझ्यासारख्या वेड्याला माणसानं असं उठायचं काय बी बोलायचं, खरंच चूक झाली मित्रांनो।
9: काल पुण्यात आल्याच्या नंतर आज तो कात्रजमध्ये येणार आहे अशी जवळपास माहिती होती। आज कात्रजच्या उद्यानामध्ये तो जसा आल्याच्या नंतर तातडीने आम्ही सर्व महाराष्ट्र सैनिक एकत्र आलो। एकत्र आल्याच्या नंतर आम्ही त्याला ऑफिसला घेऊन गेलो। आदरणीय राजसाहेब ठाकरे यांच्या फोटो पुढे त्याला आम्ही झोपवलं, त्याला तिथं साहेबांची माफी मागायला सांगितली आणि मनसेच्या स्टाईलने त्याला उत्तर दिलं, त्याला चांगली आम्ही आमच्या भाषेत महाप्रसाद दिला त्याला, त्याचबरोबर त्याला साहेबांची माफी मागायला सांगितली, त्याला काजळाची मिशी काढली, त्याला त्याच्या चप्पल त्याच्या डोक्यावरती ठेवायला सांगितल्या आणि त्याच्या उठाबशा मारायला सांगितल्या।
10: पुणे में एक लड़के का मुंह आप काला करते हैं चप्पल सर पर उठक बैठक, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक रील बनाया। क्या ये है एमएनएस की स्टाइल, तालिबानी स्टाइल? जो आप महाराष्ट्र का नेता बनना चाहते हैं तो ये गुंडागर्दी करना बंद कीजिए। जो आपकी आलोचना करते हैं आप उनके प्रति ऐसे प्रस्तुत आते हैं कि गुंडागर्दी ही चलेगा। पुणे पुलिस को FIR दर्ज करना ही चाहिए भारतीय न्याय संहिता के निमित्त, और जो व्यक्ति गुनेगार हैं उनको पकड़ना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हुलिगनिज्म हैज नो प्लेस इन पब्लिक सर्विस।
3: All right, a quick break at this moment, ladies and gentlemen. On the other side, news and updates will continue with my colleague, Rahesh Sehgal.
11: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
12: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
13: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
14: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
15: वाओ मामा क्या स्वाद है।
14: अरे मेरे राजा
16: सबका राजा प्योर मसाला।
17: A generation with questions.
18: The starry and the whole glamorous side of it.
19: As I said, like I can't empathize with it.
17: Unconventional.
20: I feel blessed. As long as the work is going on, I'm happy.
17: Unapologetic. Unafraid of change. Ready to challenge.
21: Aspirational.
17: The ideas. The issues.
22: You really are.
17: The young view.
22: Public perception.
17: NDTV Yuva. 28 September 2026. Only on the NDTV network.
23: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
24: The 20th Asian Games are officially underway in Aichi, Nagoya in Japan. For the next 16 days, this is where India's sporting dreams will play out.
25: We are in the happy hunting ground with the athlete I am sitting with right now, PV Sindhu.
26: 32 years and no medal. Can India's weightlifting contingent give us that elusive medal?
27: Gold rush on the field.
28: Go for glory, only on NDTV.
29: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
30: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100.
31: दिस isn't जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव. दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस. व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी. Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
32: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddharamaya.
33: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
34: High rate, check the audio, high rate, check the audio.
33: Let's do it, let's start.
35: Breaking story, we're jumping straight into it.
33: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
36: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
37: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
38: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
39: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
40: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
41: By noon, the world has changed. The headlines tell you what happened. Breaking Ground tells you why. We break down the story. We demand answers.
42: There is a deathly silence around this makeshift mass burial ground here in Bharatpur district in Nepal.
43: I want you to reach out to the Maharashtra Chief Minister today through our channel and tell them what you've been through as a father.
44: Marne ke bada kya hoga?
43: As a journalist, I can say you're not

0: एक्सरसाइज में से तीन सुसाइड्स जो थे वो दलित बैकग्राउंड के बच्चों के थे. सो लाइक आई सेड, दिस इज़ नॉट एन आइसोलेटेड इवेंट, राइट? सो वी नीड इमीडिएट रेजिग्नेशन, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी हमें वैसे ही मिलेगी. वी नीड रेजिग्नेशन, वी नीड अ स्टूडेंट इंडिपेंडेंट स्टूडेंट बॉडी यहाँ पर जो स्टूडेंट के बिहाफ पर बोले, यू नो, टू गिव स्टूडेंट्स सम पावर एज वेल. वी नीड मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंसेज एंड ऑल ऑफ दैट. वी ऑल्सो नीड कॉम्पेंसेशन फॉर द फैमिली, जिन जो उनको भी काफ़ी पुलिस ने परेशान कर रखा है जब से वो यहाँ पर आए हैं. उनका एक अकेला बेटा था, वन ओनली चाइल्ड, राइट? तो वी नीड कॉम्पेंसेशन फॉर द फैमिली.
1: एंड जॉइनिंग मी लाइव नाउ इज श्यामलता ताड़े, शी इज साहिल्स ग्रैंडमदर. मैम, हमें ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद, एंड हम माफ़ी चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ. अभी आप सब कैसे हैं? आप ऑफ कोर्स डिमांड रख रहे हैं. आपने कहा है कि आपके पोते के साथ, साहिल के साथ कास्टिज्म, रेसिज्म हुआ है, तभी उसने अपनी जान ली.
2: सर, मैडम, साहिल बहुत ही होशियार स्टूडेंट था. वो बचपन से ही सभी क्लास में फर्स्ट आता था. आज कॉलेज में दूसरा साल था. पहले साल में भी बहुत ही अच्छा पढ़ाई करके वो पढ़ाई की. ये साल भी बहुत ही अच्छा चल रहा था. मालूम नहीं वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं. हमारे बच्चे पर बहुत ही वो कॉलेज वाले ने अन्याय किया है. हमारा बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता. हमारा बच्चा कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि वो आईआईटी में जाने के लिए बहुत मेहनत किया हुआ लड़का है. और उनका आदर्श सभी बच्चे देख कर पढ़ाई कर रहे थे. हमारी एक हमारी मांगनी है कि वो कॉलेज के जो गुरुजन वर्ग है उनको कड़ी से कड़ी सजा हो जाए. उस और चौकसी सीबीआई से हो जाए, बस ये मांगनी है. हमारा साहिल अकेला लड़का था, वो सुसाइड नहीं कर सकता था. उनको न्याय मिलना चाहिए, बस यही हमारी मांगनी है. और हमको सीबीआई पर पूरा भरोसा है कि हमारे बच्चों को न्याय जरूर देंगे.
1: ज़रूर मैम, एनडीटीवी में हम ये कहानी चलाएंगे जब तक आपके पोते को न्याय नहीं मिलता है. आपके सन ने, साहिल के पिताजी ने प्रोफेसर डोला का नाम लिया है. कभी साहिल ने जब वो आपसे बात करता था, कभी बताया है कि उसके साथ कॉलेज में जो प्रोफेसर है, क्या उसे कास्ट स्लर्स या कुछ खराब बातें कहते थे? कभी उसने ऐसा आपके साथ कहा है?
2: साहिल के मम्मी पापा 8 दिन के पहले साहिल को जाके मिल के आए, तो साहिल के मम्मी पापा को साहिल ने बताया. मैडम, आज साहिल के मम्मी पापा यहाँ पे नहीं है.
1: तो साहिल के मम्मी पापा को पता होगा कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ है. बट अभी जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर डोला, उनको रिजाइन कर दिया गया है. सीबीआई ने, ये मुंबई क्राइम ब्रांच ने ये केस ले लिया है. आप अभी आगे क्या चाहते हैं? क्योंकि आपका ये पोता नहीं था, 4 और स्टूडेंट्स भी थे जिन्हें अपने आप की जान ली है आईआईटी बॉम्बे में पढ़ने के बाद.
2: ये साहिल के फैमिली के तरफ से आपको रिक्वेस्ट है कि साहिल जैसा आगे कभी भी ना हो जाए. साहिल जैसे और साहिल सुसाइड ना हो जाए, किसी बच्चों पर अन्याय ना हो जाए. और वहाँ की जो व्यवस्था है वहाँ पे थोड़ा मानवता जात का बदलाव करे. मानव जाति के साथ मानव के हिसाब से रहो. किसी माँ के बच्चों को सुसाइड ना करने का वक्त आए, बस यही हमारी इच्छा है. और साहिल को न्याय मिलना चाहिए, यही हमारी आपके तरफ से विनती है.
1: पिछली बार साहिल आपसे कब मिला था? माता पिता से 8 दिन पहले मिला था आपसे. आप उनकी दादी हैं, आपसे कब मिला था पिछली बार? और कभी उसने बताया कि उसके साथ कॉलेज में क्या होता है, उसके दोस्त प्रोफेसर क्या कहते हैं, इसके बारे में कभी आपसे वार्तालाप की है?
2: साहिल कॉलेज जाने से पहले हमारा आशीर्वाद लेने के लिए हमारे यहाँ आया था. और उन्होंने बोला कि मेरे जैसे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको भी मैं मार्गदर्शन करूंगा वहां से आके, और सभी बच्चे आईआईटी में जाने को होना, वहाँ बच्चों का भविष्य घड़ता है, ऐसा उन्होंने हमको बोला था। और वहाँ कॉलेज में माँ बाप गए थे, उनको साहिल ने अभी 8 दिन के पहले वहाँ कॉलेज में उन पर जो अन्याय होता वो माँ बाप को बताया है।
1: माँ बाप को बताया। आप साहिल बहुत ब्राइट थे, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, तभी वो आईआईटी बॉम्बे तक गए हैं। उन्हें कभी बताया कि वो बड़े बन के, बड़े होके क्या बनना चाहते थे? कभी आपसे इस बारे में बात की है?
2: हाँ मैडम, साहिल का आइडल वो अपने अब्दुल कलाम जी सर थे, उनका आदर्श सामने रख के साहिल बनना चाहता था। अब्दुल कलाम सर जैसा वो बनना चाहता था। हमारा सपना सब खत्म हो गया है।
1: आई एम सो सॉरी आपको ये सब आपके साथ ये सब हो रहा है। आप थोड़ा प्लीज़ पानी पी लीजिए, हम आपके साथ हैं। हम ये कहानी तब तक चलाएंगे जब तक आपके पोते साहिल को इंसाफ नहीं मिलता है। बट आप अभी क्या कहना चाहते हैं? प्रोफेसर रिज़ाइन कर चुके हैं। आगे आप क्या चाहते हैं अपने पोते साहिल के लिए? उनको कितना इंसाफ मिले?
2: मैडम, हम यवतमाल में गांव में रहते हैं, वहाँ मुंबई में
3: आवाज आ रही है कि
2: क्या
3: वीडियो नहीं आ रहा?
2: कॉलेज में क्या अन्याय होता है, क्या नहीं होता है, ये हमको यवतमाल में, हम गांव के लोग हैं, गांव के लोगों का वहाँ का जो ये है वो मालूम नहीं। हम सीबीआई पर पूरा भरोसा रख के वहाँ पारदर्शिता से
3: हाँ
2: वहाँ की
3: ठीक है।
2: तपास वहाँ का तपास किया जाए, और किसी और साहिल पर ऐसी वक्त ना आए,
3: एक मिनट।
2: बस यही हमारी अपेक्षा है।
3: हाँ जी,
1: हम इधर एनडीटीवी में ये प्रयास करेंगे कि ये साहिल की कहानी सब तक जाए, और ये भी कोशिश करेंगे कि उसे न्याय मिले।
3: हाँ
1: आप किस तरीके से साहिल को याद करना चाहेंगे अब?
2: साहिल को तो हम अभी आप देख नहीं सकते ना, कि कोई न्याय मंदिर से हमको साहिल लौटा नहीं सकते, लेकिन साहिल पर जो अन्याय हुआ है, तो साहिल को अगर न्याय मिलेगा तो हम उन न्याय में भी साहिल को देखेंगे। हम फैमिली से सभी को रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमको साहिल को तो लौट के नहीं दे सकते, लेकिन उस पर जो अन्याय हुआ है उसको न्याय दीजिए, बस यही हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है।
1: जी मैम, आप इधर एनडीटीवी में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साहिल को न्याय मिले। हमसे बात करने के लिए
3: कन्वर्ट कर
1: बहुत बहुत धन्यवाद, और हम
3: दिया।
1: बहुत माफी चाहते हैं कि ऐसी घटना आपके साथ घटी। एंड स्टेइंग ऑन विद द स्टोरी, वी हैव मोर न्यूज कमिंग इन। कांग्रेस प्रोटेस्ट आउटसाइड आईआईटी बॉम्बे कैंपस, दिस आफ्टर साहिल वाकड़े, अ सेकेंड ईयर ओल्ड स्टूडेंट, किल्ड हिमसेल्फ। द फैमिली एलिजेस दैट देयर हैज बीन कास्टिस स्लर्स passed on to him. The professor has stepped down, Professor Dola. But on his screens right now are the protests taken out by the Congress party outside IIT Bombay campus. The students have given out 18 demands, out of which the administration IIT Bombay has agreed to half of it. But on his screens right now, the mayhem that's happening outside the IIT Bombay campus, because remember, Sahil is the fourth student who has killed himself just this year. The students are asking questions, but on the screens right now, the protest taken out by the Congress party seeking accountability and answers, which even the students of the IIT Bombay are also asking, because Sahil Walkley killed himself. Allegedly, the campus says that he was caught using a phone while mid-examination, but his father, Sahil's father, who met him around 8 days ago, has alleged that there were racist slurs passed on to him. Anugo Kaur Sujata, who joined me live. Sujata, what's happening there? Congress party has taken out this protest outside IIT Bombay. Show us around. What's the latest right now? We do know Professor Dola has stepped down, but what's the latest?
4: Well, yes, the youth congress was here at the IIT Bombay main gate where they were protesting. However, they have been detained for now. Let me pan around and show you the visuals. This is the compound where the students are protesting, and like you see, barricades have been put up, but yet the students are sitting there because they say that the last night, the 3-hour long meeting that was held between the director and the students, they have only been acknowledged but not yet fulfilled, and until they are not fulfilled, they will continue with their protest. Now, on the other side, if you see, there were congress protesters who had come here, the youth congress, and they were protesting in support of Kyle Wakore, ensuring that justice is served for him and his family. However, the police deployment here is quite strict and all of the protesters have been detained. The youth congress had scheduled for this protest long time ago, and today while they were executing it, they have been detained. Now what's important here is that a meeting is currently underway with the director Shirish Kedare and the students, and it is likely that all of the demands will be discussed today in the presence of the board of governors as well, and shortly once they are, then an official announcement by them is also to be held shortly, is what we are getting to know for now. But yes, this is an important day for the students, as their 18-point charter, which they had prepared since 18th of September, which they say is quite important for the future of the upcoming students, for the future of IIT, they need to be addressed. And also simultaneously, the crime branch is conducting its investigation in the suicide of Sahil Wakore. Shortly from Sahil's father is going to come here in this campus and to meet the director. Yes.
1: Right, Sujata, I was speaking to Sahil's grandmother, who said that Sahil's father and mother, they met Sahil 8 days ago, and that is when he complained about the racist slurs that was passed on to him by the professor. We are looking at the protest that's happening right now, but 18 demands have been put forth by the students, out of which the campus has agreed to just half of it. Tell us more about what we can expect next, because there's also another professor who has voluntarily stepped down.
4: Well, yes, so far the protest has taken several new dimensions, starting from 18th of September that evening when students sat here stating that the statement which had been issued by the IIT on that night, it stated that Sahil was assured that no disciplinary action would be taken against him. But the students who were present in that examination hall when he was caught cheating, the students there heard Professor and the Dean of Administrative Affairs back then, Surya Narayan Dula, stating that he would face 1 year of suspension. And what the faculty forum is currently defending is that it is a protocol, a set protocol, which the faculty was following. But now the students say that there has been a set system in through which if a student is caught cheating, he must be given a fresh question paper. So the students are on one end not only demanding accountability for Sahil Wakore's suicide, but also that they are trying to highlight the stagnant problems which have been persistent into this administration of the IIT Bombay, and they are of the view that if not changed now, it might always remain the same. In the last 7 months, we have seen more than almost four students committing suicide in this very campus, and none of them being known to the outer world. But this time it was Sahil Wakore who took that step, who killed himself, and eventually the students outraged and they were literally on the roads and onto the compounds of the campus demanding justice. Now today a statement has been issued by the IIT trying to clarify and also apologize about the statement it made earlier, because the statement that they made earlier was completely in view of what they got to know from their faculties, and none of the students were heard. And after FIR has been registered and the crime branch is currently investigating the matter, now it has come to light that there are several of the angles which are yet supposed to be investigated, and that will take time, because of which such statement by the IIT had to be put out today. So somewhere an important highlight that was, because talking about the remarks that Sahil's father has mentioned, stating that Sahil had been facing class and caste-based remarks on him, and that was the reason why he was unhappy with his course and its due execution that was underway here at the campus. And henceforth we see that the crime branch on one end is executing, the students are demanding, the cops are investigating, the parents are demanding justice for their son, whereas the faculty as well as
1: And of course we do see the Congress, which has taken out the protest, massive security deployment outside IIT Bombay after a fourth student, Sahil, who took his own life. On your screens right now, we're showing you live visuals of what is happening outside IIT Bombay. We'll of course be tracking that as the protest takes various dimensions. But for now, we're slipping into a very short, quick break. Come right back. Lots more lined up for you here on NDTV.

0: सुबह
1: वाओ मामा क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा सबका राजा आकर
2: मसाला। A generation with questions.
3: The starry and the whole glamorous side of it.
4: As I said, like I can't empathize with it.
2: Unconventional.
5: I feel blessed. As long as the work is going on, I'm happy.
2: Unapologetic. Unafraid of change. Ready to challenge.
6: Aspirational.
2: The ideas. The issues.
7: You really are.
2: The young view.
8: Public perception.
2: NDTV Yuva. 28 September 2026. Only on the NDTV network.
9: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
10: The 20th Asian Games are officially underway in Aichi, Nagoya in Japan. For the next 16 days, this is where India's sporting dreams will play out.
11: We are in the happy hunting ground with the athlete I am sitting with right now, PV Sindhu.
12: 32 years and no medal. Can India's weightlifting contingent give us that elusive medal?
13: Gold rush on the field.
14: Go for glory, only on NDTV.
15: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
2: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स वॉइसेस रिफ्यूजिंग टू वेट देयर टर्न इंडिया इज चेजिंग गियर्स फास्टर बोल्डर More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV. When it really matters.
16: Across the country.
2: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering in
10: All right, welcome back. You're watching NDTV with me, Raisha Sehgal, shifting our focus to battleground Punjab. Punjab's drug crisis has once again triggered a political storm. A young man identified as Jagga Singh has now consumed poison during an anti-drug protest in Punjab. He claims that he was threatened after posting a video highlighting the drug problem in the state. Now, Aam Aadmi Party has blamed that man. On your screens right now is that man, Jagga Singh, and claimed that he was a drug addict and multiple cases are filed against him. Congress leader Sachin Pilot has questioned the safety of those raising their voice against drugs in Punjab. Meanwhile, BJP and Akali Dal have also slammed Aam Aadmi Party government. BJP alleged that AAP government is in league with drug peddlers. And this is the second such incident in Punjab, Sangrur. Earlier, an old man named Gulzar Singh had also died by suicide of a drug menace. And he held Punjab Minister Cheema responsible for his death.
17: ਮਨਬਈ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ
18: ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ
17: ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾ
18: ਨਮੋਈ
17: ਬਈ ਅਸਲ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ ਕੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ
18: ਐਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨੈਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਦ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦੀ ਆ
17: ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਬਈ
18: ਸੁੱਕੀ ਬੋਣੀ ਆ ਜੀ
17: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ
18: ਨੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਅਸਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੋਲੀ
17: ਫਿਰ ਇਹ ਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਆ
18: ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਬਣ ਤੇ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ
17: ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ
18: ਕਰੀ ਆ ਜੀ
17: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ
18: ਨਹੀਂ ਜੀ ਡੀਵੀਆਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਆ ਡੀਵੀਆਰ
17: ਪਰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ ਭਾਜੀ
18: ਉਹ ਸਰ ਕਰੀ ਆ ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਰਨਗੇ ਉਹਨੇ
19: ਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗ ਅਡਿਕਟ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਔਰ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ 8 FIR ਦਰਜ ਹੈ उसको किसने उकसाया इसकी जांच पुलिस कर रही है।
6: पंजाब में सरकार की धक्केशाही, बुरछागर्दी, दबाव रुकने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब में नशे नहीं रुक रहे, पंजाब में कत्लोगारत नहीं रुक रही, पंजाब में पॉलिटिकल और पुलिस प्रेशर रुक नहीं रहा। एक नौजवान ने डीसी ऑफिस के आगे आकर जग्गा सिंह के नाम से उसने जहर खा लिया है, इसलिए कि आम आदमी पार्टी के लीडर उसको घर जाकर धमका रहे थे। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या इसलिए पंजाब आपको संभाला गया था? क्या ये क्रांतिकारी हैं? क्या ये इनकलाबी रवैया है आपका?
7: भगवंत मान के इशारे पर ये देखिए तस्वीर है हमारे भाई जग्गा सिंह की। एक पंजाबी को अपमानित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, किस तरह से पीटा जाता है। कार्रवाई ड्रग डीलर्स पे नहीं, ड्रग माफिया पे नहीं, कार्रवाई हो रही है हमारे भाई बहनों पर जो शिकायत कर रहे हैं कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की वीर भूमि को आज उड़ता पंजाब, ड्रग्स वाला पंजाब बना दिया है।
8: इस तरह की पंजाब दे अंदर इसलिए गुरु दोखी भगवंत मान दा नादर शाही राज चल रहा है। गली गली, बाजार बाजार, मल्ला मल्ला, पिंड पिंड चिट्टा विक रहा है, टोफिया वांग चिट्टा विक रहा है। अगर कोई बोलता है तो उन्हें टॉर्चर किया जाता, मारिया जाता, कुटिया जाता, प्रताड़ित किया जाता, मजबूर किया जाता कि वह आत्महत्या करे। और यह जड़िया सारिया घटनावां ने यह दस दिया कि अज विसल बलोअर जिन्होंने जड़े खड़े होके ये दस रहे ने सरकार नूं कि इत्थे चिट्टा विकदा, ओह ही इसलिए सब नूं ज्यादा टारगेट ते ने।
16: What has happened with that Jogga Singh had to take this extreme step. Situation is alarming. Punjab is a border state. National security is always under threat. And all this is playing out in front of the entire media and the entire nation that we have an incompetent chief minister. A chief minister who's intoxicated, who himself is fighting an alcohol abuse issue. He has been admitted in hospital not once, a number of occasions. This entire incident, why I say this about the chief minister, and I'm sorry that I have to bring this up, but the fact of the matter is when the chief minister himself is not in the right frame of mind, can he deliver law and order in a border state? Answer is no. You have an incompetent Aam Aadmi Party government being remote controlled by a fugitive, an accused of Mr. Arvind Kejriwal or his cronies Satinder Jain and Manish Sisodia. You have a drunk chief minister. Why should the people of Punjab pay a price for their incompetence?
10: In other news, former Vice President Hemad Ansari's remarks have now triggered a political storm, with the BJP, Congress and Muslim clerics offering sharply different response. Ansari was speaking at the A.G. Noorani Memorial Lecture, where he also referred to what he described as emerging trends around cultural nationalism. Uttar Pradesh Chief Minister has now hit back strongly, questioning the remarks and stressing the responsibility attached to a constitutional office. RLD has rejected Ansari's assessment, saying that the political context today is different from the period referenced. Meanwhile, Congress says Ansari was not making the assertion independently, but citing a historical observation attributed to Nehru. Imam Ilyasi has also criticized the remarks, arguing that such statements could further heighten tensions and disturb the social atmosphere.
20: जब पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब ने एक किताब को कोट किया है जो 2019 में लिखी गई है और बकौल उनके नेहरू जी ये कह रहे हैं कि उनके लिए कम्युनिज्म उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना हिंदू राष्ट्रवाद. He has thoroughly exposed that Congress has become completely Muslim League Maoist Congress. Quote किया कि बकौल नेहरू जी कम्युनिज्म से बड़ा खतरा, यानी कम्युनिज्म को वो एक खतरा मानते थे. आप ही बोलते थे ना नेहरू का संदर्भ क्यों लाते हैं, नेहरू का संदर्भ कौन लाया है? हम नहीं लाए हैं, आपके समर्थक लाए.
21: देखिए, हामिद अंसारी को देश ने बहुत कुछ दिया है. फॉरेन सर्विस में रहे, राजदूत रहे, दो दो बार उपराष्ट्रपति हो गए, फिर भी उनको देश से शिकायत है. वो अभी भी ऐसी बातें कोट कर रहे हैं जो आजादी के वक्त कही गई थी. आज भारत के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पे देश आगे चल रहा है. एक दो नेता कुछ बयान दे देते होंगे वो अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सूत्र दिया है उससे कोई डिग नहीं सकता. वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है.
10: We'll be tracking all the stories that matter here on NDTV, but for now, slipping into a very short, quick break. Come right back.
22: Launch control, 0 to 100.
23: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
24: This car makes no sense, yet it makes every sense.
25: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
26: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not."
27: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
28: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात.
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है.
0: अरे मेरे राजा,
29: सबका राजा प्योर मसाला.
15: A generation with questions.
3: The starring and the whole glamorous side of it.
4: As I said, like I can't empathize with it.
15: Unconventional.
5: I feel blessed. As long as the work is going on, I'm happy.
15: Unapologetic. Unafraid of change. Ready to challenge.
30: Aspirational.
15: The ideas, the issues.
4: You really are.
15: The young view.
4: Public perception.
15: NDTV Yuva, 28th September 2026. Only on the NDTV network.
9: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
10: The 20th Asian Games are officially underway in Aichi, Nagoya in Japan. For the next 16 days, this is where India's sporting dreams will play out.
11: We are in the happy hunting ground with the athlete I am sitting with right now, PV Sindhu.
12: 32 years and no medal. Can India's weightlifting contingent give us that elusive medal?
13: Gold Rush on the field.
14: Go for glory, only on NDTV.
15: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज.
31: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
32: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
33: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
2: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Sidramaya. NDTV stands.

0: Hello and welcome. Thanks very much for joining us here on NDTV. I'm Padmaja Joshi. 25 years of the Prime Minister in public life and in People's Sansad, we do what we always do. We put the issues of the people, for the people, in the People's Sansad. And joining us today is Union Minister for Parliamentary Affairs and Minority Affairs, Shri Kiran Rijiju, here with us in People's Sansad, in front of a young bunch of fine young minds. Huge round of applause. So thank you so much. पहले सर ये बताइए संसद से पीपल संसद का सफर अब लोगों के बीच में और यहाँ पर मैं स्पीकर हूँ
1: वैसे तो संसद जो पार्लियामेंट है वहाँ से ज़्यादा अच्छा युवाओं का संसद है यहाँ एनर्जी मिलता है वहाँ थोड़ा टेंशन पैदा होता है यहाँ टेंशन फ्री है बच्चों के साथ युवाओं के साथ
0: ऐसा क्यों है क्यों वहाँ पर आपको संसद के अंदर नाराज फूफा मिलते हैं
1: ऐसा है अब जब बार बार आप फेल हो जाते हैं तो आप थोड़ा सा नाराज हो ही जाते हैं तो ये विपक्ष का गलती नहीं है माहौल ऐसा है इसलिए मैं यहाँ नकारात्मक मतलब निगेटिव कोई बात नहीं करना चाहता हूँ जिंदगी में हारो जीतो खुश रहना चाहिए नाराज फूफा बन के रहने से कुछ नहीं मिलेगा
0: क्योंकि आज हम पीपल संसद में है देयर इज अ क्रिटिसिज्म यू नो बिकॉज यू अर्लियर इन फैक्ट यू डिफाइंड व्हाट अ दिमागी नक्सल इज अब लोग कहते हैं कि जब भी सवाल पूछे जाने लगते हैं ना जब भी कोई युवा खड़ा होता है जब भी विपक्ष खड़ा होता है कभी आप कह देते हैं दिमागी नक्सल फिर आप कह देते हैं नाराज फूफा क्यों
1: देखिए इसमें तो पॉलिटिक्स है लोग अपना नैरेटिव सेट करते हैं हम उसमें कुछ किसी को सलाह नहीं दे सकते हैं लेकिन आप अपना बात हम कह सकते हैं अब किसी को नक्सल क्यों बोलते हैं नक्सल का जो फाउंडेशन है उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ वो भारत का संविधान का खिलाफ अलग से व्यवस्था खड़ा करने का नक्सल मूवमेंट हुआ उनका अपना कोर्ट होते हैं आप देखे हैं गाँव वालों को पुलिस आर्मी वालों को पकड़ के ले के जाके वहाँ अपना कोर्ट में हियरिंग करके वही गोली मारते हैं वो भारत का संविधान को मानते नहीं हैं तो वो जो नक्सल या जो माओवाद जो विचारधारा रखने वाला भारत का संविधान को नहीं मानते हैं दूसरा उससे विकृत होकर के आगे निकल करके जम्मू कश्मीर को अलग करना है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अलग करना है उसमें आज़ादी का नाम से आज़ादी का स्लोगन लगाते हैं और कहते हैं कि सबको अपने अपने तरीके से भारत से अलग रहने का आज़ादी होना चाहिए तो ये जो है सेपरेटिज्म का माइंडसेट है ये दूसरे नंबर मैंने बताया तीसरा है जो भारत का ग्रोथ स्टोरी भारत जब तेज़ी से आगे बढ़ता है तो उसको रोकने के लिए तरह तरह का हथकंडे अपनाते हैं कोई हमारा इंडस्ट्रियल यूनिट है तो उसको बंद कराने के लिए एक इन्वायरमेंट के नाम में कहीं एजिटेशन चलवाना और जो अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है हाईवे बन रहा है उसको रोकने के लिए तो इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है उसको रोकने के लिए वो ऑब्स्टेकल पैदा करते हैं तो इसलिए जो इंडिया का सपना का जो तोड़ने के लिए काम करता है तो उसको तो हम नक्सल माइंडसेट ही बताएंगे तो दिमागी नक्सल है तो इसलिए हमने क्लियरली बताया हमने ओपोजिशन को दिमागी नक्सल कभी नहीं कहा लेकिन अगर आप ओपोजिशन का एमपी है और आप ये जो कैटेगरी मैंने बताया उसमें आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं
0: पर फिर आप डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन नाराज फूफा है और कौन दिमागी नक्सल
1: नाराज फूफा तो प्रधानमंत्री जी ने कहा उसमें आप समझना होगा मैं बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्या है कि 2014 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम से लोगों का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं पीपल आर हैविंग फुल कॉन्फिडेंस इन द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर तो जो बार बार मोदी जी को सपोर्ट करते हैं बीजेपी एनडीए को बनाते हैं तो वो दूसरे पार्टी हार रहे हैं तो उनका हारना हम कैसे जिम्मेदार हैं वो तो वोट नहीं दिया लोग तो वो इलेक्शन हार रहे हैं तो इलेक्शन हार रहा है तो हमेशा नाराज हो करके गाली करना पार्लियामेंट में हंगामा पैदा करना फिर देश का खिलाफ बात करना तो ये नाराज जो होके बैठा हुआ है तो उसको एक डिस्क्रिप्शन दिया है, भारतीय परंपरा में नाराज फूफा कौन होता है वो तो आप भी अच्छा तरह से जानती है।
0: ये बताइए, नाराज तो कुछ लोग बड़े थे आपके स्विमिंग से भी, दे वर चैलेंजिंग योर स्विमिंग टेक्निक। फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इट इज दैट यू नो रियली सेट द कैट अमंग द पिजन्स व्हेन यू पुट अ पिक्चर ऑफ योरसेल्फ स्विमिंग, अ वीडियो ऑफ योरसेल्फ स्विमिंग। पहले आप ये बताइए, हैव वी सेटल्ड दिस डिबेट, हु इज अ बेटर स्विमर, इज इट यू और इज दिस मिस्टर राहुल गांधी हु इज अ बेटर स्विमर, हैज दिस क्वेश्चन बीन सेटल्ड?
1: ये बहुत खतरनाक नदी में मैंने स्विम किया है, यहाँ समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी मॉनसून का समय का इफेक्ट है, अभी भी पानी देखिए आप ब्लू कलर नहीं है, थोड़ा गंदा पानी, मतलब फ्लडेड है, पानी काफ़ी बड़ा है और कम से कम 25 फीट डेप्थ है, तो यहाँ स्विमिंग करना कोई आसानी नहीं है। मैं तो गांव में था, सोशल मीडिया में तो डलवा दिया, दो दिन बाद मैं जब दिल्ली पहुंचा तो पता चला ये वीडियो तो वायरल हो चुके हैं, मुझे तो मालूम नहीं, बड़ा पॉलिटिक्स हो गया। लेकिन क्या है, हम जब यहाँ स्विमिंग करने गए, स्विमिंग मतलब मैं वहाँ काम के लिए गए थे, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा एक घंटे के लिए हम स्विमिंग करते हैं, बचपन में हम यही स्विम करते थे। तो एक दिन पहले किसी का मौत हो गई, पानी में डूब के मर गए, तो मैंने स्विमिंग करते समय एक कैप्शन लगाया वार्निंग कि अगर आपको स्विमिंग नहीं आता है तो कृपया आप इस तरह के नदी में स्विम ना करें, ये मैंने लिख करके वीडियो डाला, नहीं तो मैं कूद गया बाकी भी सब कूद जाएंगे तो इससे गलत हो सकता है, तो मैंने वार्निंग दे करके कूदा नदी में। तो मैं तो डाल दिया वो तो वार्निंग, मैं तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए डाला है, कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लग गया, वो कह रहे कि किरण रिजिजू जो स्विमिंग कर रहे हैं वो तो राहुल गांधी का नकल कर रहे हैं बोलते हैं। अरे राहुल गांधी जी जब नदी देखा नहीं है, मैं तब खिलाड़ी बन चुके थे, मैं ये नदी जो है हमारा गांव के, ये तो बचपन से हम क्लास 5-6 में ही मैंने इस नदी को पार किया, मैं स्विमिंग में बहुत उस्ताद हूँ। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, मुझे चैलेंज मत करना, और मैं ट्रेनिंग लेकर के स्विमिंग नहीं करता हूँ। तो कांग्रेस ने ट्रोलिंग शुरू कर दिया, दूसरा कहा कि किरण रिजिजू को स्विमिंग करने के लिए टेक्निक आता नहीं है, टेक्निक ठीक नहीं है, स्विमिंग करना नहीं आता है,
0: क्यों? मैंने बोला बेली फ्लॉप कर रहे हैं,
1: अरे वो गंदे नदी में सर ऐसे डाइव मारेंगे, पत्थर में लग गया सर फूट गया तो क्या करेंगे, ये जो हेड डाउन जो जंप करते हैं वो क्लीन स्विमिंग पूल या क्लीन नदी में करते हैं, गंदे नदी में ऐसे सर नहीं दबाते, ये लोग मालूम नहीं है। और तीसरा जो है, मैंने ये कहा कि हम तो ट्रेनिंग लिया नहीं है, राहुल गांधी जी तो वो सिल्वर स्पून में पैदा हुए हैं तो उसको तो हर चीज़ का ट्रेनिंग मिल जाते हैं, हम लोग तो कहाँ ट्रेनिंग लेंगे, हम तो जंगल पहाड़ में पैदा हुए हैं, हम तो ओरिजिनल आदमी हैं, तो हमारे लिए ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है। मैंने थोड़ा आपत्ति इसलिए किया कि कांग्रेस का एक प्रवक्ता ने कहा कि मैंने किरण रिजिजू ने हाफ नेकेड स्विमिंग किया है बोलता है, तो मैंने कहा कि स्विमिंग क्या सूट बूट में स्विमिंग करते हैं क्या, आप सोचिए उनके सोच। तो बाद में मैंने कहा कि चलो ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी है काफी नाराज है, तो मेरे स्विमिंग को भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया, अदरवाइज ये तो स्पोर्ट ही है जिंदगी में इतना काय को
0: टेंशन। बट नाउ दैट इज गोइंग टू स्टिक टू यू बिकॉज़ यू हैड सेड ये हमारा, मैं हूं यहां का सबसे बड़ा खिलाड़ी।
1: मैं तो मेरा डोमेन है वो, मैं जहां एक्सपर्ट हूं वहां चैलेंज नहीं करना चाहिए, ये जंगल पहाड़ नदी खतरनाक से खेलना, एडवेंचरस लाइफस्टाइल, ये तो मेरा जिंदगी का शैली है, ये मेरा स्टाइल कैरेक्टर है, यहां कोई मुझे चैलेंज नहीं कर सकते हैं।
0: खतरों के खिलाड़ी। Anyone who wants to ask questions, I'm saying right at the outset, let's get it started because I want to get in the people's Sansad. Kisi ka mic off nahi kiya jata hai. Boliye bhai, khade hoke. Yes, you please.
2: Good afternoon, honorable sir. Sir, my name is Zornas. I'm a computer science engineering student at MIT University. Sir, coming from Manipur, my question is, sir, as a representative from Arunachal Pradesh, how do you view the role of youth of India's Northeast in terms of contributing to and benefiting from the Viksit Bharat vision, particularly in terms of infrastructure and connectivity development in Northeast?
1: This is a very good question. Most of the students who are below the age of 25 years, they may not realize what was the situation before 2014. It's been 12 years plus.

0: In the journey of Viksit Bharat, the strength of Northeast, the youth, can play a very critical role. Number one, we have established critical infrastructure in Northeast itself. Every Northeastern districts and a border point is now connected with double lane national highways. Most of the border areas are now connected, which used to be walking, you know, for days. Like my village used to be 2 days walk. When I was sitting member of parliament during Congress regime, so when I became member of parliament, I got the road sanctioned, and now today I can reach same day from Delhi to my village. Because we have got airport, then the highway, road to my village. So the hard infrastructure is already laid. Now, on top of that, the soft infrastructure, the education, the health, different opportunities to be created are being laid. All green shoots are coming up. Imagine semiconductor facility coming up in Northeast. These were unthinkable few years back. So now, once we finish with the hard infrastructure laid with the soft, we will have greater integration in the economic growth, hospitality industries, different sectors, productivity will enhance, it will become a manufacturing hub, people will come, go, connectivity will enhance, thereby creating jobs, creating opportunities for the youth, and then you generate the wealth for the nation. That is how the youth are engaged and you become integral part of the growth story of India.
1: But sir, I want to ask you one more thing. You know, because when he was talking about the Northeast, the Prime Minister used a phrase, Dil aur Delhi ki Duri. So, you have reduced the distance from Delhi, you have made greenfield airports, you have made highway. Ek Dil ki Duri bar bar. You know, every now and then you have such episodes, what happened in Delhi, a musician, you know, in an altercation, he was beaten to death. There was harassment, racial profiling. Kya Dil ki Duri kam hui hai? Aur agar nahi hui hai, to kyun nahi hui hai?
0: Do baate hai aapko. समझना होगा. आई हैव टू स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश.
1: बोथ, व्हाटएवर यू कम.
0: सो इसमें दो बातें हैं वो आपको समझना होगा. नॉर्थ ईस्ट के लोग थोड़े इमोशनल होते हैं, तो भावक होते हैं, इमोशनल. तो अगर आपको ध्यान नहीं दिया दिल्ली से, तो वो मायूस हो जाते हैं. आई वॉज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स फॉर 5 years, फ्रॉम 2014 to 2019. Before me, the groups of Northeastern region who are involved in militancy, how did they go into jungle? मान लो एक छोटा community है North East में, 5,000 भी हो सकता है, 50,000, 1,00,000 हो सकते हैं. One community, because North East has multiple communities and tribes. तो each community has its own unique problems. सुनने वाला कोई नहीं था दिल्ली में. मान लो 50,000 का कोई कम्युनिटी है, उनके प्रतिनिधि दिल्ली में आए, दे आर वेटिंग इन दिल्ली फॉर वीक्स एंड वीक्स. नोबडी इन द होम मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग टाइम. एक जॉइंट सेक्रेटरी भी सोचते हैं कि यार कहाँ ये छोटा सा कम्युनिटी आया है, मेरा पास समय नहीं है, मैं तो भारत सरकार का सेक्रेटरी हूँ, ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, टाइम नहीं देते हैं. वो इंतज़ार करके करके मायूस होके एक महीने के बाद दिल्ली में कोई सुनने वाला नहीं है, वापस जाते हैं और इमोशनली गन पकड़ लेता है, बम फेंकता है, सोचता है कि गन से बम से शायद सुन लेंगे. तो ऐसा करके करके नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा मिलिटेंसी आ गए कि नॉर्थ ईस्ट का ग्रोथ पे असर पड़ने लग गया. पीस विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, तो शांति था ही नहीं. तो ऐसा करते करते कोई सुनने वाला नहीं था, तो हम लोगों ने सुनना शुरू किया. मेरे पास तो एक आदमी भी आएगा तो भी मैं मिलता था. एक मैं आपको रिकॉर्ड के लिए बता दूं, एक कम्युनिटी के कुछ मिलिटेंट ग्रुप बंदूक लेकर के जंगल में ट्रेनिंग लेकर के चले गए. वो बाद में टॉक चला, हमने सीज फायर किया, मेरे को मिला और वो सरेंडर कर लिया. पिछले 12 साल में लगभग 10,000 से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के लोग जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व थे, बंदूक के साथ सरेंडर कर चुके हैं. तो ये मामूली अचीवमेंट नहीं है. मणिपुर में मेते कुकी और नागा कुकी में जो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट एथनिक क्लैश जो हुए हैं, उससे थोड़ा सा धक्का लगा है. मुझे तकलीफ भी हो रहे हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होकर के कई कारण है, कारण यहाँ जिक्र करने का अभी समय नहीं है. उसको छोड़ के, मणिपुर को छोड़

0: के बाकी पूरा नॉर्थ ईस्ट में अभी मिलिटेंट फ्री हो गया। आप सोच के देखिए, जो कदम कदम हर 10 किलोमीटर में बंद कोल, वहां बंदूक गोली का आवाज सुनते थे, आज शांति है। तो ये जो इमोशनली जो पीएम ने कनेक्ट किया, वो सिर्फ हमने पहले बताया रोड, बिजली, पानी, एयरपोर्ट, सब रेलवे बनाया, वो है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। दिल से दिल जोड़ना भी उतना ही जरूरी है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा दी अस्थ लक्ष्मी, दी 8 states बींग डिस्क्राइब्ड एज अस्थ लक्ष्मी, वी मस्ट रीच आउट टू देम। व्हाई शुड दे ओनली कम टू दिल्ली? एवरी मंथ 15 मिनिस्टर्स, 5 कैबिनेट मिनिस्टर एंड 10 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आर बाउंड टू गो टू नॉर्थ ईस्ट। इट्स ए मस्ट। प्राइम मिनिस्टर ने ये एक तरीके से फरमान जारी किया है, सारा मंत्री नॉर्थ ईस्ट जाना है, और जाके आना नहीं, सोना है वहां दूर दराज में डिस्ट्रिक्ट में जाके सोना है। तो ये जो दिल से दिल जोड़ने का काम किया है, उससे बहुत करीब हो गया। सो हमने
1: जो
0: फिजिकल जोड़ा और दिल भी जोड़ा।
1: जो बच्चे वहां से यहाँ दिल्ली में आते हैं, जो यहाँ ऑडियंस में बैठे हुए हैं, उनको आप क्या कहेंगे?
0: इनके लिए मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो इतने साल 50 साल तक हम पिछड़ा बहुत बैकवर्ड रहे हैं, पिछले 12 सालों में जो हमने गति पकड़ा है, बी एश्योर्ड, बी कॉन्फिडेंट, आई एम टेलिंग यू एज ए एल्डर एंड एज ए कैबिनेट मिनिस्टर, एज ए सीनियर मिनिस्टर फ्रॉम कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, आई मस्ट टेल यू द डेस्टिनी इज गोइंग टू बी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। आवर नॉर्थ ईस्ट यूथ विल नॉट रिक्वायर टू स्ट्रगल फॉर बेसिक थिंग्स। वी विल एंश्योर दैट एवरी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पार्ट, एवरी स्टेट इज एज वाइब्रेंट एज any progressive state in the country.
1: You know, you spoke of ministers going to the northeast. I want to actually show one video. आपने कहा मैं सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ, लेकिन एक और खिलाड़ी हैं जिन्होंने
0: खिलाड़ी
1: दिखाते हैं आपको उस खिलाड़ी का वीडियो। अब मेरे को लगता नहीं है कि आप उनको उनसे ज्यादा बड़ा खिलाड़ी, अपने क्या लग रहा है आपको, कौन है ज्यादा बड़ा खिलाड़ी अब?
0: मेरा बॉस है।
1: That's the Prime Minister in Sikkim. और गोल भी मार दिया, बताइए कौन है बड़ा खिलाड़ी?
0: देखिए प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो लगभग सब जान ही चुके हैं। आई हैव नेवर सीन ए पर्सन so disciplined in life, so focused and fit as Modi ji. When I was Minister for Youth Affairs and Sports, Prime Minister told me, Kiran ji, jo Khelo India chal raha hai, we started Khelo India, jo Khelo India chal raha hai, wo khilariyon ke liye hai. Ab pure Indians ko fit banana hai. Every Indian must be fit. If you are fit, you can make your country fit and fine. तो फिर दैट फिट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। आई थॉट अबाउट कि प्राइम मिनिस्टर वांट्स द फिटनेस कल्चर टू प्रिवेल ऑल अराउंड, सो द बेस्ट थिंग वुड बी फिट इंडिया मूवमेंट वेयर वी ब्रिंग अलोंग एवरीबॉडी। और आप देखो अभी फिटनेस के लिए जागरूकता आए हैं, एवरीवेयर पीपल आर नाउ फिटनेस फ्रीक। कोई साइकिल से चल रहे हैं, कोई मैराथन कर रहे हैं, कोई क्लाइंबिंग कर रहे हैं, कोई जंप मार रहा है, कोई वॉकिंग कर रहा है। यू कैन डू एनीथिंग, but life has to be active. No matter how brilliant you are mentally, if you are not physically fit, then you will put yourself into trouble.
1: You know, I saw a very nice video of yours jab I think aap Vajpayee ji ke sath baithe hue the aur unke sath jo aapka interaction tha, aisa hi koi interaction aapka pehla koi pradhanmantri ke sath jo aapko yaad ho, you know, which you really take away jab aapko kuch ek baat wahan par, when you know, so kehte hai ki ek baat it stayed with you.
0: Nahi, ek to अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मैं तो बहुत यंग छोटा था, बहुत मैच्योर भी नहीं था, लेकिन मैंने इलेक्शन लड़ा और हार गए। बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट में उस समय कोई जानते भी नहीं थे और कोई वोट देते भी नहीं थे। मैं तो काफ़ी करीबी से बीजेपी को देखा है, नेशनलिस्ट पार्टी है, ये पार्टी सरकार में आएगा तो बॉर्डर एरिया हमारा जो दूर दराज के लोगों को ध्यान रखेगा, इंडिया फर्स्ट, थोड़ा जोश होगा। कांग्रेस से हम कोई उम्मीद नहीं था तो हमने बीजेपी ज्वाइन किया, लेकिन इलेक्शन हार गए। इलेक्शन हारने के बाद हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास गए। मैं बहुत दुखी भी था, अटल जी मैं तो चुनाव हार गया है। तो हमारे साथ में राम नाईक जी बैठे हुए थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे और बाद में यूपी का गवर्नर बने। तो मैंने जैसे ही कहा अटल जी मैं तो चुनाव हार गए हूँ, क्या करूँ, बीच में तुरंत राम नाईक जी ने बोला, अरे किरण तुम टेंशन मत लो, अटल जी भी पहले चुनाव हारे थे। तो फिर अटल जी ने कहा, अरे राम नाईक जी का चले तो सबको पहले चुनाव हारना चाहिए क्या। तो फिर मुझे कमीशन में लाया, काम करने का मौका दिया। मैं पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी था लेकिन मैं कमीशन में 5 ईयर्स काम किया। लेकिन 2004 में मैं पूरा तैयारी से काम किया, लोगों ने फिर भारी मतदान किया, मुझे वेरी यंग एज में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। और जिस तरीके से मैंने काम किया, आप शायद उस समय थी, मुझे ख्याल नहीं आ रहा है, 2008 में पूरा मीडिया के एक कॉन्क्लेव हुआ, मीडिया के आपस में एक वोटिंग हुआ, हु इज द बेस्ट यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मैं खुशी से बताना चाहता हूँ कि मुझे दिया गया है बेस्ट यंग पार्लियामेंट्रियन। आई वॉज वेरी एक्टिव। मैं इसलिए एक्टिव भी था, एक तो जरूरी भी था और मैं इसको एक ड्यूटी के हिसाब से मानता हूँ। हमारा प्रदेश अरुणाचल प्रदेश जो है बहुत बड़ा प्रदेश है, पॉपुलेशन कम है, तो 2 MP है। मैं सोचता था उत्तर प्रदेश का 80 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बिहार का 40 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, महाराष्ट्र का 48 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एक साथ आने से तो हिल जाते हैं। हमारे तो 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, मैं नहीं बोलूंगा तो और कौन बोलेंगे। तो मैंने तय किया पहला ही दिन कि मैं भले अकेला हूं लेकिन मैं 20 MP का बराबर बोलेगा मैं।
1: क्या बात।
0: तो मैंने काफी मेहनत किया।
1: Yes, this young lady here.
2: What legislative or policy reforms do you think necessary to further ease access to entrepreneurship, justice, or public service opportunities for young citizens?
0: Excellent question. There are 3 parts in Ministry of Law and Justice. So when I was law minister, I had focus in 3 sectors. One is the Department of Law, which means all things we do must be legal. Every action of the government must be legally tenable. So I focus on the legality of the entire conduct of the government. Second is the legislative branch, that is called Department of Legislative. And that is where you draft the laws. How you draft the law is very technical. You must be correct in language, framing of the languages, using of the appropriate words, comma, everything. So that is called department in the legislative branch. The third one is the Justice Department, which deals with the court, appointment of the judges, working of the judicial system, the High Court, Supreme Court. So that is dealing with the justice fraternity. When you talk about rule of law, you must ensure that the justice must be delivered at the doorstep of the citizens. My priority as a Minister of Law and Justice that time was to bridge the gap between justice and common man. If a common man struggles to obtain justice, that is most unfortunate. And in India, more than 5 crore cases are pending in different courts. Some of the cases are as old as 20, 30 years waiting for the justice to come. Many people have left this world. Justice never came. So I thought as a Minister of Law and Justice, I must ensure that judiciary must take the lead role. Why judges should only decide on important critical cases? There are so many cases which are not in the glaring media image, but they are extremely important for the person to get the basic justice. So to do that strengthening of the infrastructure like good courts, mobile justice delivery system, the Lokayukt, the Lok Adalats, all other peripheral things which are required to strengthen the justice delivery system. And then also I had a very close interaction with the judges to ensure that a judge should not struggle in delivering justice. Appointment of the judges, giving them facilities, and for the first time, 7 crore amount was passed by the cabinet to strengthen the infrastructure in the judiciary, from the lower courts right up to Supreme Court. We did so much. So I feel that being a big country, most populous nation in the world, we do have challenges, but our government is doing the best, and the amount of money allocated and the infrastructure built from 1947 to 2014. And since Modi ji became Prime Minister 2014 to now, we have built and allocated more than double of what was done in last 68 years. We have done much more.
1: Because you know, sir, jab hota ye hai ki when the wheels of justice move slowly, people start losing patience. Abhi dekhiye kya hua. Log aisa kehne lage hain ki ab faisla sansad mein nahi sadak pe hoga. Kya kahenge? Kyunki log kehte hain bhai ab bahut ho gaya. Ab hum janta faisla karegi. Sadak pe faisla hoga.
0: Anarchist jo hote hain wo ye sab sochte hain ki bhale hum chunav haar jaye lekin main sadak se tay karunga ki kanun kya hona chahiye desh ka. To democracy ka kya matlab hai? Basic tenets of democracy is every citizen rule themselves through elected representatives. The electoral college is defined by the parliament. Everybody votes. So in a way, the citizen govern themselves through their elected government and elected representatives.
1: But kya youth bhi ye believe karta hai? Kyunki jo youth jantar mantar par utarta hai, wo kehta hai, aap hamari baat nahi sun rahe ho, hum apni baat khud karein.
0: Aisa sab youth nahi hai, kuch misguided youth hote hai, to usko bhi seedha karna hoga na, usko bhi samjhana hoga. Seedha matlab, main danda maar ke nahi bol raha hu, samjhana hai pyar se. Kya hai ki, ye unfortunate bhi hai, I am giving a very serious note. There are many civilizations in the world, Chinese civilization, Japanese, Indian civilizations, Europe mein bhi hai. To kabhi China mein aap suna hai kya wo Zenzi ya Western concept hote hai? India mein hi kyun hai? Kyunki basically our knowledge is English fit. British common law, English common law, American influence kafi hota hai. तो ये जो सोशल मीडिया में जो लोग ज़्यादा रहते हैं तो उनको एक तरीके से ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, जेंजी हमारा कंसेप्ट है नहीं. हम तो युवा बोलते हैं, यूथ, एडल्ट एंड सीनियर्स. तो ये जेंजी कहाँ से घुसा दिया बीच में, पूरा डेफिनेशन के साथ, इस साल से इस साल पैदा होने वाला को अल्फा जेंजी. तो ये कंसेप्ट पैदा करके रेस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा आपका राइट को फोकस कर दिया है. जबकि बैलेंस होना चाहिए. जब जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिका में कहा था 1960 का प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कि आस्क नॉट व्हाट अमेरिका कैन गिव यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर अमेरिका. तभी तो यू सुपरस्टार बना, सुपर पावर बना है वो देश. हम जितना मांगते हैं कि मेरे लिए क्या कर रहा है सरकार या देश, ये भी तो पूछो कि मैं देश के लिए क्या कर रहा हूँ. वो दोनों होता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में fundamental rights is extremely important, which cannot be compromised. But fundamental duty is also equally important.
1: But they are saying that even to ask these questions is our duty. सरकार हमारी सुन नहीं रही है. हम सुन नहीं रही है, अब हम सड़क पे सुनेंगे.
0: ऐसा हो ही नहीं सकता है. तो हम बच्चे हैं, समझाएंगे अच्छा से. हम अपने लोग हैं. देखो misguided हो जाते हैं बच्चे जो है आजकल, माँ-बाप से ज़्यादा social media से ज्ञान लेता होगा. लेकिन मैं कहता हूँ कि टीचर और माँ बाप से ज्ञान लेना कभी नहीं छोड़ना चाहिए. क्योंकि हम लोग मैं गांव से पैदल जाके डिस्ट्रिक्ट में जा करके 2 दिन के बाद एक किताब मिलता था लाइब्रेरी से, पढ़ के फिर 3 दिन के बाद वापस जाके देना. तो एक्वायर नॉलेज वॉज सो डिफिकल्ट. हियर इन द वेरी इंस्टेंट केसेस यू आर एक्वायरिंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन विच कैन बी मिस इन्फॉर्मेशन. तो इसलिए यूथ ऑफ इंडिया मस्ट एंश्योर दैट instability create mat karo. Rule of law should follow the norms that everybody must be governed by the spirit of the constitution of India. उसके अंदर कुछ भी बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपका राइट है, बस देश का खिलाफ मत बोलो। हमको जितना गाली देना दे दो, मगर देश का खिलाफ गाली मत दो, बस।
2: The gentleman here.
3: सर, हम आपको रेगुलरली वॉच करते हैं संसद टीवी। मेरा क्वेश्चन है सर, डिलिमिटेशन जो अभी चल रहा है लोकसभा में, बिल पास नहीं हो पाया था, पर सर जैसे बिहार जैसे स्टेट है जहाँ पे 40 लोकसभा सीट है, और सर सेम अपन कंपेयर करते हैं तमिलनाडु की, वो भी अभी 40 है, पर सर जब डिलिमिटेशन होगा तो आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर तो 850 ऑलमोस्ट सीट होने वाली, तो सर जो बिहार को जो फ़ायदा होगा लोकसभा सीट बढ़ने से, सर सेम फ़ायदा सदर्न स्टेट्स को नहीं होगा? तो नहीं सर, उतना नहीं होगा। तो सर गवर्नमेंट ऐसे क्या मेजर्स ले रही है जैसे कि सदर्न स्टेट डिस्प्रोपोर्शनली अफेक्ट ना हो, जिन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल रखे हैं जब से हम आजाद हुए पिछले 70 साल।
1: आप कौन से स्टेट से हो?
3: मध्य प्रदेश।
1: नाइस, देखिए वो ठीक मध्य में बैठे हैं और दोनों का ख्याल है, मध्य प्रदेश
0: बात कर रहे हैं आप।
3: यस सर, तो मेरा सवाल ये है कि मतलब जो भी स्टेप सरकार ले वो सदर्न स्टेट्स को डिस्प्रोपोर्शनल
0: है। आपको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, आपका इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, और अमिति यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला इन्फॉर्मेशन सही रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप आगे देश को भी समझाना है, समाज को भी। डिलिमिटेशन जो हम लोगों ने प्रपोज किया वो वुमेन रिजर्वेशन से लिंक्ड है।
3: यस,
0: हमने ये कहा कि अभी 543 लोकसभा सीट्स है वर्तमान में लोकसभा में, उसको हम 50% बढ़ाएंगे। जब 50% बढ़ाएंगे, इसका कैसे आप अर्थ निकल सकता है कि तमिलनाडु को कम होगा बिहार को ज़्यादा होगा? बिहार का 40 सीट से तमिलनाडु का 39 है, 40 नहीं है, तमिलनाडु का 39 है। और जब 50% बढ़ेगा तो 40 वाला 60 होगा, जाहिर सी बात है, सिंपल कैलकुलेशन। यूपी का अभी 80 सीट है तो 120 हो जाएगा, जिसका 2 सीट है वो 3 हो जाएगा। इट्स अ सिंपल एरिथमेटिक। पॉलिटिकली इसको डिरेल करने के लिए कुछ लोगों ने गलत तरीके से दुष्ट प्रचार किया है, मगर बाद में क्लियर हो गया। अभी तो लगभग मैक्सिमम जो पार्टी उसमें अगेंस्ट में वोट किए थे सब बोला कि नहीं नहीं, उसमें कांग्रेस पार्टी ने बहुत झूठ फैलाया, अब क्लियर हो गया, ज़्यादातर लोग अब समर्थन करेंगे अगले बार बिल लाने से। तो इसलिए किसी भी स्टेट को हम नुकसान नहीं पहुँचाना है और हम नहीं पहुँचाएंगे। फंडामेंटल बात क्या है? दी इलेक्टोरल सिस्टम इज ऑल अबाउट प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, एक आदमी एक वोट, यही है ना फंडा डेमोक्रेसी में, कि आप 10 करोड़ का मालिक है तो आपका 2 वोट तो नहीं हो जाएगा। बिलियनियर भी 1 वोट, आम आदमी भी 1 वोट। तो इसमें आप सोचिए, किसी किसी स्टेट में एक MLA कॉन्स्टिट्यूंसी में 400,000 वोटर है, किसी किसी जैसे लक्षद्वीप में एक MP है 53,000 वोट्स है। तो ये ज्योग्राफी के लिए भी फर्क होता है। तीसरा, एक पद्मजा मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, इंडिया सबसे चैलेंजिंग MPs के लिए मैं बोल रहा हूँ, ब्रिटेन में 70,000 वोटर में एक MP है, और ब्रिटेन का पॉपुलेशन इज 65 मिलियन, एंड ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन ब्रिटेन रिप्रेजेंट 70,000 पीपल। इन इंडिया ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट 2.5 मिलियन पीपल। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट 12,000 पीपल, 13,000 पीपल। हियर वी रिप्रेजेंट 2.25 लाख। तो इंडिया में वैसे हम पॉपुलेशन UK से 50 गुना ज्यादा, उनका MPA 620, हमारे MPA 543, फिर भी बोलता है हमारे MP कम ज़्यादा है, क्यों बढ़ाना है? ये देखिए एक बेसिक, हम ये नहीं कह रहे हैं ना कि MP 543 से हम 10,000 बनाने जा रहे हैं, मुश्किल से 816 या 820 के आसपास जाएंगे। वो तो बनता है, वी आर द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन द अर्थ, इतना तो बनता
1: सर
0: है।
1: हाल फिलहाल में होने वाला है ये, क्योंकि बड़ी सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज है कि अभी प्रोरोग नहीं किया गया है तो अभी ले आएंगे, अभी ले आएंगे, पता नहीं कब रिजिजू जी हमें बिना बताए ये बिल चुपके से ले आएंगे।
0: नहीं, वो अभी हम आपको बोलेंगे तो पूरा हंगामा हो जाएगा, आज मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन
1: संसद में ही तो हंगामा होता है।
0: नहीं, प्रोरोग तो इसलिए नहीं किया कि कभी कभी पहले भी हुए, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। हम जब पार्लियामेंट खत्म करते हैं तो साइनेडाई करते हैं फॉर एडजॉर्नमेंट, अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, लेकिन अभी हम उसको प्रोरोग नहीं किया तो ये कोई पहले बार नहीं है, जब चाहे पार्लियामेंट बुला सकते हैं।
1: अभी बुलाएंगे हाल फिलहाल में?
0: वो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बुलाने का प्रावधान है।
1: मतलब ऐसा तो नहीं है कि नंबर का वेट हो रहा है?
0: नहीं नहीं, मैं इतना दीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि रूल के बात है तो बुलाने का प्रावधान है।
1: सर ये बताइए कि यू नो व्हेनेवर वी हैव एनालाइज्ड द नंबर्स एंड नाउ सडनली एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट दिस जेन जी वोट, बट आई रिमेंबर MY वाज समथिंग दैट वी ट्रैक्ड इन द इलेक्शंस थ्रू आउट एंड इवन इन द 2014 इलेक्शंस आई रिमेंबर पोस्टपोन एनालिसिस फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ यूथ स्पेशली स्किल्ड एंड एजुकेटेड यूथ वॉज वोटिंग फॉर द बीजेपी। वाई इज दैट? What do you think are the factors that work there, and has that changed on the ground now after all these protests and Jantar Mantar uprising?
0: See, the aspiration of the youth has increased tremendously. Social media started trickling down around 2008, 9, 10 in Facebook, and slowly then Twitter came, then Instagram and all. When we came to power, when Modi ji became Prime Minister, the social media started at large scale. So the aspiration of the youth have risen. So the youth of that time, which could not gain enough of opportunity for themselves, they thought we need a new leader. India could not become a developed nation in last 70 years. This is the truth, right? 1947, we have been proud of the freedom. We have not been an emir. What will happen to you? India is not a rich country. India is not a developed country. This is the truth. कौन करेंगे इंडिया को अमीर ताकतवर देश, कौन बनाएंगे? हमारे पास कोई लक्ष्य भी तो नहीं था ना। देयर वाज नो सेट टारगेट, व्हेन विल इंडिया बिकम रिच एंड पावरफुल एंड डेवलप्ड। तो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग, स्पेशली द यूथ, कि भाई आपका जिंदगी तो चले गए हैं पुराने लोग, आप इंडिया तो अमीर राष्ट्र नहीं बन पाया, हमारा जीवन काल में इंडिया मस्ट बी रिच पावरफुल एंड प्रॉस्पेरस। ये तो ठान लिया, तो सबने देखा कि ये मोदी जी के लीडरशिप में ही हो पाएगा।
1: आपको लगता है
0: दैट इज हाउ द यूथ ऑफ इंडिया इन अ मैसिव स्केल वोटेड फॉर मोदी जी एंड ही क्रिएटेड रिकॉर्ड एंड देन आफ्टर 2014 द टारगेट वाज सेट 2047 इंडिया विल बी डेवलप्ड नेशन एंड देन सो मेनी स्टेप्स आर टेकन ऑन द वे वन बाय वन आफ्टर अनदर। So that is how I feel the youth are feeling, that if they have to realize their dreams, that they need a visionary statesman, a great leader like Modi ji to continue to lead us. And that is true today. India is the fastest growing economy in the world.
1: Do you think
0: that? हम तो रोते थे उस समय, अरे इंडिया का economic growth इतना पीछे, China जैसे हम कब grow करेंगे? हम भी कब Indonesia जैसे, Singapore जैसे हम भी कब grow करेंगे? We used to dream, and today is the reality. I think everybody is. ये किस्मत वाले हैं आप लोग, वेरी लक्की। इन आवर टाइम व्हेन यू आर द लीडिंग यूथ ऑफ दिस कंट्री, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये तो किस्मत की बात है ना।
1: ओके, दिस यंग मैन हियर।
4: सर, मी बीइंग अ स्टूडेंट हियर एट अमिटी, अपार्ट फ्रॉम दैट, एक मैं गौरवान्वित स्वयंसेवक भी हूँ। आपके लिए एक सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा, दैट यू बीइंग द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, हाउ डिफिकल्ट डू यू फाइंड इट कि सभी पार्टियों के बीच में आप वो समन्वय बना पाएं? क्योंकि संसद के कई सत्रों में हम देख रहे हैं कि संसद कई दिनों तक नहीं चलती। तो जब संसद ही नहीं चलेगी तो फिर फैसले संसद में नहीं तो कैसे सड़क पे तो हो नहीं सकते, जैसा पद्मजा जी ने कहा।
1: सर, मैं इसमें एक सवाल जोड़ना चाहती हूँ, और बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हम कल ही एक डिस्कशन कर रहे थे टीवी पे, जहाँ पे एक पत्रकार हैं बहुत वरिष्ठ, उन्होंने कहा कि देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन, सरकार और विपक्ष अब एक दूसरे से बात ही नहीं करते। फनी थिंग इज, हमने पीपल संसद इसलिए शुरू की क्योंकि पिछले पार्लियामेंट सेशन में संसद में डिस्कशन हो ही नहीं पा रहा था। क्यों ये ब्रेकडाउन है?
0: ब्रेकडाउन नहीं बोलेंगे, हमारा बात वो नहीं मानते, उनके बाद हम नहीं मानते, ये हो सकता है, ब्रेकडाउन नहीं है, डिसएग्रीमेंट है। देखिए, नंबर वन मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, पार्लियामेंट नहीं चलता है ऐसा नहीं है। हाँ, डिबेट कम होता है या डिबेट नहीं होता, ये बोलिए, क्योंकि सरकार मेजोरिटी है, हम चाहेगा तो बिल हम एनी टाइम पास कराते ही हैं। मान लो हमको बजट पास करना है, बजट पास नहीं करेंगे तो देश का खर्चा कहाँ से आएगा, सैलरी कहाँ से आएगा, आपका यहाँ जो इतना आपको माँ बाप पैसा भेजते हैं वो कहाँ से आएगा? तो बजट तो पास करना ही, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। तो विपक्ष हंगामा करने से भी हम तो पारित करना ही है, देश को तो चलाना है, तो पार्लियामेंट नहीं चलता ऐसा नहीं। लेकिन जो भी बिल पार्लियामेंट में पास करता है, थोरा स्क्रूटनी होना चाहिए, एक्सटेंसिव डिबेट्स एंड डिस्कशन मस्ट बी कैरिड आउट, to ensure that the legislative process is properly done and each member of parliament can give their inputs. तो कभी कभी क्या होता है कि हम बिजनेस एडवाइजरी बैठते हैं, हम कहते हैं कि मान लो ये हम एक बिल को लाने जा रहे हैं, हम मान लो स्पोर्ट्स का बिल लेने जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि कितना घंटा चर्चा करना चाहिए, तो अपोजिशन से हम पूछते हैं, मेरा काम है पूछना, तो मैं पूछता हूँ, तो अपोजिशन कांग्रेस वाला कम्युनिस्ट वाला कहेंगे कि इस पर हम 6 घंटा चाहते हैं चर्चा, तो हम कहते हैं कि ठीक है 6 घंटा ठीक है, तो फाइनल कर लिया। जब चर्चा करने के लिए बिल टेबल करते हैं वो दूसरा इशू लेकर के हंगामा शुरू कर देते हैं, प्लाकार्ड लेकर के गाला गाली जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा कि आप हंगामा कर रहे बाहर कीजिए, या तो पार्लियामेंट में बिल पास होने दीजिए। वो हंगामा करते हैं, तो एक दिन हमने स्थगित कर दिया, अगले दिन फिर हम बिल टेबल करते हैं, फिर स्थगित हो जाता है, तो थर्ड डे में हम थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, हम कहते हैं कि आप चर्चा के लिए तैयार कीजिए नहीं तो हम पारित कर देंगे। वो नहीं मानते, फिर हम मजबूरी में पारित करते हैं, तो पार्लियामेंट ठप नहीं होते हैं।
1: पर कभी ऐसा होता है बाद में जाके उनसे पूछते हैं कि भाई तुमने तो मेरे चेंबर में कुछ और बोला था बाहर जाके, ऐसा
0: होता है? मैंने कही कहा कि वो लोग कहा राजनीति है, वो तो मजबूरी से। अब कभी कभी कांग्रेस का नेता कहते हैं कि हम तो चाहते हैं लेकिन मेरा नेता ने मना किया, क्या करूं? तो फिर ऐसे होता है राजनीति में। देखिए पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में अगर पार्लियामेंट में हंगामा होता है तो ये कोई नई बात नहीं है,
1: क्योंकि ना मैं जब ब्रेकडाउन की बात कर रही हूँ, आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। यहाँ पे कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल आर हियर हु आर कैरिंग कैश ऑन देम, रेज योर हैंड्स। हार्डली एनीवन, इफ यू सी ऑलमोस्ट बेली व्हाट 10-20%, बिकॉज नाउ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग डिजिटल ट्रांजैक्शन UPI। येट व्हेन यू ब्रिंग इन द MDR एंड द एंटायर डिबेट अराउंड बिकम्स, लोग कहते हैं हमें सरकार पे विश्वास ही नहीं है कि आज आप 4% पे टैक्स लगा रहे हो, कल आप 100% लोगों के डिजिटल ट्रांजैक्शन पे, देयर इज जस्ट अ लैक ऑफ ट्रस्ट। बार बार हम जो पूछते हैं ना विपक्ष से, वो बार बार एक ही चीज बोलते हैं, हम सरकार को ट्रस्ट नहीं कर सकते।
0: लोग उसको ट्रस्ट नहीं करते इसलिए वो अपोजिशन में बैठे हैं, हमको ट्रस्ट करते हैं इसलिए हम तो सत्ता में सरकार चला रहे हैं। देखिए जब हम सर्विस लेते हैं तो सर्विस का चार्ज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये फ्री कल्चर जो अरविंद केजरीवाल जो फैलाते हैं बीमारी, ये नहीं करना चाहिए, लोगों को कमज़ोर बीमारी बना देंगे। हर चीज़ उस जमाने में गुरुजी का वो ये दक्षिणा भी होता है ना, हर चीज़ का कीमत होता है, फ्री में कोई चीज़ नहीं होता है, आराम हराम होता है। आपको अगर सर्विस अच्छा चाहिए तो आपको पे करना होगा, लेकिन इतना पे करना जितना आप दे सकते हैं। अगर सरकार इतना अनथॉटफुल है और एग्जॉर्बिटेंट रेट और ये सब लगाएंगे तो पब्लिक नाराज हो जाएंगे। लेकिन अपोजिशन का नैरेटिव में नहीं जाना है कि आप कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बॉडी बनाया तो वो जिंदा रखना चाहिए ना। अगर आप 100 रुपया का ट्रांजेक्शन करता है और आपको 5 रुपया काट लिया, तब तो आप कह सकते हैं अरे बहुत ज्यादा हो गया। बेयर मिनिमम जो सर्विस चार्ज लगता है वो तो हर देश में हर समाज में लगता है। इसको लेकर के मुझे लगता है कि अपोजिशन का प्रोपोगेंडा में हमको पढ़ना नहीं चाहिए। अगर बहुत चीज़ जो है अनबेरेबल है या बिल्कुल ये जायज़ नहीं है तो फिर जनता के पास बोलने का अधिकार है। तो सरकार तो जनता का बात सुनता ही है हमेशा।
1: On a final note, I want to ask you, sir, आपने हमने शुरुआत में when we began, we said कि आपने एक reply किया था अपने trollers को कि मैं यहाँ का खिलाड़ी हूँ, और आपके कई हमने different aspects देखे हैं, you know, the athlete, the swimmer, motorcycle rider, but there is one which we are not going to let you go without, which is that of a very accomplished singer. I was surprised to find out. तो आपका एक बहुत हाल फिलहाल का video viral जा रहा था, जब कोई बात बिगड़ जाए जब आप गा रहे थे, अगर आप anything which is to your mind, anything dedicated to the youth, anything that you off the top of your head want to dedicate.
0: You want me to sing?
1: Yes, please.
0: गाना तो अभी mood में नहीं हो ना? गाना गाने के लिए mood में होना जरूरी है।
1: Applause?
0: नहीं, अरे उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ।
1: An artist is only encouraged and put in the mood by his audience.
0: मैं बहुत sporty आदमी हूँ, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन क्या है कभी कभी मैं तो गाना गा देता हूँ, लोग तालियां भी बजाते हैं, बाद में मेरा बीबी मुझे डांटते हैं कहते कि तुमको गाना गाने के लिए बोला है, तुम एक लाइन नमूना गाना चाहता, तुम पूरा स्टेंजा का गाने का क्या जरूरत है बोलता है। वैसे तो मैं गाना गाता नहीं हूँ, लेकिन जैसे शाम को कभी फेस्टिवल वगैरह में मैं गाता हूँ, लेकिन वो अपने लिए मस्ती के लिए। मैं एक लाइन गा देता हूँ
1: प्लीज, एंड आई अश्योर आई विल कॉल अप मैम एंड से इस बार डांटिए मत
0: मैं आधा से गा देता हूँ, लंबा गाने का इतना पेशेंस बच्चों में नहीं होगा।

आजा तेरे आंचल में, प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं, खुशियां जा

0: तूने तुझे ढूंढे जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बहुत मेहनत से गाया मैंने।
1: सर जब आपने कहा था यहाँ का खिलाड़ी मैं हूँ, आई थिंक ऑल ऑफ अस वुड अग्री टू दैट। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू इन द पीपल्स संसद। थैंक यू।

0: move for a fair and transparent probe to take place. But stay with you, Radhika. I'll come back to you shortly. Meanwhile, NDTV is on ground zero, bringing you all angles of this story. My colleague Sujata Divedi also spoke to Sahil's wingmate in IIT Bombay. Take a look.
1: के विंगमेट थे आप लोग दूसरे को जानते थे एग्जाम में कॉपी किया गया इसको लेकर आपको उसने क्या बताया
2: उसने किसी से भी कुछ बात नहीं की यही बात है सब स्पेकुलेशन है कॉपी करने के बाद जब उसको बाहर लेके गए उसके बाद उसने किसी से बात नहीं की तो किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है आई डोंट थिंक जितना मैंने फर्स्ट ईयर में उसे देखा कि हमने से किसी में या उसके दोस्तों में से किसी ने उसके कास्ट पर कभी भी रिमार्क किया हो IIT बॉम्बे में ऐसा कल्चर है ही नहीं कि कोई किसी के कास्ट पर रिमार्क करता है क्योंकि हम सारे जेईई देव स्टूडेंट हमें आइडिया है कि ये सब नहीं करना होता है मित्र एजुकेटेड हैं एंड मुझे नहीं पता ये एंगल कहाँ से आया डी ने कि ये सस्पेंशन था हमारा फर्स्ट पॉइंट उसका भी रेजिग्नेशन नहीं था क्योंकि जब तक वो गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाते हम उनका रेजिग्नेशन नहीं मांग रहे
3: Accountability does not necessarily mean an online apology, first of all, because everybody apologizes nowadays. It's a very, you know, trendy thing, right? We need resignations. That's what we need. We need resignation of all the people involved because, like I said, this is not one isolated event. There have been four suicides in the past 1 year. This is the second suicide in the past 2 months. जिसमें से चार suicides में से तीन suicides जो थे वो दलित background के बच्चों के थे. So, like I said, this is not an isolated event. Right, so we need immediate resignation because accountability हमें वैसे ही मिलेगी. We need resignation. We need a student independent student body यहाँ पर जो student के behalf पर बोले, you know, to give students some power as well. We need mental health conferences and all of that. We also need compensation for the family. जो उनको भी काफ़ी पुलिस ने परेशान कर रखा है जब से वो यहाँ पर आए हैं उनका एक अकेला बेटा था वन ओनली चाइल्ड राइट तो वी नीड कॉम्पेंसेशन फॉर द फैमिली
0: So there have been 18 demands given out by the students of IIT Bombay. They have been protesting for the past 3 days. They are saying this is not the first time such an incident has happened in IIT Bombay. Sahil's case is the third in less than a year. And meanwhile, the case has been transferred to the crime branch. NDTV also spoke with Sahil's grandmother, who said that there's been injustice subjected to. Her grandson. Meanwhile, breaking news coming in, Maharashtra Minister of State for Home, Yogesh Kadam, has now said that the police are investigating the IIT Bombay student death case, stressing the gravity of the incident. He said that the Chief Minister has directed authorities to examine whether any wrongdoing or pressure was involved. He added that if anyone is found guilty, strict action will follow. Remember, the case has been transferred to the Mumbai crime branch. It has been taken away from the local police. Look at all angles which led to Sahil taking his own life. Take a listen to what the police officials are saying.
4: नहीं देखिए पुलिस अब भी उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है एक बच्ची की उसमें जान गई है और बिल्कुल उसकी वैल्यू हमें है हमें पता है इस पूरे मामले में हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी निर्देश दिए हुए हैं कि अगर कुछ गलत चीज हुई हो अगर उसको वो बच्चे को अगर किसी भी माध्यम से प्रेशराइज किया गया हो तो बिल्कुल उस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन होगा और अगर कोई इसमें दोषी अगर कोई पाया जाएगा तो बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी
0: And earlier, I spoke with Sahil's grandmother. This is what she had to say. She says that the grandson has been subjected to injustice. आपके सन ने साहिल के पिताजी ने प्रोफेसर डोला का नाम लिया है कभी साहिल ने जब वो आपसे बात करता था कभी बताया है कि उसके साथ कॉलेज में जो प्रोफेसर्स है क्या उसे कास्ट स्लर्स या कुछ खराब बातें कहते थे कभी उसने ऐसा आपके साथ कहा है
5: साहिल के मम्मी पापा 8 दिन के पहले साहिल को जाके मिल के आए तो साहिल के मम्मी पापा को साहिल ने बताया मैडम आज साहिल के मम्मी पापा यहाँ पे नहीं है
0: तो साहिल के मम्मी पापा को पता होगा कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ है बट अभी जो प्रोफेसर है प्रोफेसर डोला उनको रिजाइन कर दिया गया है सीबीआई ने ये मुंबई क्राइम ब्रांच ने ये केस ले लिया है आप अभी आगे क्या चाहते हैं क्योंकि आपका ये पोता नहीं था चार और स्टूडेंट्स भी थे जिन्हें अपने आप की जान ली है IIT बॉम्बे में पढ़ने के बाद
5: ये साहिल के फैमिली के तरफ से आपको रिक्वेस्ट है कि साहिल जैसा आगे कभी भी ना हो जाए साहिल जैसे और साहिल सुसाइड ना हो जाए किसी बच्चों पर अन्याय

0: A chutput ghatna, and now this minister also saying it's not crime free. Nobody is expecting Bihar to be crime free overnight, but when you trivialize and you speak in such callous manner, that gives this kind of this kind of audacity to these criminals that they can do something and get away. Let me tell you very quickly what all has happened as far as this incident is concerned. First, on 19th of this month, let's play out these videos, ladies and gentlemen. They are absolutely shocking, for anybody. Now, this incident took place on the 19th of this month. On 19th, this young boy and his friend, they were coming back from their tuition classes, tried to take a detour towards one of the picnic spots in Jammu. And while they were on their way home at around 6:37, they were accosted by a bunch of these criminals. A bunch of these criminals, those who came there, molested the girl. In fact, it was this boy put up a fight, and they were somehow, by God's grace, were able to run out from that place. Now, this video was then made viral by somebody in this group. And only after this video went viral today and there was outrage, hue and cry, the police jumped into action. Now, an SIT has been formed. Three people have been arrested in this after the SIT has been formed, and there are some others, those who have been identified. Let's very quickly tell you what all has happened so far in this case. Now, two of the arrested people are between the age of 17 and 18. In fact, what we have been told, that the three arrested are all minors. The police have identified the others, including one who was seen picking up this girl. This man, if we can go back, the guy who has covered his face with a gamcha. This man has been identified, and the SIT at this moment is conducting raids to try and arrest this person. What we also know, POKSO case has been now, in fact, the sections have been raised against these accused. The accused faces charges of using force and assaulting women, including criminal force intended to outrage the modesty of a woman. They also face charges of sexual harassment. Since the girl is minor, POKSO sections have also been levied against them. The investigation is now widening beyond those already arrested. The ADG has said that 7 to 8 people, their names have surfaced. Police say anyone found involved will face legal action, while the criminal history of the accused is also being examined. The other big development on this story, the police has also, in fact, is acting against the accounts which are circulating the disturbing video of the minors. So far, takedown action has been initiated against 13 Facebook accounts and 12 Instagram accounts and 7 accounts on X as authorities move to stop the circulation of this video. Bihar police have also issued a clear warning over the viral footage. They have said circulating the video and the identity of the victim will also be constituted as an offense, and action will be taken against the juve in the POKSO Act. Now, a lot of reactions coming in on this at this moment. Tejaswi Yadav, breaking news coming in. The leader of opposition in Bihar has also reacted to this. He has said Bihar has totally gone under Gunda Raj. Women neither feel safe at home nor outside. Tejaswi Yadav has spoken on the Jammu issue. So this is the government of Bihar, and remember, as I've been saying, the elections, last elections of Bihar, even after 20 years of being in the government, it was the Jungle Raj taunt or the Jungle Raj fear that was invoked by the NDA. They came into power. Now people are asking the question, is this the police Raj? Is this the rule of law that was promised?
1: बहुत ही दुखद घटना है. हम लोग को बहुत ही शर्मिंदा है जिस प्रकार की जो घटना हुई, लेकिन सरकार को कोई शर्म लाज नहीं रही है. आप देखिएगा, यही सम्राट चौधरी कहते थे कि भाई रात में भी लड़कियां जो है अब घूम रही हैं फ्री होकर के, और पहले जो है लड़की लोग घूमती नहीं थी। ये जीता जागता उदाहरण है सम्राट चौधरी के बयान पर, एक संदेह पैदा करने वाला घटना है, बहुत ही दुखद घटना है।
0: Right on the top of the bulletin, we broke that story. In fact, the reaction of Minister Shravan Kumar in the government of Bihar. He's joining me at this on the phone line at the moment. Let's very quickly go across to him. Shravan Kumar ji, bahut bahut shukriya humse baat karne ke liye. Aapka sir ek bayan abhi chala. उस बयान में आप ये कहते दिख रहे हैं कि देखिए कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये सब छुटपुट घटनाएं हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सर ये आपको लगता है ये छुटपुट घटना है, किसी बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है?
2: मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर है। मैंने ये कहा कि कुछ घटनाएं हो रही है, इससे हम सब लोग दुखी है, सब लोग मरमाहत है, और इस तरह के घटना करने वाले, कानून को अपने हाथ में लेने वाले, बिहार को शर्मसार करने वाले किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं, हर हालत में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
0: ये सवाल इसलिए उठ रहा है सर कि ये एक माइंडसेट की बात है। अगर जो सरकार में लोग बैठे हैं उनको लगता है कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो ये ऐसी घटनाएं रुकेंगी कैसे?
2: नहीं, कौन कहता है कि ऐसी घटनाएं होती रहती है?
0: उमेश कुशवाहा जेडीयू के अध्यक्ष हैं बिहार के, वो इसको छुटपुट घटना कहते हैं, आप कहते हैं कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं।
2: सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि जो लोग कानून को हाथ में लेकर बिहार को शर्मसार करने में जो लोग लगे हैं, उनको किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा, कानून के हिसाब से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
0: आप कह रहे हैं कि ये बिहार की सरकार के सामने चुनौती है, 20 साल से सरकार आपकी, अब तक इस चुनाव में जंगल राज का नाम लेकर आप आए थे, अब ऑपोजिशन कह रही है कि यही आपका लॉ एंड ऑर्डर है, 20 साल से सरकार आपकी है और अभी आप 2005 के जंगल राज की बात करते हैं?
2: जंगल राज की बात जो लोग करते हैं करें, लेकिन हम लोग जंगल राज की बात नहीं करते हैं। हम लोग का जो कमिटमेंट है बिहार की जनता के साथ, उस कमिटमेंट की बात करते हैं, और जो वादा करके आ रहे हैं चुनाव में उसको एक एक करके बिहार में हम लोग लागू करते हैं। और बिहार में 20 सालों में घटना हुई है, हमारे लिए बहुत बहुत इस घटना पर हम सब लोग मरमाहत हैं, लेकिन और भी जो काम हम लोगों ने किया है, हम लोग कभी जंगल राज की बात नहीं करते हैं। हम लोग बिहार में जो हम लोगों से चूक हुई है, गड़बड़ी कहीं हुई है, उसको स्वीकारते भी हैं, और इस तरह के कृत्य करने वाले को हर हालत में कानून के हवाले होना पड़ेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
0: सर ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, जमुई में ही 2024 में भी इस तरीके की एक घटना देखने को मिली थी, अब से कुछ दिन पहले नालंदा में भी एक घटना हुई थी मार्च के अंदर, तब भी इस तरह की बातें की गई थी। तो सरकार बार बार इन घटनाओं पर बातें बहुत करती है, लेकिन उसके बाद एक्शन के अगर कुछ होता तो ये दोबारा दोबारा क्यों हो रही है?
2: एक्शन तो आप घटना वाइज आप समीक्षा करिए, सरकार समीक्षा करके बताएगी, आगे अब हमसे इंटरव्यू लीजिएगा तो बताएंगे कि किस घटना में कौन से लोग दोषी थे और उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई किया, पुलिस ने क्या कार्रवाई किया।
0: तो क्यों ऐसा है कि कार्रवाई के बाद भी ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं, कहां विफलता है सरकार की?
2: नहीं, सरकार की विफलता क्या है? सरकार की विफलता नहीं है इसको कहा जा सकता है, लेकिन जो इस तरह के कृत्य करने वाले लोग हैं,
0: सफलता भी तो नहीं हो सकती ना सरकार की, ये
2: उनको जो है हर हालत में सरकार पनिश करेगी, हर हालत में उन पर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
0: मैं आपको क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि बाकी केसेस के अंदर अगर कड़ी कार्रवाई होती तो फिर ये दोबारा घटना क्यों हो रही है?
2: तो आपको मैंने बताया कि इन चीजों के बारे में कहिएगा तो दो चार घटना का हम वहां पर समीक्षा करके आपको बताएंगे कि किस घटना में क्या कार्रवाई हुई है।
0: उपेंद्र कुशवाहा, उमेश कुशवाहा माफ कीजिएगा, जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं बिहार के, वो इसको एक छुटपुट घटना बता रहे हैं। आपको लगता है कि ये छुटपुट घटना है?
2: नहीं, घटनाएं हुई है इसको स्वीकार करते हैं, घटना छिटपुट हो या घटना किसी भी हालत में हो, वो घटना हम लोग के लिए बहुत दुखी करने वाली घटना है, शर्मसार करने वाली घटना।
0: सर सबके घरों में बच्चियां होती हैं, आपके घर में भी होंगी, अगर कोई भी नेता इसको छुटपुट घटना कहेगा तो आपको लगता नहीं अपराधियों के हौसले और बढ़ेंगे?
2: घटनाएं देखिए, घटनाएं हो रही है तो उसको बोलने में कुछ, मान लीजिए इधर उधर का बात हो जाती है, छिटपुट घटना या बहुत

0: की खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा। सबका राजा आप
2: मसाला। Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
3: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
4: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
5: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.
6: Launch control, 0 to 100.
7: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense.
8: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
7: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
5: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
9: The 20th Asian Games are officially underway in Aichi, Nagoya in Japan. For the next 16 days, this is where India's sporting dreams will play out.
10: We are in the happy hunting ground with the athlete I am sitting with right now, PV Sindhu.
11: 32 years and no medal. Can India's weightlifting contingent give us that elusive medal?
12: Gold rush on the field.
10: Go for glory, only on NDTV.
5: A generation with questions.
13: The starring and the whole glamorous side of it.
14: As I said, like, I can't empathize with it.
5: Unconventional.
15: I feel blessed. As long as the work is going on, I'm happy.
5: Unapologetic. Unafraid of change. Ready to challenge.
16: Aspirational.
5: The ideas. The issues.
14: You really are.
5: The young view.
14: Public perception.
5: NDTV Yuva. 28 September 2026. Only on the NDTV network. New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV. When it really matters.
6: Launch control, 0 to 100.
7: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense.
8: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
7: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobile.
17: Welcome back, ladies and gentlemen. A social media reel criticizing MNS chief Raj Thackeray has triggered a shocking act of public humiliation in Pune. This is not something new. MNS has always done this and have gotten away with lakhs. In fact, the government's not doing anything against their thuggish, you know, workers. The MNS workers allegedly grabbed a Marathi content creator, Mahesh Mote, blackened his face and forced him to apologize. Now, this video, take a look at this video. In this video, let's just play this video full frame, ladies and gentlemen, just to give you a sense of what exactly and how do these people behave. In a video of this incident, Mote is seen with slippers placed on his head as he is made to perform sit-ups. He is then forced to bow down before a photograph of Raj Thackeray as if he is God and apologize. Mote later posted a video breaking down, and he said that his comments were intentional. He apologized to Raj Thackeray. And MNS leader, Shubham Jagdale, who he said that was also, he made a video against him as well. While the video could be, crass, could have problems, there is freedom of expression. And if there was something which was illegal, there could have been legal action against the influencer. But this is what MNS calls justice MNS style. Just a short while back, I tried to speak to Shubham Jagdale, the man who claims very proudly that he has given this person the style, the taste of MNS justice. And while he was being questioned, as soon as the heat turned, he decided to switch off and run away. Take a look. A video is going viral, ladies and gentlemen, on social media where an influencer in Maharashtra is being threatened, harassed. He's been made to do sit-ups, put his shoes on his head and lie prostrate in front of a picture of MNS leader Raj Thackeray. He made a reel on Instagram criticizing Raj Thackeray, which the MNS then, the workers of the MNS, went and met it, as they call, justice in their own style. Shubham Jagdale is the MNS leader who is seen in that video. He is joining me at this moment. Shubham, sabse pehle, ye jo video viral ho raha hai, jo humne dekha, aap Mr. Mote hain, jinko aapne अपने ऑफिस में बुलाकर आपके लोग घेर के खड़े हुए हैं और उसके बाद आप लोग उनसे माफ़ी मंगवा रहे हैं, उठक बैठक लगवा रहे हैं, सर के ऊपर उन्होंने जूते रखे हुए हैं और मुंह भी उनका काला कर दिया है, तो ये वीडियो वायरल हो गया है, इसीलिए आपने किया था वायरल करने के लिए, 5-6 लोग इकट्ठे होके किसी को पकड़ लो और उसके बाद उसको धमका कर ये सब करवा दो?
16: जैसे कि सर आपने बोला कि इनको किसी को धमका के वीडियो बना के वायरल करना हमारा कोई काम नहीं है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी का काम करते हैं और उस वक्त अगर हमारे पॉलिटिकल लीडर पे कोई अगर अपशब्द बोलता है जो सब ऑन कैमरा बोल नहीं सकते, इतना गंदा अगर वर्ड कोई बोलेगा तो मुझे लगता है कि मैं ही नहीं लेकिन मेरे जैसे बहुत, सिर्फ हमारा एक पॉलिटिकल एमएनएस पार्टी नहीं, अगर इसके बावजूद दूसरा भी कोई पार्टी होता तो मुझे लगता है शायद वही किया होता उन्होंने।
17: अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि पॉलिटिकल पार्टी जैसे आपकी है तो पॉलिटिकल पार्टी आपको पता है ना देश के कानून कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पे चलती है, मतलब रजिस्ट्री भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी की इसलिए हुई है कि आप लोगों ने कुछ कानून देश के हैं उसके हिसाब से आपकी रजिस्ट्री हुई है, तो अगर आपके बारे में, आपके नेता के बारे में, किसी के बारे में कोई अपशब्द बोलता है तो आपको लगता है कि उसका जो, जिस तरह से आपने कहा एमएनएस स्टाइल में उसके साथ हमने जो भी कुछ हुआ उस वीडियो में मैं सुन रहा था, वो पुलिस करेगी, कानून करेगा या आप लोग करेंगे? आप पॉलिटिकल पार्टी हैं या फिर लोग बोलेंगे मिलिशिया हैं, माफिया हैं?
16: सर 26 तारीख को, पिछले महीने में 26 तारीख को हमने सीपी सर को जो है वो निवेदन दिया हुआ था, लेटर दिया हुआ था कि जो ये जो बंदा कर रहा है, ये हरकतें गलत कर रहा है। उन्होंने पहला एक बार वीडियो बनाया था, उसके बाद उन्होंने दूसरा बनाया, दूसरा बनाने के बाद तीसरा बनाया। जब पहला वीडियो उन्होंने बनाया था उसी टाइम हमने सीपी ऑफिस में जो है वो लेटर दिया हुआ था कि इन ऐसे लोगों को आप इनका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो बैन कर दो। इंस्टाग्राम अकाउंट के वजह से जो वो कंटेंट बनाते हैं वो कंटेंट उनका पूरा, जो अगर कंटेंट देखोगे तो पूरा कंटेंट वो बहुत खराब है, तो हमने डे वन पे बोला था। उसके बाद उन्होंने दूसरा वीडियो हमारे ऊपर बनाया, तीसरा बनाया, मतलब वो क्या कर रहे थे कि सामने से वो हमें ये कर रहा था, भड़काने की काम कर रहा था।
17: आप भड़क गए
16: भी, हमने जो
17: मतलब उसने, क्योंकि आपका नाम ले लिया तो आपकी ईगो हर्ट हो गई कि शुभम का नाम लेके कैसे वीडियो बना दिया, इसका इलाज करते हैं, 8-10 लोग जाके उसको पकड़ के ले आओ और उसके बाद उसके मुंह पे कालिक पोत दो।
16: उसको लेके नहीं आए, वो खुद चल के आया, क्योंकि उसको मालूम था कि उसको पुणे में अगर वो आया है तो उसने बोला था मुझे, मेरे पास मैसेजेस है उसके, उसने मुझे खुद बोला था कि बाबा मैं जब आऊंगा तो मैं आपके ऑफिस पे आके मिलूंगा। मैं
17: तो कालिक किसने पोता
16: वो उनके फेस के बाद पे? उसने ये भी बोला कि मेरे से ये सब जो चीज हो गई,
17: कालिक किसने पोता फिर? मुंह के ऊपर कालिक किसने लगाया शुभम
16: जी? मैंने लगाया।
17: आप ही लगाया ना, तो ये जो आपने कमिश्नर साहब को बताया था, एफआईआर करा देते, आप कोर्ट चले जाते,
18: रोज जाते हैं ऐसे
16: के? अभी FIR, सर मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं मेरा जो लेटर है मैं वो लेटर NDTV तक हमारा जो
18: सर वो तो लेटर आपने एप्लीकेशन दिया मैं कह रहा हूँ आप FIR कराते ना जाके आप बोलते हैं कि हम आप FIR कीजिए आपको पता है कि कोई इसमें रेलेवेंट सेक्शन नहीं लगेगा आप IT
16: महीने में कोई डेढ़ महीने में कोई उसके ऊपर पुलिस ने कोई कार्रवाई की
18: तो आप तो पॉलिटिकल पार्टी हो प्रोटेस्ट करते पुलिस के अगेंस्ट
16: नहीं किया सर
18: नहीं करा ना
16: 26 तारीख को
18: बदमाशी की आपने मतलब आपने गुंडागर्दी करी
16: सर अभी अगर किसी को लगता है हम गुंडागर्दी करते हैं तो गुंडागर्दी है लेकिन हमारे
18: लगता क्या है सर आप करते हो वो तो महाराष्ट्र की पुलिस वो तो पता नहीं महाराष्ट्र की पुलिस वरना और कोई पुलिस होगा तो उठा के आपको अंदर कर देगा किसी को इस तरह की हरकतें करने में शुभम जगदले ही इज द लीडर ऑफ द MNS पार्टी आई थिंक वी हैव जस्ट लॉस्ट दैट कनेक्शन विद हिम आई विल ट्राई एंड गेट हिम बैक ऑन द शो लेडीज एंड जेंटलमैन MNS दे टेक प्राइड इन बिहेविंग लाइक दिस एंड दैट इज वाई द क्वेश्चन फॉर अ पार्टी विच हैज बीन रिड्यूस्ड टू जीरो MLAs बिकॉज ऑफ देयर एंटिक्स टू 1.5% वोट्स इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र That party only tries to do their leaders, only try to do this kind of, gundagardi. They try and beat up people, intimidate them, and this what they call is MNS-style justice, just to stay in news. They have lost absolute, they have lost their relevance, and this is what they think will keep them, in the talking, in for people to, in fact, be intimidated by them. The question is not just about Raj Thackeray, why does he have goons like this? Because if it is a political party, should run like a political party, not like a gang or a group of thugs. In fact, roaming around, intimidating people. But the question, the bigger question, is to the Maharashtra government: Why aren't these people being booked? An example being made out of them? Because this is not the first time MNS workers have done this. They keep doing this and getting away with this kind of absolute nonsense.
17: All right, quick break. We are coming back. Stay tuned.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
2: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है।
3: कुछ इससे भी अनोखा,
2: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
4: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
5: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
6: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.

0: में दलित बनाम सवर्ण इस तरह के से मामला वहाँ पर फिर शुरू हो, तो देवन को मतलब आप बहुत संभल के, और दूसरा क्या, अभी जो मनोज जरांगी का आरक्षण का जो आंदोलन को लेकर उसने मुंबई कुछ का प्लान किया था, उसने विड्रॉ कर लिया, उसको लेकर भी कि मराठा को कुनबी में आरक्षण देने का सरकार ने फैसला लिया है, उसमें दलितों के एक वर्ग में नाराजगी है, तो वो एक भी नाराजगी बनी हुई है, ऊपर से ही अलग नाराजगी, तो देवेंद्र को देखना है कि कैसा ना हो कि इस मामले में दलित सड़कों पर उतर
1: कर खुद जनरल कास्ट से भी का जिक्र किया है। वांट टू प्ले आउट दिस इज द आयरनी दैट ऑन द वन हैंड द बीजेपी गवर्नमेंट हैज गॉन एंड बुक्ड दिस प्रोफेसर अंडर द SC ST एक्ट एंड लिसन टू व्हाट दत्त Osable is talking about Hindu society as a whole and the whole issue of caste. Listen.
2: समाज को संगठित होना है तो अपने आपस के भेदभाव को भूलना पड़ेगा। मैं इस जाति का हूँ, पंथ का हूँ, भाषा का हूँ, प्रांत का हूँ, मैं उत्तर भारत का हूँ, मैं दक्षिण भारत का हूँ, इसलिए मैं अलग हूँ। इस भेदभाव से, एक दूसरे के साथ अलगपन से हम अपने संगठन के जो स्वभाव है वो नहीं रखने से ताकत नहीं रहेगी।
1: What's going on? RSS is saying one thing, BJP the other. At least you want to say something.
3: BJP बहुत फाइन बैलेंस करके चलना पड़ रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो हुआ, बीजेपी को इस बात का एहसास है कि जो कोर वोट उसका है उसको नाराज नहीं कर सकती है, इसीलिए आपने जो जेपी नड्डा की मीटिंग का जिक्र किया, ये मीटिंग इसीलिए हुई, ये तीसरी मीटिंग है इस तरह की कि जो आरक्षण के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई, इससे पहले
1: बजट तो बैलेंस कैसे कर रहे हैं SC ST एक्ट के अंडर बुक करके आप बैलेंस कैसे करेंगे, तो नाराज ही होंगे ना जनरल कास्ट।
3: ये इशू तो बाद में आया ना, ये तो इशू अभी आया है। मैं उस मीटिंग की बात कर रहा हूं जो सैटरडे को हुई है, उसमें जो हुआ और जो बात RSS के सर जनरल सेक्रेटरी कर रहे हैं Osable जी, वो यही कह रहे हैं। देखिए RSS तो बहुत लंबे समय से आप जानते हैं कि सामाजिक समरसता की बात करते हैं, जो उनका शताब्दी कार्यक्रम चल रहा है उसमें एक ये विषय है कि एक गांव में एक कुआ एक शमशान होना चाहिए, यानी सोशल जो कास्ट का इस तरह से आप ब्रेकअप करते हो वैसा नहीं होना चाहिए। तो RSS का एक एजेंडा है, तो काम पे उससे लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन जो रियल पॉलिटिक है वो UP चुनाव को लेकर के है, वो चैलेंज बीजेपी के लिए है। इसलिए बीजेपी के एक बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी अभी 3-4 दिन पहले ही, उन्होंने कहा कि हाँ हम इस चैलेंज को मानते हैं कि हमारे लिए चुनौती है, ये जो परिस्थितियाँ बन गई UGC गाइडलाइंस हों या इस तरह के विषय आते हैं, इसलिए हम इसको एड्रेस करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आप ये देखेंगे, उन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया कि आप ही देखेंगे कि अगले कुछ महीनों में स्थिति बदलेगी।
1: ऑर्गेनाइजेशन इज फाइंडिंग इटसेल्फ इन अ बिट ऑफ अ बाइंड इज क्वाइट अपेरेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट यू जस्ट हर्ड दत्तात्रेय Osable सेइंग देयर शुड बी डिविजंस ऑफ दिस काइंड एंड द ABVP इन द केस ऑफ IIT बॉम्बे केस हैज एक्सप्रेस सॉलिडैरिटी विद द पेरेंट्स of Sahil Wakode. From one campus to another, the results of the Delhi University students' election has been quoted as a barometer of the mood of India's youth by the BJP. They are saying Gen Z hamare saath hai. And it's understandable given that not only did the RSS students wing ABVP win on 3 out of 4 seats on the panel, but for the first time in many years, the NSUI drew a blank. The vice president's seat also was won by an NSUI rebel, Dipanshu Shaukeen, who has now said that accountability should be fixed within the Congress for what he calls dirty internal politics. Interestingly, the CJP, which had been the face of the Gen Z protest just months ago at Jantar Mantar, has dismissed this result as nothing but what comes from money power.
4: जो मैंडेट आया, स्टूडेंट्स किन को चाहते थे और क्या वोटिंग परसेंटेज किस तरीके से मैंडेट आया, वो साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं टिकटों में गलती हुई और इनकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए लोगों को कि उनसे गलती हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट NSUI से लड़े और उनको ठीक ठाक मैंडेट, मतलब अच्छा मैंडेट हम लोगों को मिला, तो ये साफ दर्शाता है कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी वो बहुत ज्यादा हुई।
5: नहीं, चुनावों में तो पैसा चलता है, चुनावों में पैसा चलता है, चुनावों में और कुछ नहीं चलता है। DU में जो कैंपेन होते हैं, रोल्स रॉयल्स की गाड़ियों में आते हैं लोग, रोल्स रॉयल्स वो गाड़ी करोड़ों की नीचे नहीं आती है, ऑडी में आते हैं, BMW में आते हैं, तो चुनावों में बस पैसा चलता है।
1: विनोद जी, क्या ऐसा है कि कन्हैया कुमार के ऊपर एक्शन होने वाला है?
6: कन्हैया कुमार लाइन ऑफ फायर में तो है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी कन्हैया कुमार को के ऊपर इसलिए डाली जा रही है कि वो इंचार्ज है NSUI के, और इस बात को लेकर पार्टी के अंदर NSUI में बहुत असंतोष है कि भाई आपने ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी हुई जिसका NSUI से कभी कोई लेना देना नहीं रहा, जो व्यक्ति जिसकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स पूरी NSUI के विरोध पे खड़ी थी, जो लेनिन और माओ को पढ़ करके पॉलिटिक्स करता था, वो गांधी और नेहरू की जो पार्टी है उसको कोई सिस्टम नहीं मालूम, कोई स्ट्रक्चर नहीं मालूम है, और बल्कि

0: हानि ये है इंटरनल कि वो कैंपस गए भी नहीं कैंपेन करने के लिए,
1: कन्हैया
0: बहुत बहुत लास्ट में शायद गए होंगे, और मीटिंग हुई केसी वेणुगोपाल के यहाँ जिसमें ये सारे नेता इवन सचिन पायलट दीपेंद्र हुड्डा ये सारे मौजूद थे, उनसे जब कहा गया तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो स्टूडेंट नहीं हूँ मैं क्यों जाऊँ, तो सचिन ने कहा दीपेंद्र ने कहा कि भाई हम जाके नारे लगाते हैं अपनी NSUI के लिए, ABVP के BJP के नेता आते हैं तो आप जाने में क्या दिक्कत है, और इसलिए इस वक्त पूरा जो संतोष है इस पूरे उसका, क्योंकि पहली बार एक तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कंपोजिशन है इलेक्शंस का वो लोकल्स वर्सेस आउटसाइडर्स रहता है हमेशा, लोकल्स मतलब जो अपने को नेटिव मानते हैं यहाँ के जो गाँव जो जाट गुजर और लोकल जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली वो डे स्कॉलर्स हैं उनका डोमिनेंस रहता है, तो हमेशा पैनल्स देखे चाहे ABVP का हो चाहे NSUI का हो इन कम्युनिटीज़ को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलता है। इस बार कांग्रेस के जो पैनल वे NSUI में थे ही नहीं, मीणा उसके बाद ये चतरथ,
1: और कांग्रेस कह रही है बट हमने एक ट्राइबल लीडर को मौका दिया,
0: ट्राइबल लीडर को मौका दिया वो अच्छा लड़ा भी नो डाउट, लेकिन अगर बैलेंस बना के चलते मान लीजिए शौकीन को जो शौकीन से कहा गया प्रेसिडेंट लड़िए, उसने कहा मैं प्रेसिडेंट नहीं लड़ूंगा क्योंकि उधर से दबास है दो जाट लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे, उसका अपना गणित था, तो वो वाइस प्रेसिडेंट लड़ना चाहता था, इन्होंने कहा वाइस प्रेसिडेंट मत लो, ये जो रहा कि आपका अपना आदमी जो रिवेल होकर जीत रहा है तो इसलिए,
1: और एक ही नहीं दो दो रेबल थे,
0: दो दो रेबल वो यादव विजय यादव वो भी आपका ही था, अगर आप यादव जाट मीणा सबको बैलेंस करते तो शायद नतीजे कुछ आपके फेवर में,
1: और इनफैक्ट विशेष यादव जो कि जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे लड़े हैं ही वाज बैक्ड बाय द समाजवादी छात्र सभा,
0: वो तो लास्ट मोमेंट
1: एंड इवन ही गॉट मोर वोट्स देन द
2: NSUI के जो प्रेसिडेंट है विनोद जाखड़ अभी वो राजस्थान से बेसिकली आते हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कि जब शौकीन को टिकट नहीं मिल रहा था तो उसकी पैरवी दीपेंद्र हुड्डा ने की, तो दीपेंद्र हुड्डा ने सचिन पायलट को फ़ोन किया क्योंकि सचिन पायलट भी राजस्थान से और जाखड़ उसके बहुत अच्छा परिचय है, तो उन्होंने कहा कि भाई आप उससे बात करो उपाध्यक्ष पे इसको दो ये चुनाव जीतेगा आप उसको टिकट दिलवाइए, सचिन पायलट ने उसको फ़ोन किया जाखड़ को जो NSUI के अध्यक्ष है, तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में नहीं है इसमें कन्हैया कुमार ने तय किया है और मैं इसमें तय नहीं कर पाऊंगा, मैं नाम रिकमेंड कर सकता हूं मैं नाम रिकमेंड किया हुआ है, सचिन पायलट ने कन्हैया कुमार को भी फ़ोन किया उस संदर्भ में पूछने के लिए, तो कन्हैया कुमार को बोला कि नहीं आप उस मामले में मत पड़िए मैं वहाँ की पॉलिटिक्स को बहुत बेहतर समझता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की कि वहाँ क्या स्थिति है और जिसका नाम रिकमेंड कर रहे हैं उसको थोड़ा ईगो प्रॉब्लम है तो उस बार उसका इलेक्शन के बाद उसका ईगो ठंडा हो जाएगा उसको चुनाव लड़ने निर्दलीय उसको समझ में आ जाएगी भारतीय जनता मतलब NSUI का संगठन क्या है कांग्रेस की ताकत क्या है कन्हैया कुमार का वहाँ पर जनसंपर्क क्या है। ये सचिन पायलट को कन्हैया कुमार ने पूरा फीडबैक दिया, उसके बाद सचिन पायलट ने कहा ठीक है मैं अपना पंजाब चुनाव देखता हूँ और जब परिणाम आया
1: तो और जितना मुझे याद है हाल फिलहाल में दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द NSUI हैज ड्रॉन अ कंप्लीट ब्लैंक
3: लुक। वेल यू नो आई एम कंसर्न्ड अबाउट द हेल्थ ऑफ द कांग्रेस पार्टी इफ अ लीडर ऑफ द स्टैचर ऑफ सचिन पायलट राइट हुज फादर वाज इन द कांग्रेस एंड हुज बीन इन द कांग्रेस फॉर सो लॉन्ग इफ ही हैज टू स्पीक टू कन्हैया कुमार टू बी टोल्ड that you know you don't know the politics
0: of Delhi
3: of Delhi and Delhi he knows the politics of Delhi so let's
1: say in fact a lot of people are saying that this is yeah, the
0: main quote congress dusu ki ek former president ne mujhse kaha usne kaha kanhaiya ne 8000 students ki politics ki hai dusu mein
2: JNU mein
0: aur dusu mein more than 60,000 vote padte hain to usne kaha former president ne mujhse kaha usne kaha hum log jante hain lekin hamari suni nahi gayi humne कहा क्या करना चाहिए लेकिन कन्हैया कुमार ने बिल्कुल नहीं सुनी और पंजाब में जो हारी है कांग्रेस स्टूडेंट में उसमें
1: पहले पंजाब इलेक्शन में हारे और बाय द वे ड्यूरिंग द दूसरे इलेक्शन द ABVP's पंजाब यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट वाज राइट देयर ही वाज देयर एट द फोरफ्रंट ऑफ कैंपेनिंग सो दे गॉट हिम फ्रॉम हियर
3: अगेन देयर आर टू वेज टू लुक एट दिस पदम जाओ वन आई मीन इफ यू आर सेइंग दैट इज दिस अ लार्जर रिफ्लेक्शन ऑफ अ नेशनल मूड देयर हैव बीन इनफ इंस्टेंसेस इन द पास्ट वेयर द पार्टी इन पावर एट द सेंटर whether it was the Congress or the BJP, their student wings have gone on to lose the elections of students. 2004 is a great example in point where the BJP lost the election. 2009 is another case where a different party at the center was winning the election in comparison to when it came to the DUSU elections. I think specifically in this election, what stands out to me is very clear. Rahul Gandhi has to stop making these experiments with the Congress. As long as he considers the Congress party to be a laboratory of carrying out these political experiments, this is what you will get.
1: But 2003...
3: Why is Kanhaiya Kumar? Tell me, what is it about Kanhaiya Kumar other than that great nara which you and I both covered when he was in JNU? Awaaz do hum ek hain. Right? Leke lehenge, leke rehenge. Kya leke rehenge? Azadi. Now, the high of that slogan to now in 2026, if Kanhaiya Kumar has been empowered in the Congress party to this degree where he can tell Sachin Pilot as Samir is saying, I think the lesser
1: said about the state of affairs. But 2003, the NSUI had won a majority of the seats in DUSU, and then they came to power at the center. 2013, ABVP won a majority of seats in DUSU, and they came to power. So which is why the BJP is so happy. They are seeing this as an indication of
4: things. Padmaja, agar abhi ulta result aata, ki teen NSUI, ek independent, to kya baat ho rahi hoti desh mein? Kya discourse chal raha tha? खत्म हो गया जी,
0: बिल्कुल बिल्कुल
4: सब फिनिश है। 2029 का रिजल्ट आ गया, सब डिसाइड हो गया है 2029 में क्या होने वाला है। जिस दिन राहुल गांधी इंदौर में छात्रों की गूंज कर रहे हैं, उस दिन दूसरों के वोटों की गिनती हो रही है और जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है। खबर तो ये भी आ रही, विनोद जी बताएंगे कि राहुल गांधी ने तुरंत मंच से उतर के जानकारी ली कि क्या रिजल्ट आया, फिर फोन करके अपनी नाराजगी व्यक्त की, कहा कि मुझे रिपोर्ट दीजिए, ये सब बातें भी आई हैं। लेकिन आप ये बताइए कि एक तरफ बीजेपी आरएसएस का जो छात्र संगठन एबीवीपी, वो 3 सीटें जीत रहा है और वहां पर राहुल गांधी दूसरी तरफ ये कर रहे हैं। नहीं, आप इससे क्या पता लगता है कि जो जेन जी को लेकर के माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है कि सरकार से नाराजगी है, ये जनरेशन वो जिसने कि बीजेपी की सरकार के अलावा कोई सरकार अभी तक देखी नहीं है, उसके पास कंपेयर करने के लिए मोदी 1.0 से मोदी
1: 3.0 की है। दिस इज ओनली अबाउट मनी पावर, ये लोग सब लंबोर्गिनी में घूमते हैं। बाय द वे आई वांट टू शो यू अ फ्यू विजुअल्स। लंबोर्गिनी में सब लोग, लंबोर्गिनी डिफेंडर, एनएसयूआई, what have you, everyone was going around in Lamborghinis. I mean, seriously, I have not seen an election campaign like this. Look at this. Even Dipanshu Shokin, some of the cars which were campaigning for Dipanshu Shokin, this new age campaign that we saw here, some pretty big cars there for all. Ek tractor bhi tha, but kuch badi badi gaadiyan bhi thi.
0: Shokin ne jo nange par campaign kiya,
1: haan, unhone kaha ki jab tak Satya Niketan ke liye usme justice nahi
4: hoga. Uska background bhi bahut humble hai.
0: Congress mein
1: DTC conductor,
0: Congress mein debate chal rahi hai iske baad ki Congress ye keh rahi hai ki BJP mein log outsiders aate hain lekin sangathan ki zimmedari inko nahi di jati hai. Wo sarkar pe ban jayenge, mukhyamantri ban jayenge. जैसे हेमंत विश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर बन गए, बट कभी बीजेपी असम के अध्यक्ष नहीं बने, शुभेंद्र अधिकारी बंगाल के अध्यक्ष नहीं बने, चीफ मिनिस्टर बन गए। संगठन वो अपने ही ओरिजिनल जो आइडियोलॉजिकल जो लोग हैं उनको देती है।
1: नहीं, संदीप पाठक को दिया उन्होंने संगठन,
4: मनोज तिवारी को यहाँ पर बनाया,
1: संदीप पाठक को बना दिया उन्होंने सेक्रेटरी,
4: संदीप पाठक को उन्होंने सेक्रेटरी बनाया है।
0: लीडिंग
1: ज्यादातर
0: लीडिंग रोल की बात हो रही, जैसे अब कन्हैया को इंचार्ज बना दिया, पूरा माई बाप कर दिया, वहां कंट्रोल भी तो रहता है। मनोज तिवारी अपने मन से कुछ थोड़ी कर सकते हैं क्या? मनोज तिवारी की हैसियत थी कि पीयूष गोयल फोन करें या कोई करे और कहेंगे नहीं करेंगे, जैसे कन्हैया कुमार ने सचिन पायलट को किया, ये नहीं कर सकते थे ना।
1: और वैसे तो भी जो, है ना? जो वीर चतरथ की बात हो रही है, मनीष चतरथ क्या है, वो रहेंगे क्योंकि मेनी पीपल आर बेइंग फॉर हिज हेड आल्सो, सेइंग कि उनको हटाया जाए।
0: इसकी भी मिसहैंडलिंग हो रही है, लोग ये कह रहे हैं, मैं तो बहुत बात की कि अगर मनीष चतरथ को समझा दिया जाता ढंग से कि भाई देखो आपका बेटा भी नया आया है, उसको अगले साल दे देंगे, इस बार शौकीन को देने, तो शायद वो मान जाते। उनसे किसी ने बात ही नहीं की।
1: तो इंदिरा भवन के इंचार्ज हैं, ऑफिस इंचार्ज,
0: हाँ ऑफिस इंचार्ज इंदिरा भवन के, और कहा जाता है कि प्रियंका गांधी के काफी क्लोज हैं वो, तो इसलिए भी उनका एक वेट है। लेकिन माना जाता है एक शरीफ आदमी, भले आदमी अगर वो कन्विंस किया जाता पार्टी की, कन्हैया कुमारी कन्विंस करते या किसी वेणुगोपाल कोई बात करे तो मान जाते।
3: बट इफ आई मेक फ्रैंकली दिस ऐड, इफ अखिलेश'स पॉइंट इज दैट, यू नो, इट्स बीन स्पोकन अबाउट एक्सटेंसिवली दैट इफ एनएसयूआई वुड हैव वन, देन इट वुड हैव मेंट, ओह इट्स अ बिग वोट अगेंस्ट द बीजेपी। माय पॉइंट इज, वेल द एबीवीपी इज डन वेल इन पंजाब, राइट? इज अखिलेश गोइंग टू से that ABVP, because ABVP has done well in Punjab, the BJP conversely will do very well in the Punjab.
4: नहीं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का मामला different है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को आप पंजाब से जोड़ के नहीं देख सकते, इससे बड़ा बिल्कुल clarity है, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा बाहर के राज्यों के बच्चे पढ़ते हैं, ये नहीं कि वो वहाँ पे पंजाब के ज़्यादा करके लोग आ रहे हैं, तो इसलिए उस रिजल्ट को पंजाब से जोड़ना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन उसमें एक इंडिकेशन मिला है कि अकाली दल का जो छात्र संगठन था उसने सपोर्ट कर दिया एबीवीपी का वहाँ पर इलेक्शन में, तो वो एक इंडिकेशन दे रहा है कि शायद आगे जाके इनका
1: आगे जाके अलायंस हो
0: जाएगा।
2: चंडीगढ़ में बीजेपी सांसद जीत रही थी, लेकिन पंजाब में जीत पाती, चंडीगढ़ में कॉर्पोरेशन बीजेपी बना रही
4: है। अगर अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस नहीं होता, मनीष तिवारी फिर जीत पाते क्या?
0: एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि आसाम में अभी बीजेपी जीती है बहुत थंपिंग मेजोरिटी से, और डिब्रूगढ़ में हार गई स्टूडेंट इलेक्शन
3: में। डिब्रूगढ़
4: देखो इसका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का हो गया, राजस्थान के लोकल बॉडी के इलेक्शन हो गए और दूसरों को रिजल्ट आ गए। तीनों जगह आप रिजल्ट क्या बता रहे हैं आपको कि जो बात की जा रही है कि देश में माहौल बन रहा है, जैसे नाराज है ये
1: छात्रों की गूंज। आयरोनिकली ऑन द डे व्हेन द डूसू रिजल्ट्स केम आउट विद इन एन आवर ऑफ दैट अबाउट

0: 30 the results came, and around 6:30, 7 o'clock, Rahul Gandhi addressed the fifth edition of Chhatro Ki Goonj. This time it was in Indore. Now, basically, he made the point at that rally that this system is being run by 5 to 6 people, and this system does not want students, it only wants Andhbhakts. His logic was that students are inconvenient, they ask questions, and that is why the system wants the unquestioning loyalty of Andhbhakts. Now, the political attacks were understandable, but what seems to have got under the BJP skin is a little comedy routine that was woven into the program.
1: और बताइए,
2: हाँ,
1: और बताइए थोड़ा।
2: माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
1: और बताइए,
2: हाँ,
1: और बताइए थोड़ा।
2: माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
3: बुजुर्ग माताजी को चेयर दे दीजिए भाई, ये बुजुर्ग माताजी को वो चेयर दीजिए। एक कुर्सी दे दीजिए माता जी को। हाँ माँ बैठिए, माँ बैठिए, आप बैठिए, बस आपका आशीर्वाद मिल गया मुझे।
4: सुर्खियों में बने रहने के लिए बुजुर्ग माँ पर एक और प्रधानमंत्री उनको कुर्सी देने की बात करते हैं, उनका ध्यान रखने की बात करते हैं, तो दूसरी ओर राहुल गांधी के मंच पर एक बुजुर्ग महिला को, एक माँ पर जिस तरह का तंज और टिप्पणी कसी जाती है वो कांग्रेस के संस्कारों को दिखाता है।
5: राहुल गांधी जी ने तो प्रधानमंत्री छोड़ दिए, किसी की माँ का जिक्र नहीं किया, और जब बड़ी बात करोगे तो फिर खोल के रख दूंगा, किसने राहुल गांधी की मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में किया था। बात चलेगी तो मैं बता दूंगा, सच तरूर की गर्लफ्रेंड 60 करोड़ की किस मोदी ने कहा था।
0: समीर जी, कांग्रेस कह रही है इसमें क्या बुरा है, ये तो पॉलिटिकल सटायर है।
6: नहीं, मुझे लगता है गलत है राहुल गांधी को इस बात को। मुझे लगता है कि प्रोग्राम होने के बाद जब राहुल गांधी को रियलाइज होना चाहिए था कि जिस तरीके से वो फूहड़ कॉमेडी की गई थी, वो उसके लिए राहुल गांधी को माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। देखिए, इंदौर में कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, भीड़ बहुत अच्छी राहुल गांधी की आई। इंदौर में 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी का कॉरपोरेशन है, 3 दशक से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, कांग्रेस का कोई बहुत ग्राउंड मालवा में नहीं है। उसके बाद इतनी भीड़ इकट्ठी होना राहुल गांधी की, उसमें ये एक उपलब्धि मैं मानता हूँ कि वहाँ पर इतने स्टूडेंट्स आए, लेकिन उस टेम्पो को राहुल गांधी
0: तो मतलब मूड उनके फेवर में था वहाँ पे। अब हम क्या कह रहे हैं कि इंदौर में मूड था राहुल गांधी का,
6: जैसे भी आया हो यूथ बड़ी संख्या में आया, जहाँ पर आपका ग्राउंड नहीं है, जहाँ की आपकी सरकार नहीं है,
0: बीजेपी के लिए सारे एनएसयूआई वाले लोग बुलाए हुए हैं वहाँ पे, स्टेज पे एनएसयूआई के लोग थे।
6: नहीं, मुझे इतना बड़ा भारतीय, अगर कांग्रेस का इतना बड़ा संगठन होता तो कांग्रेस इतनी बुरे मालवा के अंदर प्रदर्शन नहीं करती। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स आए होंगे, मैं इस बात को मानता हूँ। और वैसे भी अगर देखें तो राहुल गांधी का 5वां प्रोग्राम था, पहला कोटा में हुआ, उसके बाद उन्होंने देहरादून में किया शायद, उसके बाद उन्होंने प्रयागराज में और पूना में किया। कोई भी, मुझे लगता है राहुल गांधी का प्रोग्राम ऐसा नहीं रहा जिसमें किसी ना किसी तरह की कंट्रोवर्सी ना हुई हो। राहुल गांधी या तो अपने स्पीच में कंट्रोवर्सी की या इस तरह से की। राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए था। राहुल छात्रों से बात करने के, आप छात्रों की बात करते हैं, इस तरीके से बात करके मुझे लगता है एक अच्छा मैसेज राहुल गांधी।
0: तो अखिलेश जी, सेम डे 2 थिंग्स हैपेंड, डूसू रिजल्ट्स एंड दिस। समीर जी इज सेइंग बहुत हेल्दी टर्नआउट था, आप किसको माने हम, मूड राहुल गांधी का है या डूसू का है?
7: देखिए, तमाम तरह की कोशिशें हुई, कांग्रेस कहती रही कि काफी अड़ंगे लगाए गए, एमपी की जो बीजेपी सरकार उसकी ओर से पहले परमिशन को लेकर के बवाल काटा गया, उसके बाद फिर ये कहा गया कि जो बच्चे जा रहे हैं उनको हॉस्टल्स में पत्र लिख दिया गया कि आप जाएं तो उनकी लिस्ट बनाइए, उनसे अंडरटेकिंग लीजिए, कीजिए वो कीजिए। तो कांग्रेस का ये कहना है कि काफ़ी रोड़े अटकाए गए, इसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, तो इस लिहाज से आप देखिए तो मैं समीर जी की बात से सहमत हूँ। लेकिन आप मैसेज क्या दे रहे हैं? क्या आपका गोल ये है कि आपको सोशल मीडिया पर वायरल होना है, कि आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना है, या आपको देश को लीड करना है? ये दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर है। तो कंटेंट क्रिएशन तो हमारे देश में बहुत बड़ी एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, बहुत लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो एज ए पॉलिटिशियन आपको क्या करना है, आपको एक मैसेज देना है?
0: एज ए पॉलिटिशियन ही सेइंग दैट योर फॉरेन पॉलिसी इज ओनली अबाउट दिस हग प्लॉमिस,
7: व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? अगर आप किसी को हक कर रहे हो तो उसमें गलत क्या है? कोई गलत है क्या? किसी ने गलत बोला? सामने लोगों ने, किसी ने ऑब्जेक्शन किया क्या कि हमें क्यों हक कर रहे हो? किसी ने हक करने से मना किया क्या? ये अपने अपने तरीके होते हैं, मैनरिज्म होता है पॉलिटिक्स में। कोई अपने, कोई हाथ मिलाता है, कोई गले मिलता है, कोई किसी तरह से मिलता है, वो सबके अपने अपने तरीके हैं, ये उनका अपना तरीका है, और उससे कोई नुकसान हो रहा है क्या?
8: See, there are two things which are very clear. Rahul Gandhi's basis, the very edifice of Rahul Gandhi's politics today is to hit out directly against Narendra Modi at any cost. It, even when he wants to criticize, let's say he wants to criticize his foreign policy, One is that he starts getting into the academic side.

0: राज ठाकरे की पॉलिटिक्स तो ऐसी है, मतलब राज ठाकरे ऐसी ही राजनीति करते हैं। और राज ठाकरे पॉलिटिकली कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, महाराष्ट्र नरेंद्र सिन्हा के पास एक एमएलए नहीं है, एक कॉरपोरेटर नहीं है आपके पास, लेकिन राज ठाकरे के पास उसके अंधभक्त जिसे कहते हैं ना, मतलब उसके बहुत लॉयल लोगों की बहुत बड़ी फौज है, वो हर शहर में मिलेगी।
1: भले ही व्हाई इजंट द स्टेट गवर्नमेंट एक्टिंग अगेंस्ट दीस पीपल, दीस पीपल आर देन गिविंग बाइट सेइंग थिंग्स लाइक यही है मारा एमएनएस स्टाइल है, ये क्या एमएनएस स्टाइल है, व्हाई दीस पीपल गिविंग,
0: कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं ये पहली बार नहीं हुआ है। अब अगर आप देखेंगे इंसिडेंट्स तो राज ठाकरे जब से शिवसेना में युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे तब से लेकर अभी तक आप देखेंगे तो ऐसे कम से कम 500 इंसिडेंट्स महाराष्ट्र के अंदर हुए होंगे। लेकिन राज ठाकरे पर चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे देवेंद्र फडणवीस की सरकार रही हो, कोई सरकार राज ठाकरे पर कभी कार्रवाई नहीं करेगी। राज ठाकरे तो रेलवे के एग्जामिनर जब उत्तर भारतीय लोग आते थे महाराष्ट्र ने कितना उनको पीटा, क्या कभी राज ठाकरे को अरेस्ट किया गया?
1: आप हमेशा कहते हैं कि मराठियों का मुद्दा उठाते हैं पर मराठी अस्मिता के ऊपर राज ठाकरे, यानी कि राज ठाकरे पर अगर कोई मराठी बोलेगा तो उसको इस तरीके से ह्यूमिलेट किया जाएगा।
2: पर्सनल अस्मिता ऊपर है मराठी अस्मिता से।
1: हाँ, सबसे पहले एमएनएस अस्मिता, फिर मराठी अस्मिता।
3: अगर राज्य सरकार एक्शन नहीं लेती है तो माना जाएगा कि मौन सहमति आपकी, एक तरह से आप उसको एनकरेज कर रहे हो, एंडोर्स कर रहे हो, ये आपको एक्शन लेना ही चाहिए इस तरह के मामले में। ये तो आपने देखा कि जो मराठी वाले मुद्दे पे हुआ था कि टैक्सी ड्राइवर को मराठी आनी चाहिए, उस मुद्दे को लेकर कितना ज्यादा तूल दिया गया था, बाकी जबकि जानते हैं सबके मुंबई में सब तरह के बाहर के सब तरह के लोग आते हैं, सबको रहने का अधिकार वहां पर है। इस तरह से आप अगर अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश करेंगे,
1: बीएमसी इलेक्शन के पहले उद्धव ठाकरे एंड राज ठाकरे हैड शेयर्ड अ स्टेज, उद्धव ठाकरे इज साइलेंट टुडे, कांग्रेस इज साइलेंट टुडे, बीजेपी इज साइलेंट टुडे, व्हाई?
4: आई विल टेल यू व्हाई। यू सी इन द प्रीवियस सेगमेंट यू आर आस्किंग अबाउट राहुल गांधी रेजिंग दिस क्वेश्चन, समबडी सेड दैट इज ही अ कंटेंट क्रिएटर। नाउ प्लीज अप्रिशिएट इन इंडियन पॉलिटिक्स फॉर यू टू रिमेन रेलेवेंट, फॉर यू टू हैव दिस this aura that you're relevant and people are going to take you seriously, you have to consistently be top of the real charts. What
3: nobody did
4: Rahul Gandhi is doing in Indore with the stand-up comedian, and what Raj Thackeray supporters are doing here is exactly that.
3: It doesn't just translate into votes.
4: It's that's a very clearly.
3: Don't support such kind of antics.
4: See,
1: but they're allowed to go free. I mean, there must be some support somewhere, right? That's that even the government is scared of taking action.
4: I'm trying to explain to you that the way Indian politics over the last few years has now evolved or degraded, whichever way, whichever side of the political divide you want to look at, is that you have to remain politically relevant, you want to be big on Instagram. You want to be big on social media. All this that you're seeing is a direct byproduct of this desire to be big on Instagram.
2: Well, ये तो वही है जैसे नक्सली करते थे जंगलों में पकड़ करके जो है।
1: ये जंगल राज है, कैंगरू को टांग में चला रखा है।
0: प्रेसिडेंट का बयान है कि अभी गणपति बैठे हुए इसलिए हमने उसको बहुत छोटा प्रसाद दिया है। अगर गणपति नहीं होते तो वो कल्पना नहीं कर सकता उसके साथ क्या करते हैं।
1: And imagine if people like this are allowed to roam free without the fear of consequences, what does it say about the rule of law? Let's turn our focus now to Uttar Pradesh, which is bristling for the mother of all battles. Of course, the rule of law, law and order is going to be a very big issue there as well. Today, BJP President Nitin Naveen started a two-day visit to Western UP to take stock of the election preparation. Dozens of bulldozers lined up at a toll plaza in Meerut to welcome the BJP chief. Meanwhile, is the opposition now close to stitching an alliance in UP, and could the AIMIM be the sutradhar for it? On Sunday, Asaduddin Owaisi asked all like-minded parties in UP to join hands to prevent a third term for the BJP, a sentiment that was then echoed by Congress's Imran Masood.
5: देखिए अखिलेश जी कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं उसके कोई मायने नहीं है। अगर गठबंधन करना है तो उसे फाइनल करने और नहीं करना है तो फिर हम भी अपनी तैयारी के अंदर जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के बिना अब माहौल नहीं है, कहीं भी पूरे देश में नहीं है, तो कांग्रेस के बिना चलने की भी मैं सोचेंगे चल सकते हैं, क्योंकि अगर आप कांग्रेस के बिना जा रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कहीं ना कहीं भाजपा को हराना नहीं है। इनसे लड़ाई कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के साथ ही हो सकती है और कांग्रेस ही लड़ सकती है। राहुल गांधी का नेतृत्व इनसे पार पा सकता है।
6: हम लोग सूची बनाएंगे और सूची आपके सामने जारी करेंगे और इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत करेंगे। ये ढूंढ ढूंढ करके एक भी पीडीए समाज का अधिकारी ना बैठ जाए चुनाव को देखने के लिए, चुनावी संबंधित कार्रवाई कराने के लिए, प्रशासनिक कार्रवाई के लिए ढूंढ ढूंढ करके पीडीए समाज के लोग हटाया जा रहा है। और ये बात अगर गलत हो तो आप बता दीजिए।
7: हम भी चाहते हैं कि तीसरी मर्तबा उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ना बने, और अगर कोई नहीं चाहता है बीजेपी ना बने, नहीं चाहता माने जो पॉलिटिकल पार्टी हो, जो नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो ठीक है आप हमसे बात करिए, हम भी आपके साथ सत्ता में बीजेपी को रोकने से तैयार हैं, हम साथ देंगे आपका।
8: कुछ पार्टी से आप बात
7: नहीं, आप जो बातचीत हो रही है अगर कामयाब हो गई तो फिर आपके सामने रखेंगे, मगर ये समझने की जरूरत है कि बीजेपी को आप अकेले नहीं रोक पाएंगे।
9: दो अक्टूबर तक बताएंगे आपको।
1: Okay, so Bhupen, what's happening in Uttar Pradesh with this seat sharing? Imran Masood is gunning for 150.
4: Well, Imran Masood may be thinking that, you know, the Congress party is right up there or whatever. But I think the way the apple cart exists as of now, from what I gather both from Akhilesh's camp and the Congress camp, there is a realization that this time there is a genuine chance of a very good fight against Yogi Adityanath. So therefore, between the Congress and the Samajwadi party, prospect of an alliance, very, very bright. But as both of us know, there are enough people in the Congress party who will keep, you know, hedging it, who will keep saying, oh, we become now too big. Look at what had happened in Lok Sabha elections. And you remember, I myself had made a statement a few weeks back on one of your shows where I said that if the Congress was really serious, they had to think in terms of something out of box. I anticipate an alliance between the Samajwadi party and the Congress could certainly take place. When? I do not know, but I think it's certainly a work in progress.
1: Could the Congress go with the AIMIM instead?
4: I don't think so. You know, I mean, Congress plus AIMIM in the rest of the country. Can you imagine if Rahul Gandhi, everywhere he goes, he has to stand in defense of what Akbaruddin Owaisi may have said somewhere, you know, 10 years back. Now, that's a view which is being expressed by Imran Masood, and I'm really surprised that Mr. Masood is you know, maybe speaking as part of some collaborative arrangement against Asaduddin Owaisi. But quick number for you. You know, I checked in 2017 assembly elections and in 2022 assembly elections. Mr. Owaisi's party in UP got a sum total of 0.02% votes in 17, got a sum total of 0.04% votes in 2022. But in at least four constituencies, in Deoband, in Behraich area, The votes which were polled by Mr. Owaisi certainly ended up becoming a factor. Now, is the Congress party and the Samajwadi party going into such finer details to bring him on board and then carry the baggage the rest of the country? I'm not so sure.
1: Sameer ji?
0: Look, Owaisi sahab ne 2 October ki date diye. So, Gandhi ji ke birth anniversary hai, 2 October ki date diye. So, Congress bhi Samajwadi party ko 31 October ki Indira Gandhi ki death anniversary ki date de de. Ki 31 tak ki aap sirf decide kar lijiye aapko kya karna hai, kya nahi karna hai. To mujhe lagta hai OBC ke kaan mujhe lagta hai.
10: To 23 November de de ki Netaji ki jo birthday hai.
0: Bilkul.
10: Samajwadi party.
1: Ya 14 November de de ki Jawaharlal Nehru ji ki birthday hai.
10: Samajwadi party to Nehru ji.
1: It's an age of birthday.
0: OBC ke liye bahut mushkil hai. Akhilesh yadav ke liye bahut mushkil hai is baar Uttar Pradesh ka chunav. Dekhiye ek taraf Congress se aapka seat sharing ke leke baatcheet nahi ho pa rahi hai. Wahan par OBC इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव अगर देखेंगे 2024 का, तो ओबीसी ने 95 सीटों पे उम्मीदवार ओवरऑल मतलब उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सब उसके हार गए थे। वोट 4.5 लाख वोट ओबीसी को मिले थे अगर आप देखेंगे तो। ओबीसी इस बार तैयारी बहुत बेहतर कर रहे हैं और बिहार में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया था, 5 सीटें जीती थी। तो अखिलेश यादव ओबीसी के साथ गठबंधन करेंगे, मुझे इसकी संभावना कहीं नजर नहीं आती। अखिलेश यादव पूरा मुस्लिम वोट अपने पास रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या कांग्रेस गठबंधन के स्तर पर करेगी? 6 लोकसभा सीटें, कितने सीटें अखिलेश यादव कांग्रेस को देंगे? कांग्रेस कह रही है कि मिनिमम 3 डिजिट में हमको सीटें चाहिए, 100-105 सीटें। क्या अखिलेश यादव उतना देने को तैयार होंगे?
1: व्हाट्स हैपनिंग इन द बीजेपी? द फैक्ट दैट नितिन नबीन आल्सो डिसाइडेड टू गो टू वेस्टर्न यूपी, बुलडोजर वहां पर आ रहे हैं उनके स्वागत में। Also, Mohammad Shami had a meeting with Jayant Chaudhary.
11: हो सकता है कि कुछ हो, कुछ खिचड़ी पक रही हो, लेकिन ये तय है कि वेस्टर्न यूपी में बीजेपी का अलायंस आरएलडी के साथ होगा। पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ था आरएलडी का।
1: नहीं, मोहम्मद शमी चुनाव लड़ रहे हैं क्या अमरोहा?
11: हो सकता है, मतलब मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर कुछ होता है, इसके बीच में कुछ खिचड़ी पकती हो। लेकिन जो आज ये दौरा हुआ है शुरू वेस्टर्न यूपी का नितिन नवीन का, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बीजेपी वेस्टर्न यूपी को काफी अपने लिए लकी मानती है। 2014 में, इसके बाद 17 में, उसके बाद 19 में, 22 में, हर बार शुरुआत जो बीजेपी कैंपेन की वहीं से हुई है।
1: अदिति सिंह क्या आ रही हैं कांग्रेस में?
11: मेघालय से मान गई हैं।
1: कांग्रेस में आने के लिए मान
11: गई? बीजेपी से, बीजेपी जो नाराजगी थी
1: बीजेपी ने मना लिया,
11: मेघालय से हो गई है, मना लिया गया उनको। बीजेपी अब इस पर भी काम कर रही है। विनोद तावड़े को जब से प्रभारी बनाया गया है, महासचिव प्रभारी, तो वो इस पर काम करें कि जो जो लोग नाराज दिख रहे हैं, जिसमें कि राजभर भी थे, सबसे बातचीत हो रही है 1-to-1।
1: और कौन नाराज है?
11: काफी लंबी लिस्ट
1: जैसे
4: नाराजगी के दो पहलू होते हैं। एक ये कि आपका टिकट कट रहा है क्या, अगर आपका टिकट कट रहा है तो आप नाराज हो सकते हैं। एक ये कि आपके जो समर्थक हैं उनको टिकट दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, आप नाराज हो सकते हैं।
2: अभी तो अपने टिकट की बात है।
4: मैं आपको बता दूं, यू वर टॉकिंग अबाउट जयंत चौधरी एंड आई हैव बीन लिसनिंग टू सम स्टेटमेंट ऑफ जयंत चौधरी। चिराग पासवान एंड जयंत चौधरी आर टू ऑफ दीज ग्रेट लीडर्स इन अ कंट्री हु बिफोर एवरी इलेक्शन end up finding some fault or the other with the central government, right? And it's nothing else but just an attempt to ensure that they get the maximum possible support, maximum possible what they can get, whatever they can extract. So I think the alliance is there for sure. The BJP's biggest challenge is going to be, it's now a party which has been in power since 2014 at the center and 2017 at the assembly
10: state
4: level. So it's a very, very long spell. How are you going to get rid of this so-called anti-incumbency against MLAs?
11: दो तीन बातें जोड़ना चाहूँगा. एक तो इमरान मसूद का जो बयान आया है, ये खुद से दिया है या दिलवाया गया है? इस पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस देखिए अलायंस तो होगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस तो होना, ये बात तय. आपने जब लोकसभा चुनाव लड़ा, सफलता हासिल की, तो इसमें क्यों ना हो? ये हो सकता है कि अपने कुछ कैंडिडेट समाजवादी पार्टी उधार दे दें, उन सीटों की संख्या बढ़ा दें, ये एक संभव है. दूसरा ओबीसी का आपने सुना, ओबीसी भी अलायंस करके चुनाव में जाएंगे. अब वो चंद्रशेखर की पार्टी के साथ होता है, या जो सोनलाल पटेल की दूसरा फैक्शन है
10: पल्लवी पटेल
11: के अला पल्ली वाला, उसके साथ होता है, ये भी एक है. लेकिन वो ऑप्शन है, वो लड़ेंगे, और निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ सवाल ही पैदा नहीं होता. ओबीसी के साथ कांग्रेस कभी अलायंस नहीं करेगी. किसी को क्यों पलटने का मौका देना, अपना वोट क्यों ट्रांसफर करवाने देना, वो तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी.
1: ओके,
10: अब यूपी में थोड़ा हमसे भी बात कर लीजिए
1: जी.
10: कि मैं उसी राज्य का हूँ,
11: हम भी रहते हैं वहाँ पर.
10: आप रहते हैं, हम उसी राज्य में पैदा हुए, वही की. देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति बड़ी विचित्र है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन्होंने 2014 से कहा, 1991 से बीजेपी के लिए लाभदायक रहा. पहली सरकार जो उत्तर प्रदेश की बनी थी कल्याण सिंह की, वो वेस्टर्न यूपी से ही बनी थी. सबसे ज़्यादा विधायक यहीं जीत के आए थे. जयंत चौधरी और बीजेपी का अलायंस इस बार इंटैक्ट रहेगा. हाँ. क्योंकि जयंत चौधरी ऐड ऑन कर रहे हैं बीजेपी को. जो पिछली बार 2022 में माइनस हुआ था बीजेपी का वोट, वो इस बार ऐड ऑन होगा. इसलिए जयंत चौधरी और वो चवन्नी वाला जो बयान वगैरह है, वो भी हेल्प कर रहा है. बीजेपी भी उसको काफ़ी वो कर.
11: केसी त्यागी पहुँच गए.
10: केसी त्यागी पहुँच गए और भी कई लोग पहुँच गए. तो उसमें तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है. जैसे चिराग पासवान का अलायंस बिहार में बीजेपी के साथ, प्रॉब्लम है ओवैसी साहब के लेके. ओवैसी साहब अगर बीजेपी, अगर ओवैसी साहब चंद्रशेखर से अलायंस करके या बीएसपी से अलायंस करके सब सीटों पर लड़ते हैं, तो दिक्कत है इंडिया गठबंधन के लिए. अगर वो इसमें आ जाते हैं तो बीजेपी के लिए और फेवरेबल पोजीशन हो जाएगी. फिर वो अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान चला चला करके पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है उसको बिल्कुल एक्सट्रीम पर पहुँचा देगी. और योगी जी उस पर सामने है,
11: बुलडोजर दिखे
1: रहा है, बोलने में दिखे रहेगी.
11: आज तो बुलडोजर दिखे ही
10: होगा. वो तो हनुमानगढ़ी से शुरू होंगे, किसी नियो में नवाज से लेकर के. तो ये कैच 22 सिचुएशन है. दूसरी लास्ट में कांग्रेस और एसपी का अलायंस, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों को मालूम है कि अलग अलग लड़ेंगे अगर तो दोनों ही धराशायी.
4: थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होगा.
1: क्वेश्चन आई थिंक नाउ ऑफ हु इज गोइंग टू ब्लिंक फर्स्ट. वी आर कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम फॉर टुडे, बट इट्स ओनली हीटिंग अप. एंड एज ऑलवेज, लाइक आई सेड ऑन एनडीटीवी हियर फॉर अस, it is always going to be politics zindabad. Thanks very much, gentlemen, for having joined us with your wisdom, and thanks so much for watching.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, देश का टायर जेके टायर।

0: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
1: Hindustan mile, Hindustan se.
2: देश का टायर जेके टायर
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: said that the family wants the complete truth to emerge. She has demanded all CCTV footage, arguing that the case should not be limited to one professor, alleging that several people may also have been involved. Take a listen to all the reactions coming in as my colleague Sujata Dwivedi spoke to Sahil's wingmate in IIT Bombay as well.
1: Sahil ne maa baap ko bola tha ki mummy yahan pe thoda bachcho par anyay karte hain, jatiwad karte hain. Aaj wo college mein agar Sahil ke aaj bhi फेवर में न्याय नहीं मिल रहा होगा तो आज भी साहिल पर अन्याय ही हो रहा. हमारा पूरा भरोसा है कि ये चौकशी सीबीआई करे.
2: उस शाम को हमें सिर्फ कॉल आया प्रोफेसर का
3: जी,
2: अचानक से कॉल आया सर, रात 8 बजे की साहिल ने सुसाइड किया है ऐसा करके कॉल आया. इतने दिन होने के बाद उस प्रोफेसर ने माफी मांगी. प्रोफेसर बता रहे कि साहिल ने कुछ गलती नहीं की, फिर भी साहिल के साथ ऐसा क्यों हो गया. सर मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि मेरे साहिल को न्याय मिलना चाहिए. अगर उसकी कुछ गलती नहीं थी फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हो गया. आज तक की ये पहली घटना नहीं है सर, और जो भी घटनाएं हुई है इस घटना के बारे में आज तक कोई इंक्वायरी नहीं बैठी गई, कुछ ही हुआ नहीं. लेकिन हमने जब ये बोला तो हमें हम पर भी वो प्रेशर डाल रहे हैं.
4: क्योंकि विंगमेट थे आप लोग, दूसरे को जानते थे, एग्जाम में कॉपी किया गया, इसको लेकर आपको उसने क्या बताया?
5: उसने किसी से भी कुछ बात नहीं की, यही बात है, सब स्पेक्यूलेशन है. कॉपी करने के बाद जब उसको बाहर लेके गए उसके बाद उसने किसी से बात नहीं की, तो किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है. आई डोंट थिंक, जितना मैंने फर्स्ट ईयर में उसे देखा, कि हमने से किसी में या उसके दोस्तों में से किसी ने उसके कास्ट पर कभी भी रिमार्क किया हो. आईआईटी बॉम्बे में ऐसा कल्चर है ही नहीं कि कोई किसी के कास्ट पर रिमार्क करता है, क्योंकि हम सारे जेई देव स्टूडेंट, हमें आइडिया है कि ये सब नहीं करना होता है, हम इतने एजुकेटेड हैं. एंड मुझे नहीं पता ये एंगल कहाँ से आया. डी ने कि ये सस्पेंशन था हमारा फर्स्ट पॉइंट, उसका भी रेजिग्नेशन नहीं था, क्योंकि जब तक वो गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाते हम उनका रेजिग्नेशन नहीं मांग रहे.
6: Accountability does not necessarily mean an online apology, first of all, because everybody apologizes nowadays. It's a very, you know, trendy thing, right? We need resignations. That's what we need. We need resignation of all the people involved, because like I said, this is not one isolated event. There have been 4 suicides in the past 1 year. This is the second suicide in the past 2 months. जिसमें से 4 suicides में से 3 suicides जो थे वो दलित background के बच्चों के थे. So like I said, this is not an isolated event, right? So we need immediate resignation, क्योंकि accountability हमें वैसे ही मिलेगी. We need resignation, we need a student, independent student body यहाँ पर जो student के behalf पर बोले, you know, to give students some power as well. We need mental health conferences and all of that. We also need compensation for the family, जिन जो उनको भी काफ़ी पुलिस ने परेशान कर रखा है जब से वो यहाँ पर आए हैं. उनका एक अकेला बेटा था, वन ओनली चाइल्ड, राइट? तो वी नीड कॉम्पेंसेशन फॉर द फैमिली.
0: Let's now tell you about what both the sides are saying, the students versus the faculty members. Students claim, first up, they say that they cannot trust the administration's account. And they're also saying that there needs to be an independent probe. Faculty's counterclaim is that professor followed Senate-approved procedures. Second, the students claim independent probe must be done against the professor, Professor Dolla. The faculty's counterclaim is that professor has good service record. There's nothing wrong that he has done. Apart from that, the fourth claim that the students are coming out are that the media reports on the professor are false. So they say that need student welfare reforms. The faculty's counterclaim is that the media reports on the professor are false. Let's now tell you about how IIT Bombay, meanwhile, has completely changed its tone. Earlier, they said, that's what IIT Bombay has said, found using a mobile phone in the exam hall. Then, uploaded the exam question paper on ChatGPT. Then they say no disciplinary action was initiated. Assured it would not affect his career. And we're also telling you here as to how they've changed all their stance right now. Now they're saying inappropriate to have set out or characterized the details. Circumstances also remain under investigation. While earlier they said assured it would not affect his career. So we've seen this back and forth and the tone of how IIT Bombay has been changed.

0: स्पेक्यूलेशन है, बस कॉपी करने के बाद जब उसको बाहर लेके गए उसके बाद उसने किसी से बात नहीं की, तो किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है। आई डोंट थिंक, जितना मैंने फर्स्ट ईयर में उसे देखा, कि हमने से किसी में या उसके दोस्तों में से किसी ने उसके कास्ट पर कभी भी रिमार्क किया हो। IIT बॉम्बे में ऐसा कल्चर है ही नहीं कि कोई किसी के कास्ट पर रिमार्क करता है, क्योंकि हम सारे जेईई देव स्टूडेंट, हमें आइडिया है कि ये सब नहीं करना होता है, हम इतने एजुकेटेड हैं। एंड मुझे नहीं पता ये एंगल कहाँ से आया, डी ने कि ये सस्पेंशन था हमारा फर्स्ट पॉइंट, उसका भी रेजिग्नेशन नहीं था, क्योंकि जब तक वो गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाते हम उनका रेजिग्नेशन नहीं मांग रहे।
1: Accountability does not necessarily mean an online apology, first of all, because everybody apologizes nowadays. It's a very, you know, trendy thing, right? We need resignations. That's what we need. We need resignation of all the people involved, because like I said, this is not one isolated event. There have been 4 suicides in the past 1 year. This is the second suicide in the past 2 months. Jisme se 4 suicides mein se 3 suicides jo the wo Dalit background ke bachcho ke the. So like I said, this is not an isolated event. Right, so we need immediate resignation, क्योंकि accountability हमें वैसे ही मिलेगी। We need resignation, we need a student, independent student body यहाँ पर जो student के behalf पर बोले, you know, to give students some power as well. We need mental health conferences and all of that. We also need compensation for the family, जो उनको भी काफ़ी पुलिस ने परेशान कर रखा है जब से वो यहाँ पर आए हैं। उनका एक अकेला बेटा था, one only child, right? तो we need compensation for the family as well.
2: Let's move on to another shocking case that has come to light, and this is from the state of Bihar, where there have been 3 people who have been arrested for molesting and assaulting a couple in Bihar's Jamui. The 2 youngsters that you see on your screens were harassed by a crowd in what the story was first published at Moral Policing, which was not to say the least. They were stopped while traveling on a scooter, following which the harassment took place. The shocking video showed men touching the girl inappropriately, and she was a minor, and even carrying her away from some distance on road before being stopped by her friend. The youngsters were seen pleading with folded hands in an effort to be left alone, and while they were doing that, the only thing that they witnessed next is being dragged back to the same place. And while all of this is happening, as usual, the politics has erupted between the government and the opposition of the state. The JDU leader, Umesh Kushwaha, has tried to downplay the incident and called it a trivial one, and that keeps happening in the state of Bihar. Rahul Gandhi, meanwhile, has slammed the government over the incident and has demanded action against mob under the POKSO Act. Meanwhile, another Bihar minister, Sunil Kumar, has condemned the incident. But while all of this is happening, the big questions remain, that why is it that the action came after the video went viral?
3: तीन नाबालिग बच्चों को निरुद्ध की गई हैं और इसमें 2 और की इन्वॉल्वमेंट भी पता चला और 2 और हो सकते हैं, तो हम लोग का अभी क्विक एक्शन हुआ था जमुई थाना कांड संख्या 428 भी सेक्शन 74-75 BNSS और 8 और 12 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुई हैं। साथ ही साथ जितना वीडियो वायरल हुआ है, हम लोग टेकडाउन नोटिसेस जारी किया, जिसमें 13 फेसबुक और 12 इंस्टाग्राम का अकाउंट्स और 7 ट्विटर के अकाउंट्स हम लोग के द्वारा टेकडाउन कर लिए।
2: And while this incident has gotten into every Indian and every Indian is expressing outrage, there are political parties that are trying to take away credit and blame the other party. But one thing is for sure, that be it the opposition or the government, nobody for till date has been able to ensure the safety of a woman. But here are some political reactions that came in from the state of Bihar as far as this incident is concerned.
4: क्राइम फ्री पूरी दुनिया नहीं है, छिटपुट घटना होती रहती है और छिटपुट घटनाओं पर सरकार की नज़र है, और इस तरह के कृत्य करने वाले बिहार में बचने वाले नहीं है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पहले भी हुई है, ऐसी घटना करने वाले किसी भी हालत में नहीं बचेंगे।
5: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील हैं, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था, कोई घर से बाहर निकलते थे, किस तरह का बिहार था, क्या हालात था, लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे, ऐसा बिहार था ना। आज तो लोग कम से कम ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है, प्रशासन जल्द से जल्द जो घटना का जो अंजाम दिया है, चाहे 12 से 12 कोई कितना बड़ा कोई अपराधी क्यों नहीं हो, वो जल्द ही पुलिस के कब्जे में आएंगे।
6: घटना की हम तीव्र निंदा करते हैं सरकार की ओर से, और निश्चित रूप से वहाँ के पुलिस पदाधिकारी और प्रशासन के पदाधिकारी इसमें एक उचित और कठोर कदम उठाएंगे। मैं इस जैसे आपसे मीटिंग ख़त्म हो जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ के मैं पुलिस अधीक्षक से भी बात करूँगा जम्मू के, और सुनिश्चित उन्हें कहेंगे कि सुनिश्चित करें कि कोई भी इसके लिए जिम्मेवार हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, उसको चिन्हित करके उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें।
2: Well, the lawlessness is not just seen in the state of Bihar, it's seen in the state of Maharashtra as well, and this time the ones responsible are the political parties themselves. A social media reel criticizing MNS chief Raj Thackeray has triggered a shocking act of public humiliation of an influencer in Pune. The MNS workers allegedly grabbed the Marathi content creator Mahesh Mote, blackened his face and forced him to apologize. And in a video that's now going viral of the incident, the influencer is seen with a slipper placed on his head as he is made to perform sit-ups. He is then forced to bow down before a photograph of Raj Thackeray and apologize. The influencer later posted another video breaking down as he said that his comments were unintentional. He apologized to Raj Thackeray and MNS workers with folded hands and appealed to them to not harass him further. The MNS has described the action as its style of dealing with such incidents in a brazen act to justify what they did.
7: Kerala gele horti mitranno khup chukiche video banavle maafi magitli parat ankin chuk zali hanla shubham dadala bollo mi kharjan to mitranno maharashtra thavun kadhi tumhi raj sahib asu dya kiwa apla manse paksha asu dya kadhi yancha vishayi kay bolu naka ani मित्रांनो, ह्यांनी कुठली मला गुंडगर्दी दादागिरी नाही केली, उलट माझ्यासारख्या वेड्याला माणसानं असं उठायचं काय बी बोलायचं, खरंच चूक झाली मित्रांनो।
8: काल पुण्यात आल्याच्या नंतर आज तो कात्रज मध्ये येणार आहे अशी जवळपास माहिती होती। आज कात्रजच्या उद्यानामध्ये तो जसा आल्याच्या नंतर तातडीने आम्ही सर्व महाराष्ट्र सैनिक एकत्र आलो। एकत्र आल्याच्या नंतर आम्ही त्याला ऑफिसला घेऊन गेलो। आदरणीय राजसाहेब ठाकरे यांच्या फोटो पुढे त्याला आम्ही झोपवलं। त्याला तिथं साहेबांची माफी मागायला सांगितली आणि मनसेच्या स्टाईलने त्याला उत्तर दिलं। त्याला चांगली आम्ही आमच्या भाषेत महाप्रसाद दिला त्याला। त्याचबरोबर त्याला साहेबांची माफी मागायला सांगितली। त्याला काजळाची मिशी काढली। त्याला त्याच्या चप्पल त्याच्या डोक्यावरती ठेवायला सांगितल्या आणि त्याच्या उठाबशा मारायला सांगितल्या।
9: पुणे में एक लड़के का मुंह आप काला करते हैं, चप्पल सर पर उठक बैठक, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक रील बनाया। क्या ये है एमएनएस की स्टाइल, तालिबानी स्टाइल? जो आप महाराष्ट्र का नेता बनना चाहते हैं तो ये गुंडागर्दी करना बंद कीजिए। जो आपकी आलोचना करते हैं, आप उनके प्रति ऐसे प्रस्तुत आते हैं कि गुंडागर्दी ही चलेगा। पुणे पुलिस को एफआईआर दर्ज करना ही चाहिए भारतीय न्याय संहिता के निमित्त, और जो व्यक्ति गुनहगार हैं उनको पकड़ना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हुलिगनिज्म हैज नो प्लेस इन पब्लिक सर्विस।
2: Moving on to some other stories that are making headlines down south, Vijay's London visit and TVK's political activity has drawn sharp attacks from the rival parties. Kia Annamalai has questioned Vijay's London investment outreach, arguing that the Tamil Nadu can attract investment by engaging with industrialists within India. Udayanidhi, meanwhile, has accused Vijay and TVK of blaming the DMK despite being in politics, and also alleged that TVK is attempting to bring AIADMK MLAs into its fold.
10: எனக்கு லண்டனை பத்தி நல்லா தெரியும், அங்க எந்த பணமே கிடையாது, ஒரு சதவீதம் வளர்ச்சி, யூகேவுடைய வளர்ச்சியே ஒரு சதவீதம். அவங்ககிட்ட போய் தமிழ்நாட்டில் பணம் கொடுங்கன்னு கேட்டா அவங்க என்ன பணம் கொடுக்க போறாங்க? அவங்க ஊர்ல போறதே அவங்க பணம். இந்தியால இருந்து போய் டாடா, இந்தியால இருந்து போகக்கூடிய ஜாகுவார், லேண்ட் ரோவர், மஹிந்திரா, இவங்க எல்லாம் தான் யூகேல அதிகப்படியான பணத்தை நாம இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். முதலமைச்சர் என்ன பண்ணணும்னா, சென்னையிலிருந்து எமிரேட்ஸ் விமானத்தை பிடித்து லண்டனுக்கு போவதை விட சென்னையிலிருந்து இண்டிகோ விமானத்தை பிடித்து கோயம்புத்தூருக்கு மதுரைக்கு வரணும். தொழிலதிபர்களை உட்கார வைக்கணும். தமிழ் சமுதாயம் நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும், புரிந்து கொள்ள வேண்டும். லண்டனிலேயே பொருளாதாரம் இல்லைங்க, ஒரு சதவீதம். அதை விட இந்திய நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் பெருசு, நம்ம 4.1 trillion. இதெல்லாம் எப்ப லண்டனுக்கு போனாலே இந்தியா 1 trillion இருந்துச்சு 2010ல், 2008ல அப்ப லண்டன் 3 trillion இருந்துச்சு. அப்ப லண்டனுக்கு போர் சுட்டு போட்டு போனா மிடுக்கா இருக்கும். ஏன்னா நான் வந்து ஒரு ஏழை நாட்டில் இருந்து வர்றேன், நீங்க பணக்கார நாடு, எனக்கு ஒரு 100 ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்க பொழைச்சிக்கோன்னு போயிட்டு இருந்த காலம். இன்னைக்கு இந்த நாடு 4.1 trillion இருக்கிற நாடு, லண்டன் 3.4 trillion இருக்கிற நாடு.

0: 1 year there have been, this is the second suicide in the past 2 months. जिसमें से चार suicides में से तीन suicides जो थे वो दलित background के बच्चों के थे. So like I said, this is not an isolated event, right? So we need immediate resignation, क्योंकि accountability हमें वैसे ही मिलेगी. We need resignation, we need a student, independent student body यहाँ पर जो student के behalf पर बोले, you know, to give students some power as well. We need mental health conferences and all of that. We also need compensation for the family, जिन जो उनको भी काफ़ी पुलिस ने परेशान कर रखा है जब से वो यहाँ पर आए हैं. उनका एक अकेला बेटा था, वन ओनली चाइल्ड, राइट? तो वी नीड कॉम्पेंसेशन फॉर द फैमिली एज़ वेल.
1: Let's move on to another shocking case that has come to light, and this is from the state of Bihar, where there have been three people who have been arrested for molesting and assaulting a couple in Bihar's Jamui. The two youngsters that you see on your screens were harassed by a crowd in what the story was first published at Moral Policing, which was not to say the least. They were stopped while traveling on a scooter, following which the harassment took place. The shocking video showed men touching the girl inappropriately, and she was a minor, and even carrying her away from some distance on road before being stopped by her friend. The youngsters were seen pleading with folded hands in an effort to be left alone, and while they were doing that, the only thing that they witnessed next is being dragged back to the same place. And while all of this is happening, as usual, the politics has erupted between the government and the opposition of the state. The JDU leader, Umesh Kushwaha, has tried to downplay the incident and called it a trivial one, and that keeps happening in the state of Bihar. Rahul Gandhi, meanwhile, has slammed the government over the incident and has demanded action against mob under the POKSO Act. Meanwhile, another Bihar minister, Sunil Kumar, has condemned the incident. But while all of this is happening, the big questions remain that why is it that the action came after the video went viral?
2: तीन नाबालिग बच्चों को निरुद्ध की गई हैं और इसमें दो और की इन्वॉल्वमेंट भी पता चला और दो और हो सकते हैं. तो हम लोग का अभी क्विक एक्शन हुआ था जमुई थाना कांड संख्या 428 भी सेक्शन 74-75 BNSS और 8 और 12 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुई हैं. साथ ही साथ जितना वीडियो वायरल हुआ है, हम लोग टेकडाउन नोटिसेस जारी किया, जिसमें 13 फेसबुक और 12 इंस्टाग्राम का अकाउंट्स और 7 ट्विटर के अकाउंट्स हम लोग के द्वारा टेकडाउन कर लिए.
1: And while this incident has gotten into every Indian and every Indian is expressing outrage, there are political parties that are trying to take away credit and blame the other party. But one thing is for sure, that be it the opposition or the government, nobody for till date has been able to ensure the safety of a woman. But here are some political reactions that came in from the state of Bihar as far as this incident is concerned.
3: क्राइम फ्री पूरी दुनिया नहीं है. छिटपुट घटना होती रहती है और छिटपुट घटनाओं पर सरकार की नज़र है, और इस तरह के कृत्य करने वाले बिहार में बचने वाले नहीं है. उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पहले भी हुई है. ऐसी घटना करने वाले किसी भी हालत में नहीं बचेगा.
4: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील हैं, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था. कोई घर से बाहर निकलते थे? किस तरह का बिहार था? क्या हालात था? लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे, ऐसा बिहार था ना. आज तो लोग कम से कम, ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है. प्रशासन जल्द से जल्द जो घटना का जो अंजाम दिया है, चाहे 12 से 12 कोई कितना बड़ा कोई अपराधी क्यों नहीं हो, वो जल्द ही पुलिस के कब्जे में आएंगे.
5: घटना की हम तीव्र निंदा करते हैं सरकार की ओर से, और निश्चित रूप से वहाँ के पुलिस पदाधिकारी, प्रशासन के पदाधिकारी इसमें एक उचित और कठोर कदम उठाएंगे. मैं इस जैसे आपसे मीटिंग ख़त्म हो जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ के मैं पुलिस अधीक्षक से भी बात करूँगा जम्मू के, और सुनिश्चित उन्हें कहेंगे कि सुनिश्चित करें कि कोई भी इसके लिए जिम्मेवार हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, उसको चिन्हित करके उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें.
1: Well, the lawlessness is not just seen in the state of Bihar, it's seen in the state of Maharashtra as well, and this time the ones responsible are the political parties themselves. A social media reel criticizing MNS chief Raj Thackeray has

0: Welcome. Today we get you a brand new show in a brand new avatar. Politics Zindabad. Because every single move, every single statement, every maneuver by a neta has a meaning, has a motive. And we will be right here to help you understand what that is. I'm Padmaja Joshi, and today saying Politics Zindabad along with me are Akhilesh Sharma, Managing Editor NDTV, Upendra Chaube, Consulting Editor with us, and Senior Journalist Sameer Chaugankar and Vinod Agnihotri also joining us here on the show. First up today though, we start with an incredibly sad story from Mumbai, where a young life was lost to suicide. A professor has been booked for abetment to that suicide, and full-blown politics has started over the SC-ST Act. Now, here is what has happened. Sahil Vakode, a second-year student of the Department of Energy Science and Engineering at IIT Bombay, died by suicide on the 18th of September. In its statement the very next day, IIT Bombay said that Sahil was found using a mobile phone during an exam and he had uploaded the question paper to ChatGPT in order to look for answers. Now, the dean, Professor Surya Narayan Dula, was the exam invigilator who caught Sahil allegedly in the act. Now, here is where things took a turn. Sahil's father subsequently accused the invigilator, Professor Dula, of subjecting his son to casteist slurs, and he said this hasn't just happened on that day, on the day when the exam was taking place, but in fact this has carried on for the preceding 3 months. Based on the complaint of Sahil's father, Professor Dula has now been booked under the SC-ST Act and also abetment to suicide. IIT has removed him from the dean's post, and also the overall probe has been given to the crime branch. Meanwhile, the politics around this suicide and the FIR on Professor Dula has exploded, and how? Protests were held on the campus, students presented a charter of 18 demands and sought the termination of Professor Dula from service. They in fact even said that not just the dean, even those who are running IIT Bombay, they should also step down. Politicians of all hues have also jumped in. The Congress carried out a protest outside IIT Bombay. In fact, the students also protested, but that's not all. The faculty has come to the support of Professor Dula. They have said that whatever he did, it was according to the rules of the institution. It was done according to the law. The lawyer of Sahil's family has listed the demands, including giving compensation to the family.
1: की विक्टिम्सला इन्व्हेस्टिगेशन पूर्ण होण्याच्या आतमध्ये एस सी एस टी ॲट्रॉसिटी ॲक्टच्या अंतर्गत जे कंपन्सेशन दिलं जातं ते कंपन्सेशन ते इमिडिएटली करून देण्याचं काम पोलीस मदत करेल त्यांना, आणि पुढची ही इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये असणाऱ्या सगळी रिपोर्ट्स त्या इमिडिएटली फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये चार्जशीट फाईल करून ह्या अक्युज लोकांच्या विरोधात ट्रायल फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये चालवला जाईल.
0: समीर, आपसे स्टार्ट करूंगी, हो क्या रहा है मुंबई में?
2: देखिए, महाराष्ट्र वैसे भी अगर आप देखेंगे दलितों को लेकर बहुत सेंसिटिव स्टेट है, और इस तरीके से घटना आईआईटी मुंबई में घटना मुझे लगता है कि पॉलिटिकली भी बहुत सेंसिटिव विषय है. और जिस तरीके से पूरा मामला आया है, हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज अभी इस पर चुप है, मतलब देवेंद्र फडणवीस का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना एक स्टूडेंट की हुई है जो जिसने सुसाइड किया. लेकिन इसके दूसरे पहलू भी मुझे लगता है कि देखना चाहिए. ये कहा जा रहा है कि उसको एस सी एस टी कारण उसको प्रताड़ित किया गया था, काफ़ी समय से ही हो रहा था. तो क्या सुसाइड उसने किया तो वो कुछ ऐसा लेटर लिख कर गए हैं सुसाइड के समय कि मैं इसे सुसाइड कर रहा हूँ कि मुझे लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था. उसके फादर ने जो एस सी एस टी कंप्लेंट दर्ज कराई है, उन्होंने भी इसके पहले कहा कि लंबे समय से उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, पिछले तीन महीने से प्रताड़ित किया जा रहा था. तो क्या इसके पहले जब उन्हें पता था तो उन्होंने की कंप्लेंट ऑफिशियली दर्ज कराई? क्या फैकल्टी के पास रिटर्न में उन्होंने इस बात को कंप्लेंट दर्ज कराई कि भाई इसको ऐसे ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा था पहले से, और मैं कंप्लेंट कर चुका था, लेकिन कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज है वो इसको देख नहीं रही थी. तो मुझे लग रहा है कि अब जांच की बात होगी इस मामले को लेकर. लेकिन यह पूरी महाराष्ट्र की राजनीति मुझे लगता है कि सवर्ण बनाम दलित के मामले में चली गई है. और महाराष्ट्र में तो वैसे भी अगर आप देखेंगे तो आज 455 सीट्स विधानसभा की रिजर्व सीट है 288 में से, और लोकसभा की अगर आप देखेंगे तो 48 में से 9 सीटें रिजर्व की आती है. और रामदास आठवले का बयान जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर आया उन्होंने, और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में 13% करीब दलित है अगर आप देखेंगे, एक बड़ा कम्युनिटी है वहाँ की और बहुत स्ट्रांग कम्युनिटी वहाँ पर अगर देखेंगे पॉलिटिकली. तो ये फिलहाल मामला मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, रूलिंग पार्टी के लिए एक बड़ा सेंसिटिव मामला है.
0: एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी स्ट्रेंज, नाइदर हैज द चीफ मिनिस्टर सेड एनीथिंग राइट नाउ, नॉर हैज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर. द ओनली पीपल हु हैव स्पोकन अप इज द भीम आर्मी, you've got the Congress protesting, and Ramdas Athawale, who's a union minister with the government, Vinod ji, wo keh rahe hain ki bhai every student deserves to have an atmosphere where they are not subjected to caste harassment. क्या ये एक फिर से रोहित वेमुला type situation बन रही है बीजेपी सरकार के लिए? क्योंकि let's be very honest, the staff there, the faculty, they are saying this is a misuse of the SCST Act. तो अब पूरा faculty एक तरफ हो गया है और students और कुछ politicians एक तरफ हो गए.
2: देखिए हम लोग logic पे बात कर रहे हैं, उस हिसाब से तो बिल्कुल सही है कि भाई पिछले 3 महीने का अगर आरोप लग रहा है तो क्या उसने कभी कोई शिकायत की थी? क्या उसने इस तरह का उस बच्चे ने जो है पहले से कोई कंप्लेंट की थी भाई अगर हरेसमेंट हो रहा है? ये सब लॉजिक की चीज़ें हैं. पॉलिटिक्स लॉजिक से नहीं चलती, पॉलिटिक्स नैरेटिव से चलती है. और नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि उसके साथ उसका हरेसमेंट हुआ और एक दलित उत्पीड़न की घटना बनाई जा रही. आप देखिए लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र और यूपी, दो राज्यों में जो संविधान वाला नैरेटिव था,
0: संविधान खतरे में.
2: क्योंकि महाराष्ट्र अंबेडकराइट पॉलिटिक्स का सेंटर रहा है, नागपुर में बाबा साहब ने दीक्षा ली थी. और बड़ा इंटरेस्टिंग है महाराष्ट्र के बारे में, वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का भी की भी भूमि है और अंबेडकराइट पॉलिटिक्स की भी भूमि है. तो वो महाराष्ट्र का ये टिपिकल करेक्टर है. और इसीलिए ये इशू वहाँ पर जब मतलब रामदत्त अठावले एक तरह से उनको मजबूर होकर बोलना पड़ेगा ये, क्योंकि वहाँ प्रकाश अम्बेडकर भी बैठे हुए हैं, वो भी सड़क पर आ जाएंगे. और पूरी जो अंबेडकराइट पॉलिटिक्स है इसको लेके गोलबंद हो रही है.
0: तो
2: और ये इशू सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं होगा, ये आजकल सोशल मीडिया के जमाने में जैसे रोहित वेमुला का इशू नेशनल इशू बन गया था, बाद में उसमें तमाम तरह की और चीज़ें आ गई कि वो दलित थे कि नहीं थे, क्या था, ये सारी बातें. इसमें ये भी आप देखिए कि नेशनल कांग्रेस भी चाहेगी इसको नेशनल लेवल पे उठाए,
0: बट आपको
2: क्योंकि राहुल गांधी दलित एजेंडे को सूट करता है.
0: बट उन्होंने बोला नहीं है इस पर अभी तक कुछ.
2: अभी तो टेस्टिंग, वाटर टेस्टिंग है ना. बड़े नेता अभी प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला क्या या चीफ मिनिस्टर ने कुछ बोला क्या? राहुल गांधी ने भी नहीं बोला, खड़गे जी भी नहीं बोले जो खुद दलित लीडर हैं. लेकिन अभी वहाँ की लोकल जो यूनिट है वो ले रही है, तो वो इसको वाटर टेस्टिंग करेंगे कि इसका कहाँ तक बात कहाँ तक जाती है. और सारे फैक्ट्स भी तो आ जाएँ, आप एकदम से बोल दें और उसके बाद मुँह की खा जाएँ. क्योंकि जिस तरह इसमें नकल का मामला सामने आ रहा है, अब नकल का आरोप है, 4 जगह मोबाइल लेके हो गया थे वो, और फिर SC ST एक्ट भी आ गया. तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए तय करना कि नकल का मामला है या SC ST हरेसमेंट का मामला है, ये एक अभी सवाल है उनके
0: साथ. एंड स्पेशली भूपेन, बिकॉज राइट नाउ द फील्ड इज वाइड ओपन. मायावती इज डिमिनिशिंग इन्फ्लुएंस, कॉन्स्टेंटली अनएबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स द BSP टू डू. यू गॉट द भीम आर्मी फैक्टर, हियर यू गॉट द एडिशनल RPI फैक्टर. सो what does the government do?
3: And you got the cockroach Janata Party. Before the show, I just saw that there was a statement that was made by Abhijit Deepke, who's now threatening another.
0: Who himself is a Dalit.
3: He's also now threatening another protest if justice is not done towards the student. I think the problem here, as Sameer has rightly pointed out, see, if you were to have a logical debate, then I would say that you should look at it in terms of, should this be looked at as a case of cheating? Should this be case as a case of mental weakness? Because look, this is not the first case of a suicide which is happening across Indian Institute of Technology. In fact, in IIT Mumbai itself, in the year 2023, there was another case of another Dalit student who had committed suicide, Darshan Solanki. And at that time also, there was a lot of hue and cry. Just in a similar manner, you know, politicians had taken positions and there was a protocol which was created. I want to know, this protocol which was created supposedly in 2023, in terms of what happens if a student is caught violating the law which has been laid down by the Indian Institute of Technology themselves, is that protocol being followed? I think one of the reasons why political parties are testing the waters or still, you know, wanting to take a position but shying away from doing that, because the facts are not completely clear. Where does the student come from? If his father has taken this position that he was being subjected to caste-based discrimination, is there any instance of a casteist slur which was used against the student in concern? We don't have any evidence
0: so
3: yet.
0: And you know, we can only go by the word of people who have spoken so far. Here is what the IIT Bombay Faculty Forum has said. They said, we strongly express our solidarity with our colleague Professor Dula, who was discharging his duties in line with the Institute's Senate approved academic policies currently in force. Professor Dula, the course instructor, was invigilating in the mid-semester exam, and when he observed a student was indulging in an academic malpractice, unauthorized possession and use of smartphone during exam, as part of the institute approved procedure, he reported the incident to the institute authorities for further action.
3: No,
0: in the
3: did
0: matter.
3: He? That's a critical part, and that's where I think the story is really resting right now. Did Professor Gula only report the incident to the authorities, and is that all that happened? Or when Professor Gula found out when he discovered that this student was indulging in supposedly in this kind of an activity, did he say something publicly before students in the examination hall? Is it just that he finds something and he, it's like, you know, imagine a situation, Padmaja, that there's a case of cheating which has been discovered. Either he's asking the student to get out of the hall, or even in the process of asking the student to get out of the hall, he's using some comments, he's making some comments, we don't know.
0: Because initially the statement that had come on the 19th from IIT Bombay, they said that we did not take any action against the student, we only counseled them.
3: Yeah.
0: That is what they said, which by the way also now they have gone back on it. Ab unhone uske liye bhi apologize kar
4: liya. We should not forget that the IIT Mumbai has actually retracted earlier statement.
0: Yeah.
4: Now they issued a fresh statement, and not only issued a fresh statement, but they are also saying that they are apologizing for the earlier one.
0: So they are on the back foot for sure.
4: They are on the back foot, yes. But and that's why this investigation has now been handed over to crime branch. So all the facts have to come out in the public because there are different versions. We are saying that, you know, this student was caught. We are going by the first statement of the IIT Mumbai, but now they've retracted the statement. So now what happens, that whatever his father is saying, we have to respect that statement also. We have to look into the facts. On the other hand, the faculty and the alumni, they are saying that if you talk about Professor Dula, he has a very good track record. He is a thorough professional. He is a very good academician, and we have to go by that also. So that's why this investigation has been handed over to the crime branch.
0: But I want to ask you, overall, is the BJP finding itself very, very torn about how to deal with this issue? And in this context, I want to talk about this meeting that Mr. Nadda, earlier he met these anti-reservation protesters, this one faction of the anti-reservation protesters, and now he has met another group of them. So on the 20th of September at 11 minutes past 2 in the morning, 2:11 a.m., believe it or not, Mr. Nadda tweeted this picture and he said, Aaj mere awas par meri aur Jitendra Singh ji ki UGC rollback, Savarn Mahapanchayat Samiti ke sansthapak Raj Shekhawat aur kuch aur logo ke saath meeting hui hai Karni Sena ke saath, and unke pratinidhi mandal ne 20 September 2026 ki Mahapanchayat ko sthagit karne ka nirnay liya. So Mahapanchayat was supposed to take place on the 20th. Before that, Mr. Nadda goes and meets these people. Why are these secretive meetings being done? 2:11 in the morning, Mr. Nadda is tweeting. What's happening?
4: It's not secretive. If it was secretive, you would not known about it, because he himself has tweeted it. But interestingly, on that day, Saturday, I interviewed him. I was there at his residence for 3 hours and I got no inkling. There was no indication that such meeting was going to take place. But of course, later in the night, as you were mentioning,
0: so secretive hi hui na fir, aapko pata hi nahi chala.
4: Fir baad mein jab tweet aaya tab pata chala ki aise aise meeting hui hai. To wo isliye raat mein karni hogi kyunki next day 20th September ko wo महापंचायत करने वाले थे. सो बिफोर दैट महापंचायत दिस मीटिंग,
0: सो गवर्नमेंट इज फाइंडिंग इटसेल्फ ऑन द बैक फुट.
4: एंड इंटरेस्टिंगली द ट्वीट इटसेल्फ सेज दैट यूजीसी रोल बैक के ऊपर, ऑन द इशू ऑफ द यूजीसी रोल बैक, बिकॉज वी नो दैट दिस यूजीसी इट हैज इमिटेड फ्रॉम रोहित तिमूला सुसाइड, एंड आफ्टर दैट नाउ दिस इज अ रिसेंट केस, एंड वी हैव सीन दैट हाउ बीजेपी हैज फेस्ड लॉट ऑफ प्रोटेस्ट in Uttar Pradesh, in Bihar, in fact, Bakipur assembly by-election result, it is also attributed to the...
0: And many people say even the local body elections in Rajasthan.
4: That's correct. And that's why this was a very sensitive issue for the BJP. We know the legal position. BJP, the government says in the Supreme Court, they have told very clearly that they're going to review the entire UC guidelines. We know that Supreme Court itself has stayed imposition of these guidelines. But there was a major decision taken by the Modi government to amend earlier guidelines. Why? Because what is happening today in IIT Bombay? This is the reason. Why? Because they understand that these things are there, maybe they are undercurrent, but these issues need to be addressed.
0: Okay.
4: That's why they decided it.
3: There was an RTI application which was filed last year, which actually raised this question, Padmaja, that in the last decade, how many suicides, how many student suicides have happened at Indian Institutes of Technology campuses across the country? A total of 20 suicides were reported, where IIT Madras, by the way, was topmost on that list. The problem is that you are now looking at a scenario where you've had the UGC fiasco, you've had the NEET fiasco, you've had the Class 12 fiasco. On top of this now comes a scenario wherein country's preeminent educational institution, which is the Indian Institute of Technology, suddenly this caste-based story is now playing itself out. You have a few months to go before UP elections. Both in UP and in Punjab, Dalit population, Dalit vote base, hugely significant. You've spoken about Mayawati. I mean, just imagine the scenario. Suppose Mayawati tomorrow decides that she's now going to go and speak to the parents outside the campus of IIT Bombay. Can you just imagine the level of political temperatures that will rise? That's why the BJP is stuck. But what I'm position to take?
5: But I'm sure Mayawati will not
3: she
5: do
3: has
5: it.
3: Other, she has other problems
5: she
3: right
5: won't
3: now
5: do
3: in,
5: it.
3: Her, in her family, which is different.
0: But
2: Maharashtra,
5: she didn't go to Rohit Abbas.
2: सबसे बड़ी परेशानी देवेंद्र फडणवीस के लिए, देवेंद्र फडणवीस विदर्भ से आते हैं, नागपुर से आते हैं, नागपुर में संघ मुख्यालय, नागपुर में अंबेडकर साहब ने दीक्षा भूमि ली थी। लोकसभा चुनाव अगर आप देखेंगे 2024 का, तो पूरे विदर्भ में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली थी अकोला की, बाकी सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। और देवेंद्र के बारे में परसेप्शन महाराष्ट्र में बेसिकली है कि देवेंद्र वही फैसले लेते हैं जो RSS कहते हैं, संघ जिनको कहता है। तो देवेंद्र के सामने बड़ी चुनौती है, और संघ कभी नहीं चाहेगा कि महाराष्ट्र के अंदर खासतौर से विदर्भ में दलित बनाम सवर्ण इस तरीके से मामला वहाँ पर फिर शुरू हो। तो देवेंद्र को मतलब आप बहुत संभल के, और दूसरा क्या, अभी जो मनोज जरांगी का आरक्षण का जो आंदोलन को लेकर उसने मुंबई कुछ का प्लान किया था, अभी उसने विड्रॉ कर लिया है, उसको लेकर भी कि मराठा को कुनबी में आरक्षण देने का सरकार ने फैसला लिया है, उसमें दलितों के एक वर्ग में नाराजगी है, तो वो एक भी नाराजगी बनी हुई है, ऊपर से ही अलग नाराजगी। तो देवेंद्र को देखना है कि ऐसा ना हो कि इस मामले में दलित सड़कों पर उतर कर
0: आ जाए। खुद जनरल कास्ट से भी है, लेकिन आपने कि RSS का जिक्र किया है, वांट टू प्ले आउट, दिस इज द आयरनी दैट ऑन द वन हैंड द बीजेपी गवर्नमेंट हैज गॉन एंड बुक्ड दिस प्रोफेसर अंडर द SC/ST एक्ट, एंड लिसन टू व्हाट दत्ता होसाबले इज टॉकिंग अबाउट हिंदू सोसाइटी एज अ होल एंड द होल इशू ऑफ कास्ट। लिसन,
6: समाज को संगठित होना है तो अपने आपस के भेदभाव

0: भेदभाव को भूलना पड़ेगा। मैं इस जाति का हूं, पंथ का हूं, भाषा का हूं, प्रांत के हूं, मैं उत्तर भारत के हूं, मैं दक्षिण भारत के हूं, इसलिए मैं अलग हूं। इस भेदभाव से, एक दूसरे के साथ अलगपन से हम अपने संगठन के जो स्वभाव है वो नहीं रखने से ताकत नहीं रहेगी।
1: What's going on? RSS is saying one thing, BJP the other. At least you want to say something.
2: BJP बहुत fine balance करके चलना पड़ रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो हुआ, BJP को इस बात का एहसास है कि जो core vote उसका है, उसको नाराज नहीं कर सकती है। इसीलिए आपने जो JP Nadda की meeting का जिक्र किया, ये meeting इसीलिए हुई। ये तीसरी meeting है इस तरह की, कि जो आरक्षण के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई। इससे पहले
1: बजट तो बैलेंस कैसे कर रहे हैं, SC ST एक्ट के अंडर बुक करके आप बैलेंस कैसे करेंगे? तो नाराजी होंगे ना जनरल कास्ट।
2: तो बाद में आया ना, ये तो इशू अभी आया है। मैं उस मीटिंग की बात कर रहा हूं जो सैटरडे को हुई है, उसमें जो हुआ और जो बात RSS के सर जनरल सेक्रेटरी कर रहे हैं होसबोले जी, वो यही कह रहे हैं। देखिए RSS तो बहुत लंबे समय से आप जानते हैं कि सामाजिक समरसता की बात करते हैं। जो उनका शताब्दी कार्यक्रम चल रहा है उसमें एक ये विषय है कि एक गांव में एक कुआं एक शमशान होना चाहिए। यानी सोशल जो कास्ट का इस तरह से आप ब्रेकअप करते हो वैसा नहीं होना चाहिए। तो RSS का एक एजेंट आई तो काम पे उससे लंबे समय से कर रहे हैं। लेकिन जो रियल पॉलिटिक है वो यूपी चुनाव को लेकर के है, वो चैलेंज बीजेपी के लिए है। इसलिए बीजेपी के एक बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी अभी 3-4 दिन पहले ही, उन्होंने कहा कि हाँ हम इस चैलेंज को मानते हैं कि हमारे लिए एक चुनौती है ये जो परिस्थितियाँ बन गई, UGC गाइडलाइंस हो या इस तरह के विषय आते हैं, इसलिए हम इसको एड्रेस करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आप ये देखेंगे, उन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया कि आप ये देखेंगे कि अगले कुछ महीनों में स्थिति बदलेगी।
1: ऑर्गेनाइजेशन इज फाइंडिंग इटसेल्फ इन अ बिट ऑफ अ बाइंड इज क्वाइट अपेरेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट यू जस्ट हर्ड दत्तात्रेय होसाबले सेइंग देयर शुड बी डिविजन्स ऑफ दिस काइंड एंड द ABVP इन द केस ऑफ IIT बॉम्बे केस हैज एक्सप्रेस सॉलिडैरिटी विद द पेरेंट्स of Sahil Wakode. From one campus to another, the results of the Delhi University students election has been quoted as a barometer of the mood of India's youth by the BJP. They are saying Gen Z hamare saath hai. And it's understandable given that not only did the RSS's students wing ABVP win on 3 out of 4 seats on the panel, but for the first time in many years, the NSUI drew a blank. The vice president's seat also was won by an NSUI rebel, Dipanshu Shaukeen, who has now said that accountability should be fixed within the Congress for what he calls dirty internal politics. Interestingly, the CJP, which had been the face of the Gen Z protest just months ago at Jantar Mantar, has dismissed this result as nothing but what comes from money power.
3: जो मैंडेट आया, स्टूडेंट्स किन को चाहते थे और क्या वोटिंग परसेंटेज किस तरीके से मैंडेट आया, वो साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं टिकटों में गलती हुई और इनकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए लोगों को कि उनसे गलती हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट NSUI से लड़े और उनको ठीक ठाक मैंडेट, मतलब अच्छा मैंडेट हम लोगों को मिला। तो ये साफ दर्शाता है कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी वो बहुत ज्यादा हुई।
4: नहीं, चुनावों में तो पैसा चलता है, चुनावों में पैसा चलता है, चुनावों में और कुछ नहीं चलता है। DU में जो कैंपेन होते हैं, रोल्स रॉयल्स की गाड़ियों में आते हैं लोग, रोल्स रॉयल्स वो गाड़ी करोड़ों की नीचे नहीं आती है, ऑडी में आते हैं, BMW में आते हैं, तो चुनावों में बस पैसा चलता है।
1: विनोद जी, क्या ऐसा है कि कन्हैया कुमार के ऊपर एक्शन होने वाला है?
5: कन्हैया कुमार लाइन ऑफ फायर में तो है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी कन्हैया कुमार को के ऊपर इसलिए डाली जा रही है कि वो इंचार्ज है NSUI के, और इस बात को लेके पार्टी के अंदर NSUI में बहुत असंतोष है कि भाई आपने ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी हुई जिसका NSUI से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। जो व्यक्ति, जिसकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स पूरी NSUI के विरोध पे खड़ी थी, जो लेनिन और माओ को पढ़ करके पॉलिटिक्स करता था, वो गांधी और नेहरू की जो पार्टी है उसको कोई सिस्टम नहीं मालूम, कोई स्ट्रक्चर नहीं मालूम है। और बल्कि कहानी ये है इंटरनल कि वो कैंपस गए भी नहीं कैंपेन करने के लिए,
1: कन्हैया
5: बहुत लास्ट में शायद गए होंगे। और मीटिंग हुई केसी वेणुगोपाल के यहाँ, जिसमें ये सारे नेता, इवन सचिन पायलट, दीपेंद्र हुड्डा, ये सारे मौजूद थे। उनसे जब कहा गया तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं क्यों जाऊँ? तो सचिन ने कहा, दीपेंद्र ने कहा कि भाई हम जाके नारे लगाते हैं अपनी NSUI के लिए, ABVP के BJP के नेता आते हैं तो आप जाने में क्या दिक्कत है। और इसलिए इस वक्त पूरा जो असंतोष है इस पूरे उसका, क्योंकि पहली बार एक तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कंपोजिशन है इलेक्शंस का, वो लोकल्स वर्सेस आउटसाइडर्स रहता है हमेशा। लोकल्स मतलब जो अपने को नेटिव मानते हैं, यहाँ के जो गांव, जो जाट, गुजर और लोकल जो स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली वो डे

0: स्कॉलर्स हैं उनका डोमिनेंस रहता है। तो हमेशा पैनल्स देखे जाए, एबीवीपी का हो चाहे एनएसयूआई का हो, इन कम्युनिटीज़ को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलता है। इस बार कांग्रेस के जो पैनल हुए एनएसयूआई में थे ही नहीं, मीणा, उसके बाद ये चतरथ,
1: और कांग्रेस कह रही है बट हमने एक ट्राइबल लीडर को मौका दिया।
0: ट्राइबल लीडर को मौका दिया, वो अच्छा लड़ा भी, नो डाउट, लेकिन अगर बैलेंस बना के चलते, मान लीजिए शौकीन को, जो शौकीन से कहा गया प्रेसिडेंट लड़िए, उसने कहा मैं प्रेसिडेंट नहीं लड़ूंगा क्योंकि उधर से दबास है, दो जाट लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे, उसका अपना गणित था, तो वो वाइस प्रेसिडेंट लड़ना चाहता था, इन्होंने कहा वाइस प्रेसिडेंट मत लो। ये जो रहा कि आपका अपना आदमी जो रिवेल होकर जीत रहा है, तो इसलिए,
1: और एक ही नहीं, दो रेबल्स,
0: वो यादव, विजय यादव, वो भी आपका ही था। अगर आप यादव, जाट, मीणा सबको बैलेंस करते हैं तो शायद नतीजे कुछ आपके फेवर में।
1: और इनफैक्ट विशेष यादव जो कि जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे लड़े हैं, ही वाज बैक्ड बाय द समाजवादी छात्र सभा,
0: वो तो लास्ट पॉइंट,
1: एंड इवन ही गॉट मोर वोट्स देन द
2: एनएसयूआई के जो प्रेसिडेंट है विनोद जाखड़, अभी वो राजस्थान से बेसिकली आते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कि जब शौकीन को टिकट नहीं मिल रहा था तो उसकी पैरवी दीपेंद्र हुड्डा ने की, तो दीपेंद्र हुड्डा ने सचिन पायलट को फ़ोन किया क्योंकि सचिन पायलट भी राजस्थान से और जाखड़ उसके बहुत अच्छा परिचय है, तो उन्होंने कहा कि भाई आप उससे बात करो, उपाध्यक्ष पे इसको दो, ये चुनाव जीतेगा, आप इसको टिकट दिलवाइए। सचिन पायलट ने उसको फ़ोन किया जाखड़ को, जो एनएसयूआई के अध्यक्ष है, तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में नहीं है, इसमें कन्हैया कुमार ने तय किया है और मैं इसमें तय नहीं कर पाऊंगा, मैं नाम रिकमेंड कर सकता हूं, मैं नाम रिकमेंड किया हुआ है। सचिन पायलट ने कन्हैया कुमार को भी फ़ोन किया उस संदर्भ में पूछने के लिए, तो कन्हैया कुमार को बोला कि नहीं, आप उस मामले में मत पड़िए, मैं वहाँ की पॉलिटिक्स को बहुत बेहतर समझता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, कि वहाँ क्या स्थिति है, और जिसका नाम रिकमेंड कर रहे हैं उसको थोड़ा ईगो प्रॉब्लम है, तो उस बार उसका इलेक्शन के बाद उसका ईगो ठंडा हो जाएगा, उसको चुनाव लड़ने निर्दलीय, उसको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता मतलब एनएसयूआई का संगठन क्या है, कांग्रेस की ताकत क्या है, कन्हैया कुमार का वहाँ पर जनसंपर्क क्या है। ये सचिन पायलट को कन्हैया कुमार ने पूरा फीडबैक दिया, उसके बाद सचिन पायलट ने कहा ठीक है मैं अपना पंजाब चुनाव देखता हूँ, और जब परिणाम आया
1: तो, और जितना मुझे याद है हाल फिलहाल में दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द एनएसयूआई हैज ड्रॉन अ कंप्लीट ब्लैंक।
3: लुक, वेल यू नो आई एम कंसर्न्ड अबाउट द हेल्थ ऑफ द कांग्रेस पार्टी, इफ अ लीडर ऑफ द स्टैचर ऑफ सचिन पायलट, राइट, हुज फादर वाज इन द कांग्रेस एंड हुज बीन इन द कांग्रेस फॉर सो लॉन्ग, इफ ही हैज टू स्पीक टू कन्हैया कुमार टू बी टोल्ड that you know you don't know the politics
0: of Delhi
3: of Delhi and Delhi, he knows the politics of Delhi, so let's just
1: in fact a lot of people are saying that this is
0: by quote Congress Dusu ki ek former president ne mujhse kaha, usne kaha Kanhaiya ne 8000 students ki politics ki hai Dusu mein,
2: JNU mein
0: aur Dusu mein more than 60,000 to vote padte hain, to usne kaha former president ne mujhse kaha, usne kaha hum log jante hain lekin hamari suni nahi gayi, humne कहा क्या करना चाहिए लेकिन कन्हैया कुमार ने बिल्कुल नहीं सुनी। और पंजाब में जो हारी है कांग्रेस
1: पंजाब इलेक्शन में हारे, और बाय द वे ड्यूरिंग द दूसरे इलेक्शन द एबीवीपी पंजाब यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट वाज राइट देयर, ही वाज देयर एट द फोरफ्रंट ऑफ कैंपेनिंग, सो दे गॉट हिम फ्रॉम हियर।
3: अगेन देयर आर टू वेज टू लुक एट दिस पदम, वन आई मीन इफ यू आर सेइंग दैट इज दिस अ लार्जर रिफ्लेक्शन ऑफ अ नेशनल मूड, देयर हैव बीन इनफ इंस्टेंसेस इन द पास्ट वेयर द पार्टी इन पावर एट द सेंटर, whether it was the Congress or the BJP, their student wings have gone on to lose the elections of students. 2004 is a great example in point where the BJP lost the election. 2009 is another case where a different party at the center was winning the election in comparison to when it came to the Dusu elections. I think specifically in this election, what stands out to me is very clear. Rahul Gandhi has to stop making these experiments with the Congress. As long as he considers the Congress party to be a laboratory of carrying out these political experiments, this is what you will get.
1: But 2003,
3: why is Kanhaiya Kumar? Tell me, what is it about Kanhaiya Kumar other than that great nara which you and I both covered when he was in JNU? Awaaz do hum ek hain, right? Leke lehenge, leke rehenge, kya leke rehenge, azadi. Now, the high of that slogan to now in 2026, if Kanhaiya Kumar has been empowered in the Congress party to this degree where he can tell Sachin Pilot, as Samir is saying, I think the lesser
1: said about the state of affairs. But 2003, the NSUI had won a majority of the seats, yes, in Dusu, and then they came to power at the center. 2013, ABVP won a majority of seats in Dusu, and they came to power. So which is why the BJP is so happy. They are seeing this as an indication of
4: things. Padmaja, agar abhi ulta result aata, ki teen NSUI, ek independent, to kya baat ho rahi hoti desh mein? Kya discourse chal raha tha? Khatam ho gaya ji.
0: Bilkul, bilkul.
4: Sab finish hai, 2029 ka result aa gaya. सब डिसाइड हो गया है 2029 में क्या होने वाला है। जिस दिन राहुल गांधी इंदौर में छात्रों की गूंज कर रहे हैं उस दिन दूसरों के वोटों की गिनती हो रही है और जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है। खबर तो ये भी आ रही, विनोद जी बताएंगे कि राहुल गांधी ने तुरंत मंच से उतर के जानकारी ली कि क्या रिजल्ट आया, फिर फ़ोन करके अपनी नाराज़गी व्यक्त की, कहा कि मुझे रिपोर्ट दीजिए, ये सब बातें भी आई हैं। लेकिन आप ये बताइए कि एक तरफ बीजेपी आरएसएस का जो छात्र संगठन है एबीवीपी वो 3 सीटें जीत रहा है और वहां पर राहुल गांधी दूसरी तरफ ये कर रहे हैं। आप इससे क्या पता लगता है कि जो जेन जी को लेकर के माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है कि सरकार से नाराजगी है, ये जनरेशन वो जिसने कि बीजेपी की सरकार के अलावा कोई सरकार अभी तक देखी नहीं है, उसके पास कंपेयर करने के लिए मोदी 1.0 से मोदी
1: बट अभिजीत दिपके से दिस इज ओनली अबाउट मनी पावर, ये लोग सब लंबोर्गिनी में घूमते हैं। बाय द वे आई वांट टू शो यू अ फ्यू विजुअल्स, लंबोर्गिनी में सब लोग लंबोर्गिनी डिफेंडर एनएसयूआई व्हाट हैव यू, एवरीवन वाज गोइंग अराउंड इन लंबोर्गिनीज। आई मीन सीरियसली आई हैव नॉट सीन एन इलेक्शन कैंपेन लाइक दिस, लुक एट दिस, इवन दीपांशु शौकीन, सम ऑफ द कार्स व्हिच वर कैंपेनिंग फॉर दीपांशु शौकीन, दिस न्यू एज कैंपेन दैट वी सॉ हियर, some pretty big cars there for all, एक ट्रैक्टर भी था बट कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियां भी थी।
0: शौकीन ने जो नंगे पर कैंपेन किया,
1: हाँ उन्होंने कहा कि जब तक सत्य निकेतन के लिए उसमें जस्टिस नहीं
4: होगा, उसका बैकग्राउंड भी बहुत था,
0: कांग्रेस में
1: डीटीसी कंडक्टर,
0: कांग्रेस में क्या डिबेट चल रही है इसके बाद कि कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी में लोग आउटसाइडर्स आते हैं लेकिन संगठन की जिम्मेदारी उनको नहीं दी जाती है, वो सरकार में बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जैसे हेमंत विश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर बन गए बट कभी बीजेपी असम के अध्यक्ष नहीं बने, शुभेंद्र अधिकारी बंगाल के अध्यक्ष नहीं बने, चीफ मिनिस्टर बन गए, संगठन वो अपने ही ओरिजिनल जो आइडियोलॉजिकल जो लोग हैं उनको देती है।
1: नहीं, संदीप पाठक को दिया उन्होंने संगठन,
4: मनोज तिवारी को यहाँ पर बनाया था,
1: संदीप पाठक को बना दिया उन्होंने सेक्रेटरी,
4: संदीप पाठक को उन्होंने सेक्रेटरी बनाया है,
0: लीडिंग
1: ज्यादातर
0: लीडिंग रोल की बात हो रही है, जैसे अब कन्हैया को इंचार्ज बना दिया पूरा, माई बाप कर दिया, वहां कंट्रोल भी तो रहता है, मनोज तिवारी अपने मन से कुछ थोड़ी कर सकते हैं, क्या मनोज तिवारी की हैसियत थी कि पीयूष गोयल फोन करें या कोई करे और कहेंगे नहीं करेंगे, जैसे कन्हैया कुमार ने सचिन पायलट को किया, ये नहीं कर सकते थे ना।
1: और वैसे तो भी जो वीर चतरथ की बात हो रही है, मनीष चतरथ क्या है, वो रहेंगे क्योंकि मेनी पीपल आर बेइंग फॉर हिज हेड आल्सो सेइंग कि उनको हटाया जाए,
0: इसकी भी मिसहैंडलिंग हो रही है, लोग ये कह रहे हैं, मैं तो बहुत बात की कि अगर मनीष चतरथ को समझा दिया जाता ढंग से कि भाई देखो आपका बेटा भी नया आया है उसको अगले साल दे देंगे, इस बार शौकीन को देने दो, तो शायद वो मान जाते, उनसे किसी ने बात ही नहीं की,
1: तो इंदिरा भवन के इंचार्ज हैं, ऑफिस इंचार्ज,
0: हाँ ऑफिस इंचार्ज इंदिरा भवन के, और कहा जाता है कि प्रियंका गांधी के काफी क्लोज हैं वो, तो इसलिए भी उनका एक वेट है, लेकिन माना जाता है शरीफ आदमी, भले आदमी अगर उनको कन्विंस किया जाता पार्टी ये कन्हैया कुमार ही कन्विंस करते या किसी वेणुगोपाल कोई बात करे तो मान जाते
3: हैं। Then it would have meant, oh, it's a big vote against the BJP. My point is, well, the ABVP has done well in Punjab, right? Is Akhilesh going to say that ABVP, because ABVP has done well in Punjab, the BJP conversely will do very well in the Punjab?
4: नहीं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का मामला different है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को आप पंजाब से जोड़ के नहीं देख सकते, इससे बड़ा बिल्कुल क्लियरिटी, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा बाहर के राज्यों के बच्चे पढ़ते हैं, ये नहीं कि वो वहाँ पे पंजाब के ज्यादा करके लोग आ रहे हैं, तो इसलिए उस रिजल्ट को पंजाब से जोड़ना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन उसमें एक इंडिकेशन मिला है कि अकाली दल का जो छात्र संगठन था उसने सपोर्ट कर दिया एबीवीपी का वहाँ पर इलेक्शन में, तो वो एक इंडिकेशन दे रहा है कि शायद आगे जाके इनका
1: आगे जाके अलायंस हो
2: जाएगा। चंडीगढ़ में बीजेपी सांसद जीत रही थी लेकिन पंजाब में जीत पाती, चंडीगढ़ में कॉर्पोरेशन बीजेपी
4: बना, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस नहीं होता मनीष तिवारी फिर जीत पाते
0: एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि आसाम में भी बीजेपी जीती है बहुत थंपिंग मेजोरिटी से और डिब्रूगढ़ में हार गई स्टूडेंट इलेक्शन में,
3: वहाँ जो
0: अब डिब्रूगढ़ स्टूडेंट व्यू अब उसको क्या करेंगे,
3: यू बीन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी,
0: व्हाई नो
3: हाउ दीस इलेक्शंस आर कंडक्टेड, आई वांट टू नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु आर यू नो हु आर स्टडीइंग फिजिक्स ऑनर्स केमिस्ट्री ऑनर्स इंग्लिश ऑनर्स आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग, कितना 60% तो वोटिंग हुई
4: मंत्र के बाद। देखो इसका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का हो गया, राजस्थान के लोकल बॉडी के इलेक्शन हो गए और डूसू को रिजल्ट आ गए, तीनों जगह आप रिजल्ट क्या बता रहे हैं आपको कि जो बात किया जा रही कि देश में माहौल बन रहा है, जैसे नाराज है ये है,
1: बट वन कुड आल्सो आर्ग्यू दैट पीपल आर डूइंग फिजिक्स ऑनर्स एंड केमिस्ट्री ऑनर्स बट आल्सो नॉट सिटिंग एट जंतर मंतर, सो इफ यू आर टेकिंग जंतर मंतर एज अ बैरोमीटर ऑफ द पब्लिक मूड देन इक्वली डूसू कुड आल्सो बी अ बैरोमीटर ऑफ द पब्लिक मूड, बट स्पीकिंग ऑफ मूड लेट्स टॉक अबाउट लाइक अखिलेश जी जस्ट मेंशनड द छात्रों की गूंज, आयरोनिकली ऑन द डे व्हेन द डूसू रिजल्ट्स केम आउट विद इन एन आवर ऑफ दैट 5:30 the results came and around 6:30 7:00 Rahul Gandhi addressed the 5th edition of Chhatron Ki Goonj, this time it was in Indore. Now basically he made the point at that rally that this system is being run by 5 to 6 people and this system does not want students, it only wants andhbhakts. His logic was that students are inconvenient, they ask questions and that is why the system wants the unquestioning loyalty of andhbhakts. Now the political attacks were understandable but what seems to have got under the BJP skin is a little comedy routine team that was woven into the program.
5: और बताइए, और बताइए थोड़ा। माँ को कुर्सी दो, माँ, और बताइए थोड़ा माँ को कुर्सी दो माँ माता जी को चेयर दे दीजिए भाई, ये बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए, एक कुर्सी दे दीजिए माता जी को। हाँ माँ बैठिए आप बैठिए, बस आपका आशीर्वाद मिल गया मुझे।
6: सुर्खियों में बने रहने के लिए बुजुर्ग माँ पर एक और प्रधानमंत्री उनको कुर्सी देने की बात करते हैं, उनका ध्यान रखने की बात करते हैं, तो दूसरी ओर राहुल गांधी के मंच पर एक बुजुर्ग महिला को, एक माँ पर जिस तरह का तंज और टिप्पणी कसी जाती है वो कांग्रेस के संस्कारों को दिखाता है।
7: राहुल गांधी जी ने तो प्रधानमंत्री छोड़ दिए, किसी की माँ का जिक्र नहीं किया, और जब बड़ी बात करोगे तो फिर खोल के रख दूंगा, किसने राहुल गांधी की माँ के लिए अब शब्दों का प्रयोग गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में किया था। बात चलेगी तो मैं बता दूंगा, सच तरूर की गर्लफ्रेंड 60 करोड़ की किस मोदी ने कहा था।
1: समीर जी, कांग्रेस कह रही है इसमें क्या बुरा है, ये तो पॉलिटिकल सटायर है।
2: नहीं, मुझे लगता है गलत है राहुल गांधी को इस बात को, मुझे लगता है कि प्रोग्राम होने के बाद जब राहुल गांधी को रियलाइज होना चाहिए था कि जिस तरीके से वो फूहड़ कॉमेडी की गई थी वो, उसके लिए राहुल गांधी को माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। देखिए, इंदौर में कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, भीड़ बहुत अच्छी राहुल गांधी की आई। इंदौर में 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी का कॉरपोरेशन है, 3 दशक से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, कांग्रेस का कोई बहुत ग्राउंड मालवा में नहीं है। उसके बाद इतनी भीड़ इकट्ठी होना राहुल गांधी की, उसमें ये एक उपलब्धि मैं मानता हूँ कि वहाँ पर इतने स्टूडेंट्स आए, लेकिन उस टेम्पो को राहुल गांधी
1: तो मतलब मूड उनके फेवर में था वहाँ पे। अब हम क्या कह रहे हैं कि इंदौर में मूड था राहुल गांधी का,
2: जैसे भी आया हो यूथ बड़ी संख्या में आया, जहाँ पर आपका ग्राउंड नहीं है, जहाँ की आपकी सरकार नहीं है,
1: बीजेपी कह रही है सारे एनएसयूआई वाले लोग बुलाए हुए हैं वहाँ पे, स्टेज पे एनएसयूआई के लोग थे।
2: नहीं, मुझे इतना बड़ा भारतीय, अगर कांग्रेस का इतना बड़ा संगठन होता तो कांग्रेस इतनी बुरे मालवा के अंदर प्रदर्शन नहीं करती। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स आए होंगे, मैं इस बात को मानता हूँ। और वैसे भी अगर देखें तो राहुल गांधी का 5वां प्रोग्राम था, पहला कोटा में हुआ, उसके बाद उन्होंने देहरादून में किया शायद, उसके बाद उन्होंने प्रयागराज में और पूना में किया। कोई भी, मुझे लगता है राहुल गांधी का प्रोग्राम ऐसा नहीं रहा जिसमें किसी ना किसी तरह की कंट्रोवर्सी ना हुई हो। राहुल गांधी या तो अपने स्पीच में कंट्रोवर्सी की या इस तरीके से की। राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए था। राहुल छात्रों से बात करने के, आप छात्रों की बात करते हैं इस तरीके से बात करके, मुझे लगता है एक अच्छा मैसेज राहुल गांधी
1: की तरफ से। अखिलेश जी, सेम डे 2 थिंग्स हैपेंड, डूसू रिजल्ट्स एंड दिस। समीर जी इज सेइंग बहुत हेल्दी टर्नआउट था, आप किसको माने हम, मूड राहुल गांधी का है या डूसू का है?
8: देखिए, तमाम तरह कोशिशें हुई, कांग्रेस कहती रही कि काफी अड़ंगे लगाए गए, एमपी की जो बीजेपी सरकार उसकी ओर से पहले परमिशन को लेकर के बवाल काटा गया, उसके बाद फिर ये कहा गया कि जो बच्चे जा रहे हैं उनको हॉस्टल से पत्र लिख दिया गया कि आप जाएं तो उनकी लिस्ट बनाइए, उनसे अंडरटेकिंग लीजिए, कीजिए वो कीजिए। तो कांग्रेस का ये कहना है कि काफ़ी रोड़े अटकाए गए, इसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, तो इस लिहाज से आप देखिए तो मैं समीर जी की बात से सहमत हूँ। लेकिन आप मैसेज क्या दे रहे हैं? क्या आपका गोल ये है कि आपको सोशल मीडिया पर वायरल होना है, कि आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना है, या आपको देश को लीड करना है? ये दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर है। तो कंटेंट क्रिएशन तो हमारे देश में बहुत बड़ी एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, बहुत लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो एज ए पॉलिटिशियन आपको क्या करना है? आपको एक मैसेज देना है?
1: एज ए पॉलिटिशियन ही सेइंग दैट योर फॉरेन पॉलिसी इज ओनली अबाउट दिस हग प्लॉमिसी।
8: व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? अगर आप किसी को हक कर रहे हो तो उसमें गलत क्या है? कोई गलत है क्या? किसी ने गलत बोला? सामने लोग ने, किसी ने ऑब्जेक्शन किया क्या कि हमें क्यों हक कर रहे हो? किसी ने हक करने से मना किया क्या? ये अपने अपने तरीके होते हैं, मैनरिज्म होता है पॉलिटिक्स में। कोई अपने, कोई हाथ मिलाता है, कोई गले मिलता है, कोई किस तरह से मिलता है, वो सबके अपने अपने तरीके हैं, ये उनका अपना तरीका है, और उससे कोई नुकसान हो रहा है क्या?
3: सी, देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर वेरी क्लियर। राहुल गांधीज बेसिस, द वेरी एडिफिस ऑफ राहुल गांधीज पॉलिटिक्स टुडे इज टू हिट आउट डायरेक्टली अगेंस्ट नरेंद्र मोदी एट एनी कॉस्ट। इट इवन व्हेन ही वांट्स टू क्रिटिसाइज, लेट्स से ही वांट्स टू क्रिटिसाइज हिज फॉरेन पॉलिसी, वन इज दैट ही स्टार्ट्स गेटिंग इनटू द एकेडमिक साइड, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, एंड यू कैन लेजिटिमेटली से दैट देयर आर इनफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी रेज्ड, बट दैट इज नॉट what is driving Rahul Gandhi today. Just a couple of days back, I was speaking to someone very, very close to Mr. Gandhi, who's also associated, let's say, a critical part of his thing, his brain trust, so to say. He told me very, very clearly that for a person who's been lampooned for the last 12 years, for a person against whom there was an entire sort of industry that was created to convert him into a Pappu, you know, nobody calls him Pappu now, nobody is now dismissing him the way he was being dismissed earlier, that he has seen such lows in Indian politics that he can't go any further. Now, this is the conviction that Rahul Gandhi has, that what do I have to lose?
1: So he thinks

0: this is working.
1: Now, in his mind, he thinks that he's rattling the BJP. Now, what is happening on the BJP side? All cabinet ministers are now responding, oh, Rahul Gandhi saying wrong, this, that, you know. He thinks he succeeded.
0: But in the public mind, you think this is not a self-vote.
1: Will it now lead to the electoral needle moving? I think that's a separate
2: question. I was just this afternoon, I was interviewing Hardeep Singh Puri, who is a senior cabinet minister. तो बोले कि मुझे ये लोग बोलते कि आप क्यों कमेंट करते हैं राहुल गांधी के ऊपर. बोले हम इसलिए करते हैं कि उससे हमें फायदा होता है. राहुल गांधी तो हमें फायदे पहुंचा रहे हैं ना. ये उनका अपना असेसमेंट है. तो आप इसका क्या करोगे?
1: बोथ साइड्स आर नाउ क्लेमिंग विक्ट्री.
0: तो वो कह रहे हैं कि ये ऐसी हरकतें करके बीजेपी को फायदा होगा.
2: अगर आप ये बोल रहे हैं कि मां को लेकर के आप उठा रहे हैं विदाउट गोइंग टू द कॉन्टेस्ट कि किस बारे में पीएम मोदी ने कहा, किसके बारे में कहा, आप ये मजाक बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो एक गलत मैसेज जाता है ना कि भाई आप क्या कहना चाह रहे हो. इससे पहले जो एक कॉमेडी वाला एक्ट हुआ था जिसमें संदीप दीक्षित ने, उसमें तो अगर वो तो ठीक है मैच्योरिटी इसको हैंडल कर लिया गया,
0: मतलब मेलोनी पकड़ के
2: मैं तो मतलब समझ के बीच में रिश्ते खराब कर सकता
1: है. अब होने वाला यही है. लेट मी बी वेरी क्लियर, यू नो, इफ यू थिंकिंग दैट सडनली बिकॉज बीजेपी में थिंक दैट राहुल गांधी मेकिंग ऑल दीज अटरेंसेज इज हेल्पिंग अस, राहुल गांधी इज बैकिंग ऑफ, नो, लेट मी अश्योर यू एंड आई एम हैप्पी टू शेयर दिस विद योर व्यूअर्स, इन द नेक्स्ट थ्री मंथ्स द होल प्लान इज दिस छात्रों की गूंज, द लेवल ऑफ अग्रेशन is going to be enhanced even more, particularly when it comes to, let's say, campaigning. Abhi he'll start campaigning now in Punjab. There's a big bus yatra which is being planned. Punjab is a land of satire, is a land of song, is a land of, you know, I mean, not poetry. So, you know, just brace yourself up.
0: Well, he'll have an able opponent in Bhagwan Mann. Bhagwan Mann professionally.
3: Stand-up comedian is
1: the chief minister. So you can well imagine.
3: Actually,
2: look, I'm practicing his practice.
3: Rahul Gandhi, who Bhupen ne kaha, main usi baat ko endorse karta hu. Rahul Gandhi ko pappu banaya BJP aur uske pure ecosystem ne. Ab usi ko Rahul Gandhi revert kar rahe hain. Wo usi tarah ka attack Narendra Modi ji pe kar rahe hain, Prime Minister pe, ki wo batana chahte hain bhaiya ye hain ye. To wo bilkul counter attack hai. और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं. इतने लो लेवल पे जाने के बाद पप्पू और ये वो रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन सारे जितने भी विशेषण हो सकते हैं सब डालेंगे, तो वो जितना नुकसान होना था राहुल गांधी का वो हो चुका है. इसलिए उनको मालूम है कि अब हमें अटैक करना है, अग्रेशन करना है. तो ये उनकी स्ट्रेटजी है. इसीलिए जो संदीप दीक्षित वाला प्रोग्राम हुआ था उसके बावजूद भी इंदौर में किया ना वो सेम हगिंग हरलो मेसी को उन्होंने अटैक किया.
0: सो दिस इज गोइंग टू बी द टेम्पलेट फ्रॉम हियर,
3: टेम्पलेट फ्रॉम
0: व्हेदर इट इज अग्रेशन और सेल्फ गोल, द पीपल विल अल्टीमेटली डिसाइड.
3: हरदीपपुरी को खराब लग सकता है, हरदीपपुरी खुश हो सकते हैं, कांग्रेस
0: राहुल गांधी को लग रहा है कि ये काम कर रहा है.
1: पंजाब में द लोकल यूनिट इज ऑलरेडी बीन टोल्ड टू आइडेंटिफाई कॉमेडियन, जिसको मस्करा कहते हैं ना हिंदी में, टू आइडेंटिफाई दीज पीपल हु विल बी गिवन अ स्टेज. नाउ व्हेन अ मस्करा इज गिवन अ स्टेज, व्हाट विल द मस्करा डू?
3: विल ऑल्सो
0: वन प्लेस और वन पर्सन हु डेफिनेटली डज नॉट अप्रिशिएट टू मच ह्यूमर इज राज ठाकरे. एंड इट बिकेम एब्सोल्युटली क्लियर व्हेन अ सोशल मीडिया रील दैट वाज क्रिटिसाइजिंग द एमएनएस चीफ ट्रिगर्ड अ शॉकिंग एक्ट ऑफ पब्लिक ह्यूमिलिएशन. And this happened in Pune. MNS workers grabbed Marathi content creator Mahesh Mote, blackened his face, forced him to apologize. I want you to first listen in and see for yourself what happened to this gentleman.
4: Kerala ke levarti mitranno, khup chuki je video banavle, maafi magitli parat ankin chuk zali hanla, shubham dadala bollo, mi khar sangto mitranno Maharashtrat rahun, kadhi tumhi Raj Saheb asu dya kiwa apla manse paksha asu dya. कधी यांच्याविषयी काय बोलू नका. आणि मित्रांनो, ह्यांनी कुठली मला गुंडगर्दी दादागिरी नाही केली, उलट माझ्यासारख्या वेड्याला माणसानं असं उठायचं काय बी बोलायचं, खरंच चूक झाली मित्रांनो.
0: So not only was this man's face blackened, he was forced to put two slippers on his head, do uthak baithak, then lie prostrate on the ground in front of a portrait of Raj Thackeray. Samir ji, yahan par Marathi Asmita ko koi chot nahi pahunch rahi hai. Jo log freedom of expression ki baat karte hain, ab unko gussa nahi aa raha hai. Kunal Kamra ke ek show pe galat hua, jo attack hua for comedy, jo hua wahan Mumbai mein galat hua. Is aadmi ne reel banayi aur iske muh pe kalik pot di jati hai.
5: देखिए पद में जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे की पॉलिटिक्स तो ऐसी है, मतलब राज ठाकरे ऐसी ही राजनीति करते हैं. और राज ठाकरे पॉलिटिकली कोई बहुत ताकत नहीं है महाराष्ट्र नगरमर सेना के पास, एक एमएलए नहीं है, एक कॉरपोरेटर नहीं है आपके पास. लेकिन राज ठाकरे के पास उसके अंधभक्त जिसे कहते हैं ना, मतलब उसके बहुत लॉयल लोगों की बहुत बड़ी फौज है, वो हर शहर में मिलेगी.
0: भले ही व्हाई इज द स्टेट गवर्नमेंट एक्टिंग अगेंस्ट दीस पीपल, दीस पीपल आर देन गिविंग बाइट सेइंग थिंग्स लाइक यही है मारा एमएनएस स्टाइल है, ये क्या एमएनएस स्टाइल है, व्हाई आर दीस पीपल,
5: कोई कार्रवाई नहीं होगी. मैं आपको बता रहा हूं ये पहली बार नहीं हुआ है. अब अगर आप देखेंगे इंसिडेंट्स तो राज ठाकरे जब से शिवसेना में युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे तब से लेकर अभी तक आप देखेंगे तो ऐसे कम से कम 500 इंसिडेंट्स महाराष्ट्र के अंदर हुए होंगे. लेकिन राज ठाकरे पर चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस की सरकार रही हो, कोई सरकार राज ठाकरे पर कभी कार्रवाई

0: नहीं करेंगे। राजा कहते तो रेलवे के एग्जामिनर जब उत्तर भारतीय लोग आते थे, महाराष्ट्र ने कितना उनको पीटा, क्या कभी राज ठाकरे को अरेस्ट किया गया?
1: एंड द फनी थिंग इज दैट दिस मैन हिमसेल्फ इज मराठी। आप हमेशा कहते हैं कि हम मराठियों का मुद्दा उठाते हैं, पर मराठी अस्मिता के ऊपर राज ठाकरे, यानी कि राज ठाकरे पर अगर कोई मराठी बोलेगा
2: पर्सनल,
1: तो उसको इस तरीके से ह्यूमिलेट किया जाएगा।
2: पर्सनल अस्मिता ऊपर है मराठी अस्मिता से।
1: हाँ, सबसे पहले एमएनएस अस्मिता, फिर मराठी अस्मिता।
3: अगर राज्य सरकार एक्शन नहीं लेती है तो माना जाएगा कि मौन सहमति आपकी, एक तरह से आप उसको एंडोर्स कर रहे हो, ये आपको एक्शन लेना ही चाहिए इस तरह के मामले में। ये तो आपने देखा कि जो मराठी वाले मुद्दे पे हुआ था कि टैक्सी ड्राइवर को मराठी आनी चाहिए, उस मुद्दे को लेकर कितना ज्यादा तूल दिया गया था। बाकी जबकि जानते हैं सब कि मुंबई में सब तरह के बाहर के सब तरह के लोग आते हैं, सबको रहने का अधिकार वहां पर है। इस तरह से आप अगर अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश करेंगे,
1: बीएमसी इलेक्शन के पहले उद्धव ठाकरे एंड राज ठाकरे हैड शेयर्ड अ स्टेज, उद्धव ठाकरे इज साइलेंट टुडे, कांग्रेस इज साइलेंट टुडे, बीजेपी इज साइलेंट टुडे, व्हाई?
4: आई'ल टेल यू व्हाई। यू सी, इन द प्रीवियस सेगमेंट यू वर आस्किंग अबाउट राहुल गांधी रेजिंग दिस क्वेश्चन, समबडी सेड दैट इज ही अ कंटेंट क्रिएटर। नाउ प्लीज अप्रिशिएट, इन इंडियन पॉलिटिक्स फॉर यू टू रिमेन रेलेवेंट, फॉर यू टू हैव this aura that you're relevant and people are going to take you seriously, you have to consistently be top of the real charts. What Rahul Gandhi is doing in Indore with the stand-up comedian and what Raj Thackeray supporters are doing here is exactly that.
3: It doesn't just translate into votes.
4: It's no,
3: the election that's is that's very clearly. People don't support such kind of antics.
4: See,
1: but you're allowed to go free. I mean, there must be some support somewhere, right? That even the government is scared of taking action.
4: I'm trying to explain to you that the way Indian politics over the last few years has now evolved or degraded, whichever way, whichever side of the political divide you want to look at, is that you have to remain politically relevant, you want to be big on Instagram. You want to be big on social media. All this that you're seeing is a direct byproduct of this desire to be big on Instagram.
2: Well, ये तो वही है जैसे नक्सली करते थे जंगलों में पकड़ करके जो है।
1: बिल्कुल, ये जंगल राज है, कैंगरू कोट आपने चला रखा है।
0: मैंने प्रेसिडेंट का बयान है कि अभी गणपति बैठे हुए, इसलिए हमने उसको बहुत छोटा प्रसाद दिया है। अगर गणपति नहीं होते तो वो कल्पना नहीं कर सकता उसके साथ क्या करते हैं।
1: And imagine if people like are allowed to roam free without the fear of consequences, what does it say about the rule of law? Let's turn our focus now to Uttar Pradesh, which is bristling for the mother of all battles. Of course, the rule of law, law and order is going to be a very big issue there as well. Today, BJP President Nitin Naveen started a two-day visit to Western UP to take stock of the election preparation. Dozens of bulldozers lined up at a toll plaza in Meerut to welcome the BJP chief. Meanwhile, is the opposition now close to stitching an alliance in UP, and could the AIMIM be the sutradhar for it? On Sunday, Asaduddin Owaisi asked all like-minded parties in UP to join hands to prevent a third term for the BJP, a sentiment that was then echoed by Congress's Imran Masood.
5: देखिए, अखिलेश जी कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं उसके कोई मायने नहीं है। अगर गठबंधन करना है तो उसे फाइनल करने, और नहीं करना है तो फिर हम भी अपनी तैयारी के अंदर जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के बिना अब माहौल नहीं है कहीं भी, पूरे देश में नहीं है। तो कांग्रेस के बिना चलने की भी मैं सोचेंगे चल सकते हैं, क्योंकि अगर आप कांग्रेस के बिना जा रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कहीं ना कहीं भाजपा को हराना नहीं है। इनसे लड़ाई कांग्रेस के साथ ही हो सकती है, और कांग्रेस ही लड़ सकती है। राहुल गांधी का नेतृत्व इनसे पार पा सकता है।
6: हम लोग सूची बनाएंगे और सूची आपके सामने जारी करेंगे और इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत करेंगे। ये ढूंढ ढूंढ करके एक भी पीड़े समाज का अधिकारी ना बैठ जाए चुनाव को देखने के लिए, चुनावी संबंधित कार्रवाई कराने के लिए, प्रशासनिक कार्रवाई के लिए ढूंढ ढूंढ करके पीड़े समाज के लोग हटाया जा रहा है। और ये बात अगर गलत हो तो आप बता दीजिए।
7: हम भी चाहते हैं कि तीसरी मर्तबा उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ना बने, और अगर कोई नहीं चाहता है बीजेपी ना बने, नहीं चाहता माने जो पॉलिटिकल पार्टी हो, जो नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो ठीक है, आप हमसे बात करिए, हम भी आपके साथ सत्ता में बीजेपी को रोकने से तैयार हैं, हम साथ देंगे आपका।
1: कुछ पार्टी से आप बात
7: नहीं, आप जो बातचीत हो रही है अगर कामयाब हो गई तो फिर आपके सामने रखेंगे, मगर ये समझने की जरूरत है कि बीजेपी को आप अकेले नहीं रोक पाएंगे।
8: दो अक्टूबर तक बताएंगे आपको।
1: ओके, सो भूपेन, व्हाट्स हैपनिंग इन उत्तर प्रदेश विद द सीट शेयरिंग? इमरान मसूद इज गनिंग फॉर 150।
4: वेल, इमरान मसूद मे बी थिंकिंग दैट यू नो द कांग्रेस पार्टी इज राइट अप देयर व्हाटएवर, बट आई थिंक द वे द एप्पल कार्ट एग्जिस्ट्स एज ऑफ नाउ, from what I gather, both from Akhilesh's camp and the Congress camp,

0: Congress.
1: Could the Congress go with the AIMIM instead?
0: I don't think so. You know, I mean, Congress plus AIMIM in the rest of the country. Can you imagine if Rahul Gandhi, everywhere he goes, he has to stand in defense of what Akbaruddin Owaisi may have said somewhere, you know, 10 years back. Now, that's a view which is being expressed by Imran Masood. And I'm really surprised that Mr. Masood is you know, maybe speaking as part of some collaborative arrangement against Asaduddin Owaisi. But quick number for you. You know, I checked in 2017 assembly elections and in 2022 assembly elections. Mr. Owaisi's party in UP got a sum total of 0.02% votes in 17, got a sum total of 0.04% votes in 2022. But in at least four constituencies, in Deoband, in Bahraich area, the votes which were polled by Mr. Owaisi certainly ended up becoming a factor. Now, is the Congress party and the Samajwadi party going into such finer details to bring him on board and then carry the baggage the rest of the country? I'm not so sure.
1: Samir ji?
2: Because Owaisi saab ne 2 October ki date diye. तो गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी है, 2 अक्टूबर की डेट दी है, तो कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी को 31 अक्टूबर की इंदिरा गांधी की डेथ एनिवर्सरी की डेट दे दे कि 31 तक की आप सिर्फ डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे लगता है ओबीसी के कारण मुझे लगता है
3: वो 23 नवंबर दे देगी नेताजी की जो बर्थडे है
2: बिल्कुल
3: समाजवादी पार्टी को
1: मुझे लगता है 14 नवंबर दे देगी जवाहरलाल नेहरू जी की बर्थडे है
3: समाजवादी पार्टी तो नेहरू जी की
2: ओबीसी के लिए बहुत मुश्किल है अखिलेश यादव के लिए बहुत मुश्किल है इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव देखिए एक तरफ कांग्रेस से आपका सीट शेयरिंग के लेके बातचीत नहीं हो पा रही है वहां पर ओबीसी जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव अगर देखेंगे 2024 का तो ओबीसी ने 95 सीटों पर उम्मीदवार ओवरऑल मतलब उम्मीदवार उतारे थे लेकिन सब उसके हार गए थे वोट 4.5 लाख वोट ओबीसी को मिले थे अगर आप देखेंगे तो ओबीसी इस बार तैयारी बहुत बेहतर कर रहे हैं बिहार में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया था 5 सीटें जीती थी तो अखिलेश यादव ओबीसी के साथ गठबंधन करेंगे मुझे इसकी संभावना कहीं नजर नहीं आती अखिलेश यादव पूरा मुस्लिम वोट अपने पास रखने की कोशिश करेंगे लेकिन क्या कांग्रेस गठबंधन किस स्तर पर करेगी 6 लोकसभा सीटें कितने सीटें अखिलेश यादव कांग्रेस को देंगे कांग्रेस कह रही है कि मिनिमम 3 डिजिट में हमको सीटें चाहिए 100-105 सीटें क्या अखिलेश यादव उतना देने को तैयार होंगे
1: व्हाट्स हैपनिंग इन द बीजेपी द फैक्ट दैट नितिन नबीन आल्सो डिसाइडेड टू गो टू वेस्टर्न यूपी बुलडोजर वहां पर आ रहे हैं उनके स्वागत में Also, Mohammad Shami had a meeting with Jayant Chaudhary.
4: हो सकता है कि कुछ हो कुछ खिचड़ी पक रही हो लेकिन ये तय है कि वेस्टर्न यूपी में बीजेपी का अलायंस आरएलडी के साथ होगा पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ था आरएलडी का
1: नहीं मोहम्मद शमी चुनाव लड़ रहे हैं क्या अमरोहा
4: हो सकता है मतलब मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर कुछ होता है इसके बीच में कुछ खिचड़ी पकती हो लेकिन जो आज ये दौरा हुआ है शुरू वेस्टर्न यूपी का नितिन नवीन का ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बीजेपी वेस्टर्न यूपी को काफ़ी अपने लिए लकी मानती है 2014 में इसके बाद 17 में उसके बाद 19 में 22 में हर बार शुरुआत जो बीजेपी कैंपेन की वहीं से हुई है
1: अदिति सिंह क्या आ रही है कांग्रेस में
4: मेरे ख्याल से मान गई है
1: कांग्रेस
4: माने नहीं बीजेपी से बीजेपी जो नाराजगी थी
1: बीजेपी ने मना लिया
4: मेरे ख्याल से हो गई है मना लिया गया उनको बीजेपी अब इस पर भी काम कर रही है विनोद तावड़े को जब से प्रभारी बनाया गया है महासचिव प्रभारी तो वो इस पर काम करें कि जो जो लोग नाराज दिख रहे हैं जिसमें कि राजभर भी थे सबसे बातचीत हो रही है 1-to-1
1: और कौन नाराज है
4: काफी लंबी लिस्ट
1: जैसे
0: नाराजगी के दो पहलू होते हैं एक ये कि आपका टिकट कट रहा है क्या अगर आपका टिकट कट रहा है तो आप नाराज हो सकते हैं एक ये कि आपके जो समर्थक हैं उनको टिकट दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है आप नाराज हो सकते हैं
3: अभी तो अपने टिकट की बात है
0: मैं आपको बता दूं यू आर टॉकिंग अबाउट जयंत चौधरी एंड आई हैव बीन लिसनिंग टू सम स्टेटमेंट ऑफ जयंत चौधरी चिराग पासवान एंड जयंत चौधरी आर टू ऑफ दीज ग्रेट लीडर्स इन अ कंट्री हु बिफोर एवरी इलेक्शन एंड अप फाइंडिंग सम फॉल्ट ऑफ द अदर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट राइट and it's nothing else but just an attempt to ensure that they get the maximum possible support, maximum possible what they can get, whatever they can extract. So I think the alliance is there for sure. The BJP's biggest challenge is going to be it's now a party which has been in power since 2014 at the center and 2017 at the assembly
3: State.
0: Level. So it's a very, very long spell. How are you going to get rid of the so-called anti-incumbency against MLAs?
4: दो तीन बातें जोड़ना चाहूंगा एक तो इमरान मसूद का जो बयान आया है ये खुद से दिया है या दिलवाया गया है इस पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस देखिए अलायंस तो होगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस तो होना ये बात तय है आपने जब लोकसभा चुनाव लड़ा सफलता हासिल की तो इसमें क्यों ना हो ये हो सकता है कि अपने कुछ कैंडिडेट समाजवादी पार्टी उधार दे दें उन सीटों की संख्या बढ़ा दें ये एक संभव है दूसरा ओबीसी का आपने सुना ओबीसी भी अलायंस करके चुनाव में जाएंगे अब वो चंद्रशेखर की पार्टी के साथ होता है या जो सोनालाल पटेल की दूसरा फैक्शन है रुपया के आला पल्ली वाला उसके साथ होता है ये भी एक है लेकिन वो ऑप्शन है वो लड़ेंगे और निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ सवाल ही पैदा नहीं होता ओबीसी के साथ कांग्रेस कभी अलायंस नहीं करेगी किसी को क्यों पनपने का मौका देना अपना वोट क्यों ट्रांसफर करवाना है देना वो तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी
1: ओके okay,
3: अब यूपी में थोड़ा हमसे भी बात कर लीजिए
1: जी
3: कि मैं उसी राज्य का हूँ
4: हम भी रहते हैं वहाँ पर
3: आप रहते हैं हम उसी राज्य में पैदा हुए वही की

0: देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति बड़ी विचित्र है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन्होंने 2014 से कहा, 1991 से बीजेपी के लिए लाभदायक रहा। पहली सरकार जो उत्तर प्रदेश की बनी थी कल्याण सिंह की, वो वेस्टर्न यूपी से ही बनी थी, सबसे ज़्यादा विधायक यहीं जीत के आए थे। जयंत चौधरी और बीजेपी का अलायंस इस बार इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि जयंत चौधरी ऐड ऑन कर रहे हैं बीजेपी को, जो पिछली बार 2022 में माइनस हुआ था बीजेपी का वोट, वो इस बार ऐड ऑन होगा। इसलिए जयंत चौधरी और वो चवन्नी वाला जो बयान वगैरह है वो भी हेल्प कर रहा है, बीजेपी भी उसको काफ़ी वो कर रही
1: है। केसी त्यागी पहुंच गए,
0: केसी त्यागी पहुंच गए और भी कई लोग पहुंच गए, तो उसमें तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चिराग पासवान का अलायंस बिहार में बीजेपी के साथ, प्रॉब्लम है ओवैसी साहब के लेके। ओवैसी साहब अगर बीजेपी, अगर ओवैसी साहब चंद्रशेखर से अलायंस करके या बीएसपी से अलायंस करके सब सीटों पर लड़ते हैं तो दिक्कत है इंडिया गठबंधन के लिए। अगर वो इसमें आ जाते हैं तो बीजेपी के लिए और फेवरेबल पोजीशन हो जाएगी। फिर वो अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान चला चला करके पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है उसको बिल्कुल एक्सट्रीम पर पहुँचा देगी, और योगी जी उसमें सामने है,
2: बुलडोजर
3: दिखेगी।
2: आज तो बुलडोजर दिखेगी,
0: वो तो हनुमानगढ़ी से शुरू होंगे किसी नियो में नवाज से लेकर के तो ये कैच 22 सिचुएशन है। दूसरी लास्ट में कांग्रेस और एसपी का अलायंस, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों को मालूम है कि अलग अलग लड़ेंगे अगर तो दोनों ही धराशायी।
3: थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होगा, क्वेश्चन आई थिंक नाउ ऑफ हु इज गोइंग टू ब्लिंक फर्स्ट। वी आर कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम फॉर टुडे, बट इट्स ओनली हीटिंग अप, एंड एज ऑलवेज लाइक आई सेड ऑन एनडीटीवी हियर फॉर अस इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉलिटिक्स जिंदाबाद। थैंक्स वेरी मच जेंटलमैन फॉर हैविंग जॉइन्ड अस विद योर विजडम, एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।

0: Maharashtra FTA Commissioner Tukaram Munde. Ukrainian President Volodymyr Zelensky says he and the United States President Donald Trump have agreed to meet in New York with peace as the number one priority. Zelensky says that talks could include de-escalation as well as the key security issues. Ladies and gentlemen, IIT Bombay student Sahil's death has triggered protest and a wider campus row over accountability. Professor Dhola has been suspended from his position as a dean while he will still continue to be a faculty member at the IIT Bombay. And around 750 faculty members have expressed solidarity with Professor Dhola and marched on the campus with him in support of him. The faculty protest comes amid continuing student demonstrations over the case. The student, the victim here, and their aunt has alleged that he faced caste-based discrimination and said that the family wants complete truth to emerge. She has demanded all the CCTV footage, arguing that the case should not be limited to one professor, and that she alleged that there will be several people who may be involved in the case.
1: उस शाम को हमें सिर्फ कॉल आया प्रोफेसर का
2: जी,
1: अचानक से कॉल आया सर, रात 8 बजे की साहिल ने सुसाइड किया है ऐसा करके कॉल आया। इतने दिन होने के बाद उस प्रोफेसर ने माफी मांगी, वो प्रोफेसर बता रहे कि साहिल ने कुछ गलती नहीं की, फिर भी साहिल के साथ ऐसा क्यों हो गया। सर मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि मेरे साहिल को न्याय मिलना चाहिए। अगर उसकी कुछ गलती नहीं थी, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हो गया। आज तक की ये पहली घटना नहीं है सर, और जो भी घटनाएं हुई है उस घटना के बारे में आज तक कोई इंक्वायरी नहीं बैठी गई, कुछ ही हुआ नहीं। लेकिन हमने जब ये बोला तो हम पर भी वो प्रेशर डाल रहे है।
3: साहिल ने माँ बाप को बोला था कि मम्मी यहाँ पे थोड़ा बच्चों पर अन्याय करते हैं, जातिवाद करते हैं। आज वो कॉलेज में अगर साहिल के आज भी फेवर में न्याय नहीं मिल रहा होगा तो आज भी साहिल पर अन्याय ही हो रहा। हमारा पूरा भरोसा है कि ये चौकसी सीबीआई करे।
0: Meanwhile, my colleague Sujata Devedi spoke to Sahil's wingmate in IIT Bombay. Let's listen into what he had to say.
4: कि विंगमेट थे आप लोग, दूसरे को जानते थे, एग्जाम में कॉपी किया गया, इसको लेकर आपको उसने क्या बताया?
5: उसने किसी से भी कुछ बात नहीं की, यही बात है, सब स्पेक्युलेशन है। बस कॉपी करने के बाद जब उसको बाहर लेके गए उसके बाद उसने किसी से बात नहीं की, तो किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है। आई डोंट थिंक, जितना मैंने फर्स्ट ईयर में उसे देखा, कि हमने से किसी में या उसके दोस्तों में से किसी ने उसके कास्ट पर कभी भी रिमार्क किया हो। IIT बॉम्बे में ऐसा कल्चर है ही नहीं कि कोई किसी के कास्ट पर रिमार्क करता है, क्योंकि हम सारे जेईई देव स्टूडेंट, हमें आइडिया है कि ये सब नहीं करना होता है, हम एजुकेटेड हैं। एंड मुझे नहीं पता ये एंगल कहाँ से आया। डी ने कि ये सस्पेंशन था हमारा फर्स्ट पॉइंट, उसका भी रेजिग्नेशन नहीं था, क्योंकि जब तक वो गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाते हम उनका रेजिग्नेशन नहीं मांगते।
6: Accountability does not necessarily mean an online apology, first of all, because everybody apologizes nowadays. It's a very, you know, trendy thing, right? We need resignations. That's what we need. We need resignation of all the people involved, because like I said, this is not one isolated event. There have been 4 suicides in the past 1 year. This is the second suicide in the past 2 months. जिसमें से 4 suicides में से 3 suicides जो थे वो दलित background के बच्चों के थे. So like I said, this is not an isolated event. Right, so we need immediate resignation, because accountability hame waise hi milegi. We need resignation, we need a student independent student body yahan par jo student ke behalf par bole, you know, to give students some power as well. We need mental health conferences and all of that. We also need compensation for the family, jin jo unko bhi kafi police ne pareshan kar rakha hai jab se wo yahan par aaye hain. Unka ek akela beta tha, one only child, right? So we need compensation for the family as well.
0: Let's move on to another shocking case that has come to light, and this is from the state of Bihar, where there have been 3 people who have been arrested for molesting and assaulting a couple in Bihar's Jamui. The two youngsters that you see on your screens were harassed by a crowd in what the story was first published at Moral Policing, which was not to say the least. They were stopped while traveling on a scooter, following which the harassment took place. The shocking video showed men touching the girl inappropriately, and she was a minor, and even carrying her away from some distance on road before being stopped by her friend. The youngsters were seen pleading with folded hands in an effort to be left alone, and while they were doing that, the only thing that they witnessed next is being dragged back to the same place. And while all of this is happening, as usual, the politics has erupted between the government and the opposition of the state. The JDU leader, Umesh Kushwaha, has tried to downplay the incident and called it a trivial one, and that keeps happening in the state of Bihar. Rahul Gandhi, meanwhile, has slammed the government over the incident and has demanded action against mob under the POKSO Act. Meanwhile, another Bihar minister, Sunil Kumar, has condemned the incident. But while all of this is happening, the big questions remain that why is it that the action came after the video went viral?
7: तीन नाबालिग बच्चों को निरुद्ध की गई हैं और इसमें दो और की इन्वॉल्वमेंट भी पता चला और दो और हो सकते हैं तो हम लोग का अभी क्विक एक्शन हुआ था जमुई थाना कांड संख्या 428 भी सेक्शन 74-75 BNSS और 8 और 12 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुई हैं साथ ही साथ जितना वीडियो वायरल हुआ है हम लोग टेकडाउन नोटिसेस जारी किया जिसमें 13 फेसबुक और 12 इंस्टाग्राम का अकाउंट्स और 7 ट्विटर के अकाउंट्स हम लोग के द्वारा टेकडाउन कर लिए
0: And while this incident has gotten into every Indian and every Indian is expressing outrage, there are political parties that are trying to take away credit and blame the other party. But one thing is for sure, that be it the opposition or the government, nobody for till date has been able to ensure the safety of a woman. But here are some political reactions that came in from the state of Bihar as far as this incident is concerned.
8: क्राइम फ्री पूरी दुनिया नहीं है छिटपुट घटना होती रहती है और छिटपुट घटनाओं पर सरकार की नज़र है और इस तरह के कृत्य करने वाले बिहार में बचने वाले नहीं है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पहले भी हुई है ऐसी घटना करने वाले किसी भी हालत में नहीं बचेंगे
9: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील हैं लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था कोई घर से बाहर निकलते थे किस तरह का बिहार था क्या हालात था लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे ऐसा बिहार था ना आज तो लोग कम से कम ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है एक्शन ले रही है प्रशासन जल्द से जल्द जो घटना का जो अंजाम दिया है चाहे 12 से 12 कोई कितना बड़ा कोई अपराधी क्यों नहीं हो वो जल्द ही पुलिस के कब्जे में आएंगे
10: घटना की हम तीव्र निंदा करते हैं सरकार की ओर से और निश्चित रूप से वहाँ के पुलिस पदाधिकारी प्रशासन के पदाधिकारी इसमें एक उचित और कठोर कदम उठाएंगे मैं इस जैसे आपसे मीटिंग ख़त्म हो जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ के मैं पुलिस अधीक्षक से भी बात करूँगा जम्मू के और सुनिश्चित उन्हें कहेंगे कि सुनिश्चित करें कि कोई भी इसके लिए जिम्मेवार हो चाहे जो भी व्यक्ति हो उसको चिन्हित करके उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें
0: Well, the lawlessness is not just seen in the state of Bihar, it's seen in the state of Maharashtra as well. And this time, the ones responsible are the political parties themselves. A social media reel criticizing MNS chief Raj Thackeray has triggered a shocking act of public humiliation of an influencer in Pune. The MNS workers allegedly grabbed the Marathi content creator Mahesh Mote, blackened his face and forced him to apologize. And in a video that's now going viral of the incident, the influencer is seen with a slipper placed on his head as he is made to perform sit-ups. He is then forced to bow down before a photograph of Raj Thackeray and apologize. The influencer later posted another video breaking down as he said that his comments were unintentional. He apologized to Raj Thackeray and MNS workers with folded hands and appealed to them to not harass him further. The MNS has described the action as its style of dealing with such incidents in a brazen act to justify what they did.
11: केरळला गेले वरती मंत्रानो खूप चुकीचे व्हिडिओ बनवले माफी मागितली परत आणखीन चूक झाली ह्यांना शुभम दादाला बोललो मी खरं सांगतो मित्रांनो, महाराष्ट्रात राहून कधी तुम्ही राजसाहेब असू द्या किंवा आपला मनसे पक्ष असू द्या, कधी यांच्याविषयी काय बोलू नका. आणि मित्रांनो, ह्यांनी कुठली मला गुंडगर्दी दादागिरी नाही केली, उलट माझ्यासारख्या वेड्याला माणसानं असं उठायचं काय बी बोलायचं, खरंच चूक झाली मित्रांनो.
12: काल पुण्यात आल्याच्या नंतर आज तो कात्रजमध्ये येणारे अशी जवळपास माहिती होती. आज कात्रजच्या उद्यानामध्ये तो जसा आल्याच्या नंतर तातडीने आम्ही सर्व महाराष्ट्र सैनिक एकत्र आलो. एकत्र आल्याच्या नंतर आम्ही त्याला ऑफिसला घेऊन गेलो. आदरणीय राजसाहेब ठाकरे यांच्या फोटो पुढे त्याला आम्ही झोपवलं. त्याला तिथं साहेबांची माफी मागायला सांगितली आणि मनसेच्या स्टाईलने त्याला उत्तर दिलं. त्याला चांगली आम्ही आमच्या भाषेत महाप्रसाद दिला. त्याला त्याचबरोबर त्याला साहेबांची माफी मागायला सांगितली. त्याला काजळाची मिशी काढली. त्याला त्याच्या चप्पल त्याच्या डोक्यावरती ठेवायला सांगितल्या आणि त्याच्या उठाबशा मारायला सांगितल्या.
13: पुणे में एक लड़के का मुंह आप काला करते हैं, चप्पल सर पर उठक बैठक क्यों? क्योंकि उन्होंने एक रील बनाया. क्या ये है एमएनएस की स्टाइल, तालिबानी स्टाइल? जो आप महाराष्ट्र का नेता बनना चाहते हैं तो ये गुंडागर्दी करना बंद कीजिए. जो आपकी आलोचना करते हैं आप उनके प्रति ऐसे प्रस्तुत आते हैं कि गुंडागर्दी ही चलेगा. पुणे पुलिस को एफआईआर दर्ज करना ही चाहिए भारतीय न्याय संहिता के निमित्त, और जो व्यक्ति गुनहगार है उनको पकड़ना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हुलिगनिज्म हैज नो प्लेस इन पब्लिक सर्विस.
0: Moving on to some other stories that are making headlines down south, Vijay's London visit and TVK's political activity has drawn sharp attacks from the rival parties. K. Annamalai has questioned Vijay's London investment outreach, arguing that the Tamil Nadu can attract investment by engaging with industrialists within India. Udayanidhi, meanwhile, has accused Vijay and TVK of blaming the DMK despite being in politics, and also alleged that TVK is attempting to bring AIADMK MLAs into its fold.
14: எனக்கு லண்டனை பத்தி நல்லா தெரியும். இட்ஸ் எ டேட் எக்கானமி, அங்க எந்த பணமுமே கிடையாது. 1% வளர்ச்சி, யூகேவுடைய வளர்ச்சியே 1%. அவங்ககிட்ட போய் தமிழ்நாட்டில் பணம் கொடுங்கன்னு கேட்டா அவங்க என்ன பணம் கொடுக்க போறாங்க? அவங்க ஊர்ல போறதே அவங்கள்ட்ட பணம். இந்தியாவிலிருந்து போய் டாடா, இந்தியாவிலிருந்து போகக்கூடிய ஜாகுவார், லேண்ட் ரோவர், மஹிந்திரா இவங்க எல்லாம் தான் யூகேல அதிகப்படியான பணத்தை நாம இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். முதலமைச்சர் என்ன பண்ணணும்னா, சென்னையிலிருந்து எமிரேட்ஸ் விமானத்தை பிடித்து லண்டனுக்கு போவதை விட சென்னையிலிருந்து இண்டிகோ விமானத்தை பிடித்து கோயம்புத்தூருக்கும் மதுரைக்கு வரணும். தொழிலதிபர்களை உட்கார வைக்கணும். தமிழ் சமுதாயம் நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும், புரிந்து கொள்ள வேண்டும். லண்டனிலேயே பொருளாதாரம் இல்லைங்க, 1%, 1%. அதை விட இந்திய நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் பெருசு, நம்ம 4.1 trillion. இதெல்லாம் எப்ப லண்டனுக்கு போனாலே இந்தியா 1 trillion இருந்துச்சு. 2010 2008 லண்டன் 3 trillion இருந்துச்சு. அப்ப லண்டன் கோர்ட் சுட்டு போட்டுக்கணும், விடுத்தா இருக்கும். ஏன்னா நான் வந்து ஒரு ஏழை நாட்டில இருந்து வர்றேன், நீங்க பணக்கார நாடு, எனக்கு ஒரு 100 ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்க குறைச்சிக்கோன்னு போயிட்டு இருந்த காலம். இந்த நாடு 4.1 trillion இருக்கிற நாடு, லண்டன் 3.4 trillion இருக்கிற நாடு. அந்த நாட்டுக்கிட்ட போய் இவங்க ஒரு பெரிய கூட்டத்தை கூட்டிட்டு போயிட்டு, அதுல இவரை பார்த்தாரா, அவரை பார்த்தாரா, அவங்க எட்டி பார்த்தாங்களா, அவங்க உள்ள பணம்
11: அந்த ஷூட்டிங் மட்டும்தான் நடக்காம இருக்கு. முதலமைச்சர் வாயை திறக்கிறதே கிடையாது. வாயை திறந்தாருன்னா வெறும் பஞ்ச் டயலாக் தான், அது எங்களை பார்த்து பேசுறது கிடையாது. கேமரா எங்க இருக்குன்னு பார்த்து கரெக்டாக பார்த்து ஆங்கிள்லாம் பார்த்து சபாநாயகர்கிட்ட அனுமதி வாங்கி டேக் போலாமான்னு கேட்டுட்டு சபாநாயகர் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் முதலமைச்சர் அவர்கள் தன்னுடைய பஞ்ச் டயலாக்கை பேசுகிறார். எதை கேட்டாலும் முதல்ல இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள், முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட ஆட்சியாளர்கள், அமைச்சர்கள்லாம் அவங்க ஆட்சிக்கு வந்துட்டோம் அப்படிங்கிறத அவங்களே இன்னும் நம்பலை. எந்த கேள்வி கேட்டாலும் நம்ம மேலே பழி போடுறது, திமுக ஆட்சியில் இது நடந்துச்சு, திமுக ஆட்சியில் இது நடந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம மேலே பழிய போடுற வேலையை மட்டும்தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சரும் சரி அமைச்சர்களும் சரி தொடர்ந்து அதை செஞ்சிட்ருக்கிறாங்க. அதனால தான் இன்றைக்கி ஒவ்வொரு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக பார்த்து பார்த்து, அதுவும் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களெல்லாம் விலைக்கு வாங்குகிற வேலையில் இன்றைக்கி இந்த அரசு இறங்கியிருக்கு. இப்படி விலைக்கு வாங்கின காரணத்தினால தான் உங்களுக்கு தெரியும், 2 சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல், மதுராந்தகம் தாராபுரத்தில் இடைத்தேர்தல் நடக்க இருக்கு.
15: இந்த ரீல்ஸ் கும்பலுக்கு ஓட்டு போட்ட கொஞ்ச நஞ்ச மக்களும் ஏண்டா இவங்களுக்கு ஓட்டு போட்டோன்னு இப்போ கவலையில் இறங்கியிருக்கிறாங்க. இந்த ஆட்சியாளர்கள் அடிக்கின்ற இந்த கூத்தையெல்லாம் செய்கின்ற இந்த அட்டு ஒழுங்கை எல்லாம் மக்களுக்கு நாம் தொடர்ந்து அம்பலப்படுத்த வேண்டும். அதற்கு சரியான ஒரு தண்டனையை வருகின்ற இடைத்தேர்தல் மூலமாக நாம் இந்த ஆட்சியாளர்களுக்கு அதை நாம் தெரியப்படுத்த வேண்டும். ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி எந்த
0: And with that, it's time for us to slip away. Quick commercial break. Don't go anywhere. After the break, we'll tell you about why the Russian oil flow is under strain.